हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 MHz पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 27वीं तिथि, तदनुसार 17 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:58 हुए हैं और अब हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

FM बैंड 101.8 MHz पर हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने को हैं और अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार रिले किए जाएंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में कल G7 शिखर सम्मेलन में एक सत्र को संबोधित किया। इसका विषय था नई साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का निर्माण। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सत्र में प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में विश्वास के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर गठबंधन, वैश्विक बायोफ्यूल गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम अभियान शामिल है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो से मुलाकात कर कहा कि भारत और केन्या की साझेदारी ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं पर आधारित है। उन्होंने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची के साथ व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। G7 देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। भारत, मिस्र, केन्या

0: और दक्षिण कोरिया ने भी इसका समर्थन किया है। सभी सदस्यों ने इबोला के लिए वैक्सीन, जांच और इलाज के विकास में सहयोग का भी वादा किया। G7 ने कैंसर का इलाज ढूंढने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास की समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि दिल्ली झुग्गी और जेजे क्लस्टर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2026 को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे जल्द अधिसूचित किया जाएगा। श्री शाह ने अधिकारियों को 5 जेजे क्लस्टर के पुनर्वास के लिए 45 दिनों के भीतर निविदाएं जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुनर्वास कॉलोनियों में आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र और खेल मैदान जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी और इनमें कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपये तक की मांग की जा रही है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार आज नशा मुक्त भारत अभियान NMBA के अंतर्गत नशा मुक्त भारत सप्ताह का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान डॉ. वीरेंद्र कुमार नशा मुक्ति मित्र के लिए पर्सनल डैशबोर्ड और NMBA पर आधारित एक लघु फिल्म सहित कई प्रमुख पहल का भी अनावरण करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया आज मुंबई के वर्ली साइकिल ट्रैक पर विशेष फिट इंडिया साइक्लोथॉन का नेतृत्व करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने बताया कि ये आयोजन व्यापक फिट इंडिया अभियान का हिस्सा है। फीफा विश्व कप में कल फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हरा दिया। प्रतियोगिता के एक अन्य मुकाबले में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा। उरुग्वे और सऊदी अरब तथा बेल्जियम और मिस्र के मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 MHz पर। 6:05 हुए हैं और अब सुनिए ज्ञान ज्योति।

आध्यात्मिकता मनुष्य के जीवन में ज्ञान, शांति और आत्मविश्वास लेकर आती है। ये हमें सिखाती है कि सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि हमारे भीतर विद्यमान है। जब व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को सकारात्मक दिशा देता है, तब उसके जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलने लगता है। आध्यात्मिकता केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं, यही ज्ञान ज्योति हमें अज्ञान के अंधकार से निकालकर सत्य, शांति और जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर ले जाती है।

जब मन शांत और कर्म पवित्र होते हैं, तब ईश्वर स्वयं हमारे जीवन में प्रकाश बनकर प्रकट होते हैं।

श्री रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास ने मानस सरोवर की संज्ञा दी है। उन्होंने प्रकृति के अत्यंत मनोहारी रूपों से राम कथा के विभिन्न प्रकरणों की तुलना की है। कीर्ति रूपी सरयू नदी जिसका मूल मानस अर्थात श्री रामचरित है, राम भक्ति रूपी गंगा में जा मिलती है। सीता स्वयंवर की कथा इस कीर्ति नदी की सुहावनी छवि है। ऋषि परशुराम का आक्रोश इसकी भयानक धारा और श्री राम के श्रेष्ठ तथा सुंदर वचन इसके बंधे हुए घाट हैं। कैकेयी की कुबुद्धि इस नदी में काई के समान है जो बड़ी विपत्ति का कारण बनी। भरत का चरित्र नदी के तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। सीता जी के गुणों की तुलना इस नदी के निर्मल जल से की गई है। भरत का स्वभाव इस जल की शीतलता है जो सदा एक सी रहती है। चारों भाइयों का परस्पर प्रेम, उनका हंसना बोलना, मेल मिलाप इसके जल की मधुरता और सुगंध हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए अब हम आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से आज प्रसारित व रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। कार्यक्रम रूपरेखा के तुरंत बाद यानी 6:55 पर संस्कृत समाचार 6 और 7 हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। हमारा दैनिक कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर आप सुनते हैं प्रातः 7:05 से, तो आज भी सुनिएगा। समाचार प्रभात का अंक 8 और मॉर्निंग न्यूज 8:15 पर आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

हिमाचल डायरी का आज का अंक सुनिएगा 8:30 पर। हमारे केंद्र से विविध भारती के प्रसारण आप सुन सकेंगे 8:35 से। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से रिले किए जाएंगे 9:20 पर। विविध भारती के प्रसारण हमारे केंद्र से आप सुनेंगे 9:30 से। हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे 10:00 और 10:05 पर प्रसारित किया जाएगा कार्यक्रम लघु वार्ता, जिसमें हमारा आज का विषय रहेगा योग एक फायदे अनेक। लाइव फोन इन कार्यक्रम गल तुसंदी पहाड़ी में ये कार्यक्रम आप सुनेंगे और इसमें हमारा जो विषय रहेगा वो है मिले यूं तो करें क्यों। इस विषय पर आप भी अपने विचार साझा कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार 11:00 आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले किए जाएंगे। विविध भारती के कार्यक्रम 11:05 से आप सुन सकेंगे हमारे केंद्र से। महिला जगत कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा 12:00 और सैनिकों के लिए कार्यक्रम 12:30 पर। दोपहर 1:00 विविध भारती के प्रसारण हमारे केंद्र से रिले किए जाएंगे। 2:00 मिड डे न्यूज और 2:15 पर दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। विविध भारती के प्रसारण आप सुन सकेंगे 2:30 से और प्रादेशिक समाचारों का समय है 3:00 और इन्हें हम रिले करते हैं आकाशवाणी के शिमला केंद्र से। विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम 3:10 से आप सुन सकेंगे।

शाम के 5 बजे हिंदी समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे और भजनों का आनंद आप ले सकेंगे। 5:05 से कार्यक्रम रहेगा भजन संध्या। युवाओं की बात आप सुनते हैं, युवाओं का हमारा कार्यक्रम युवा मंच कार्यक्रम, जिसमें जिसका प्रसारण समय 5:30। आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे शाम के 6 बजे और नए पुराने फिल्मी गीत आप सुनेंगे, आनंद लेंगे इनका हमारे इस खूबसूरत से कार्यक्रम में जिसका नाम है सफ़र सुहाने गाने नए पुराने, और इसका प्रसारण समय है शाम के 6:05। किसानों और बागवानों की बातचीत यानी कि उनके लिए कार्यक्रम पेश किया जाएगा खेती बाड़ी 6:30 से। हिंदी समाचार 7 बजे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित किए जाएंगे। 7:05 पर सुनेंगे ICC विमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 भारत बनाम नीदरलैंड का ये आंखों देखा हाल आकाशवाणी दिल्ली से आपको सुनवाया जाएगा। प्रादेशिक समाचार 7:45 पर आकाशवाणी शिमला से रिले किए जाएंगे और 8 बजे पुनः आप सुन सकेंगे आकाशवाणी दिल्ली से आंखों देखा हाल ICC विमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 भारत बनाम नीदरलैंड। 8:45 पर समाचार संध्या और 9 बजे न्यूज़ एट 9 आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित होंगे और 9:15 पुनः आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से ICC विमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 भारत बनाम नीदरलैंड का आंखों देखा हाल। 10:30 पर चांदनी रातें कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा और 11 बजे हिंदी समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। तो ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित व रिले किए जाने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 MHz पर। 6:55 होने को हैं, थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से संस्कृत समाचार और 7 बजे हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: भारत, मिस्र, केन्या और दक्षिण कोरिया ने भी इसका समर्थन किया है। सभी सदस्यों ने इबोला के लिए वैक्सीन, जांच और इलाज के विकास में सहयोग का भी वायदा किया है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष फॉन डेर लेन के साथ त्रिपक्षीय बैठक भी करेंगे। वे जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्स के साथ भी बैठक करेंगे। कल सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ बैठकें की थी। यमुना नदी के जीर्णोद्धार के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह फैसला यमुना को स्वच्छ करने में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर कुछ ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। एजेंसी ने स्पष्ट किया कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह का वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि देश में टेलीग्राम ऐप को क्यों फिलहाल बंद किया गया है। फीफा विश्व कप में कल फ्रांस ने सेनेगल को 3-1 से हरा दिया। फ्रांस की ओर से किलियन मबापे ने 2 गोल किए और वे अब 58 गोल के साथ अपने देश के लिए सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। एक अन्य गोल ब्रैडली बारकोला ने दागा। सेनेगल के लिए एकमात्र गोल मबाय ने किया। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबले में ईरान और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा। उरुग्वे और सऊदी अरब तथा बेल्जियम और मिस्र के मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहे। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने आज उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिमी मानसून के तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान है। विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल और उत्तर प्रदेश में भी तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM बैंड 101.8 MHz पर हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं।

0: के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
2: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
1: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
2: भाभी, चुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में 6ठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
3: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर 7:07 हुए हैं और अब ये समय है सुप्रभात हमीरपुर का। आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत है और हम यही उम्मीद करते हैं कि आप एकदम बढ़िया होंगे और तैयार होंगे कि आज इस कार्यक्रम में क्या क्या आपके लिए हम लाए हैं

एक नया दिन, एक नई उम्मीद, और इन उम्मीदों पर खरा उतरने की हमारी भरसक कोशिशें, इनका नाम ही है जीवन। और इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं एक अच्छे से विचार के साथ। कहते हैं कि सुबह सुबह जो विचार किया जाए, अगर वो सकारात्मक हो तो उसी तरह का हमारा दिन जाता है। जिस तरह की हमारी सोच रहती है उसी तरह का हमारा जीवन बन जाता है, तो क्यों ना हम अच्छा सोचें। तो आज का विचार ये कहता है कि अगर मेहनत आदत बन जाए, बहुत बड़ी बात है ये, अगर इसको हम अपने जीवन में उतार लें तो सफलता हमसे बहुत दूर नहीं है। अगर मेहनत आदत बन जाए तो सफलता मुकद्दर बन जाती है। कितना सही कहा है ना, कि अगर हमें हर वक्त अपने लक्ष्य की धुन रहे कि हमें जो करना है वो करना है, चाहे हमारे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आएं, तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन पता होता क्या है कि हम भूल जाते हैं, हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमें क्या करना है। इसी भूल को सुधारने का और याद करने का हम आपको पल पल याद दिलाते हैं कि आपको क्या करना है, आपको भूलना नहीं है अपना लक्ष्य। और हमारा लक्ष्य इस वक्त ये है कि हम आपको एंटरटेन करें एक मधुर से गीत के साथ। तो चलिए सुनते हैं।

0: आपने ट्यून किया है AIR FM हमीरपुर 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: अरे राहुल, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आते।
2: ताऊ जी, मैं दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ।
1: अच्छा, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि पैसों की तंगी के कारण 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दोगे, फिर पढ़ाई कैसे जारी रखी?
2: ताऊ जी, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना का कमाल है। मुझे मात्र 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपए का शिक्षा ऋण मिला है। अब आर्थिक तंगी मेरे सपनों की राह में रुकावट नहीं बन सकती।
1: वाह बेटा, ये तो प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है।
2: जी ताऊ जी, इस योजना के तहत विद्यार्थी देश और विदेश में प्रोफेशनल तथा तकनीकी शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
3: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना वंचित वर्गों के बच्चों के उच्च शिक्षा के सपनों को कर रही है साकार। योजना के तहत 12 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के 28 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थी ITI, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, लॉ, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए शिक्षा विभाग की वेबसाइट education.hp.gov.in पर लॉग ऑन करें। डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना, सपनों को मिले नई उड़ान, शिक्षा बने सफलता की पहचान, शिक्षा के पथ पर अग्रसर, विकास की नई बुलंदियों को छू रहा हिमाचल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: अरे बेटा जीवन, क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
4: ताऊ जी, अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेर चौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोट

0: प्लास्टिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
1: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
2: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी हमीरपुर FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। और अब समय है आपको आज के दिन से जुड़ी ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी देने का, यानी कि हिस्ट्री ऑफ द डे, क्या हुआ था 17 जून को खास। हर दिन होता है खास, तो आज का दिन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाओं, जन्म और स्मृति दिवसों के लिए जाना जाता है, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1579 की। प्रसिद्ध अंग्रेज नाविक फ्रांसिस ड्रेक ने कैलिफोर्निया के तट पर उतरकर उस क्षेत्र पर इंग्लैंड का दावा किया। 1775 में बैटल ऑफ बंकर हिल लड़ा गया, जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक था। 1885 में आज ही के दिन अराइवल ऑफ द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क हार्बर फ्रांस से अमेरिका पहुंची थी। 1944 में आइसलैंड ने स्वयं को गणराज्य घोषित किया और डेनमार्क से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त की थी। 1972 में वाटरगेट स्कैंडल की शुरुआत हुई, जिसने अमेरिकी राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। और बात करते हैं कि आज के दिन किन प्रसिद्ध शख्सियतों ने जन्म लिया था। 1882 में आज के दिन इगोर स्ट्राविंस्की, प्रसिद्ध रूसी संगीतकार, इनका जन्म हुआ था। और हमारे भारत का जो गौरव है, भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का आज के दिन जन्म हुआ था 1962 में। और जो आज के दिन निधन हुआ था 1631 में, मुमताज महल, जिन्हें हम जानते हैं मुगल सम्राट शाहजहां की पत्नी के रूप में, जिनकी याद में कहते हैं कि ताजमहल का निर्माण कराया गया, तो उनका आज निधन हुआ था। और 17 जून को विशेष क्या है, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस आज के दिन मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण और भूमि के सतत उपयोग के प्रति जागरूकता बढ़ाना। इतिहास हमें सिखाता है दोस्तों कि साहस, ज्ञान और दृढ़ संकल्प से व्यक्ति और राष्ट्र दोनों नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। आप भी अपने दिन को जो है वो बढ़िया बना सकते हैं, कुछ यादगार बना सकते हैं, अगर आपका डिटर्मिनेशन, आपका निश्चय जो है अगर स्ट्रांग है, अगर आप कुछ करके दिखाना चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये बातें आपके दिल तक उतरती हैं, और अब अगला जो गाना है वो भी सीधा आपके दिल तक उतरेगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। आइए सुनते हैं अगला गीत। गुड मॉर्निंग हमीरपुर, सुप्रभात हमीरपुर, आप इस समय सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से।

0: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
1: अरे भाई, खुशी तो होगी। अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं, किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गांव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
2: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
3: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
5: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
3: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
5: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
3: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
6: बड़ी बहू, ये तुम्हारे नाम,
7: इतनी भी क्या जल्दी थी?
6: अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम, और ये
7: मेरी बड़ी।

0: पर दादी
1: हाँ
0: आपके नाम
2: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो
1: शुभ शुभ बोलो
0: क्या
3: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए सतर्क रहिए
5: श्रोता इस वक्त आप जुड़े हैं AIR FM हमीरपुर के साथ 101.8 मेगाहर्ट्ज पर घड़ी की सुइयां टाइम बता रही है 7:26 और आप हैं हमारे साथ कार्यक्रम है सुप्रभात हमीरपुर और आज हम बात करेंगे उत्कल मणि गोपाल बंधु दास जी के बारे में जिनका देहांत आज ही के दिन हुआ था उनके हमारे देश के प्रति जो योगदान है उनको हम याद करेंगे आपको बताएं कि उत्कल मणि गोपाल बंधु दास भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी समाज सुधारक पत्रकार शिक्षाविद साहित्यकार और राष्ट्रभक्त थे उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित कर दिया उन्हें उड़ीसा का उत्कल मणि का अर्थात उत्कल यानी कि उड़ीसा का रत्न कहा जाता है तो सोचिए उन्होंने कितना महान कार्य किया होगा कि किसी व्यक्ति का नाम उसके राज्य से जाना जाता है वे न केवल उड़ीसा के लोगों के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए प्रेरणा स्रोत हैं उनका जीवन त्याग सेवा मानवता राष्ट्रप्रेम और सामाजिक न्याय का अनुपम उदाहरण है इनका जन्म 9 अक्टूबर 1977 को उड़ीसा के पुरी ज़िले के सुंडो नामक गांव में हुआ उनके पिता का नाम दैतारी दास और माता का नाम स्वर्णमयी देवी था इनके पिता एक विद्वान धार्मिक विचारों वाले व्यक्ति थे और इनकी शिक्षा की बात करें तो गोपाल बंधु दास ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही प्राप्त की इसके बाद उन्होंने पूरी ज़िला स्कूल में प्रवेश लिया और अध्ययन में अत्यंत प्रतिभाशाली थे और प्रत्येक विषय में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते थे उन्होंने आगे की शिक्षा के लिए कटक स्थित रेवनशॉ कॉलेज में प्रवेश लिया और जैसा कि हमने जाना कि समाज सेवा की भावना इनमें कूट कूट कर भरी थी तो इनका जीवन का मुख्य उद्देश्य ही मानव सेवा था वे मानते थे कि समाज के कमज़ोर और वंचित वर्गों की सेवा करना सच्चा धर्म है वे गरीबों अनाथों और पीड़ितों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते थे उड़ीसा में जब भी बाढ़ अकाल या प्राकृतिक आपदा आती थी वे स्वयं राहत कार्यों में जुट जाते थे उन्होंने अनेक लोगों के भोजन वस्त्र और चिकित्सा की व्यवस्था की और शिक्षा में इनके योगदान की बात करें तो इनका विश्वास था कि शिक्षा ही समाज के विकास का सबसे प्रभावी साधन है उन्होंने ऐसी शिक्षा व्यवस्था की कल्पना की जो केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित ना होकर विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण नैतिक विकास और राष्ट्रीय चेतना का भी विकास करे इसी उद्देश्य से उन्होंने 1909 में पुरी ज़िले के सखी गोपाल में सत्यवादी वन विद्यालय की स्थापना की ये विद्यालय खुले वातावरण में संचालित होता था और पत्रकारिता के क्षेत्र में भी इनका प्रमुख योगदान है इन्होंने पत्रकारिता को समाज सुधार और राष्ट्रीय जागरण का माध्यम बताया वे मानते थे कि प्रेस जनता की आवाज़ है और इसके माध्यम से समाज में जागरूकता फैलाई जा सकती है उन्होंने उड़िया भाषा के प्रसिद्ध समाचार पत्र समाज की स्थापना की समाचार पत्र के माध्यम से उन्होंने सामाजिक बुराइयों राजनीतिक समस्याओं और जनता की कठिनाइयों को प्रमुखता से उठाया आज भी समाज उड़ीसा का एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र है और गोपाल बंधु दास की पत्रकारिता की विरासत को आगे बढ़ा रहा है और स्वतंत्रता आंदोलन में इनके योगदान को याद करते हुए हम आपको ये बताते हैं कि ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सक्रिय सेनानी थे वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े और देश को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए उन्होंने संघर्ष किया महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन और दूसरे राष्ट्रीय आंदोलनों में इन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग और राष्ट्रीय एकता का संदेश इन्होंने हर बार दिया और हर बार वो बार बार जेल जाते रहे और अपने विचारों को उन्होंने सर्वोपरि रखा देश प्रथम जो है वो उनकी विचारधारा थी और साहित्य में इनके योगदान की अगर बात करें तो इनकी भाषा सरल प्रभावशाली और प्रेरणादायक थी ये एक संवेदनशील साहित्यकार के रूप में याद किए जाते हैं इन्होंने राष्ट्रप्रेम मानवता करुणा और सामाजिक जागरण का संदेश दिया उन्होंने कविता निबंध लेखों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया उनकी रचनाएं आज भी उड़िया साहित्य की अमूल्य धरोहर मानी जाती है वे मानते थे कि साहित्य समाज को नई दिशा देने का प्रभावी माध्यम है और इनके जो प्रमुख आदर्श थे जीवन के वो ये हैं

मानव सेवा ही सर्वोत्तम धर्म है। शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण होना चाहिए। समाज में समानता और भाईचारा स्थापित होना चाहिए। राष्ट्रहित को व्यक्तिगत हित से हमेशा ऊपर रखना चाहिए। सत्य, अहिंसा और सेवा जीवन के मूल सिद्धांत होने चाहिए। तो और इन्हीं विचारधाराओं के साथ जो है वो इन्होंने अपना जीवन जिया और अंततः 17 जून 1928 को इस महान समाजसेवी राष्ट्रभक्त साहित्यकार का निधन हो गया। उनके निधन से उड़ीसा ही नहीं पूरे भारत को अपूरणीय क्षति पहुंची। लेकिन जिसका आगाज़ होता है उसे अंजाम तक तो पहुंचना ही होता है। लेकिन मुख्य बात यह है कि इन्होंने जो योगदान देश के लिए दिया वो हर क्षेत्र में अमूल्य है। उसका जो गुणगान है वो शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। देखिए दोस्तों, कुछ ऐसी शख्सियतें होती हैं जिनका हमें पता नहीं होता कि वे हमारे जीवन में हमारे देश के लिए कितना कुछ करके गए हैं, लेकिन जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं तो हमेशा जो है दिल उनके सजदे में झुक जाता है और बार बार प्रणाम करने को जी चाहता है। और हमें भी इनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। और आपको ये बता दें कि आज हम मना रहे हैं संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीय एवं सूखा रोकथाम जो है वो दिवस है, और इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी आपके साथ साझा करना चाहते हैं। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम अभी समय एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य भूमि क्षरण, मरुस्थलीकरण और सूखे की समस्याओं का समाधान करना है। इस अभी समय को वर्ष 1994 में अपनाया गया और ये 26 दिसंबर 1996 से प्रभावी हुआ। ये पर्यावरण और विकास से संबंधित तीन प्रमुख संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों में से एक हैं, और जो दूसरे हैं वो हैं जलवायु परिवर्तन एवं पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय और जैव विविधता अभिसमय। इसका उद्देश्य है मरुस्थलीकरण को रोकना, सूखे के प्रभावों को कम करना, सतत भूमि प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण और गरीबी उन्मूलन। मरुस्थलीकरण को रोकने के उपाय ये हैं कि हम वृक्षारोपण करें, जल संरक्षण करें। आजकल गर्मियों के दिन हैं तो आज हम महसूस कर पाते हैं कि पानी की कितनी महत्ता है, लेकिन पानी जब हमारे पास भरपूर मात्रा में उपलब्ध रहता है तब हम उसकी कद्र नहीं करते। तो ये जो खास दिन होते हैं ये हमें याद दिलाते हैं कि हमें हमारे पर्यावरण के प्रति हमारी क्या जिम्मेवारियाँ हैं, और एक जिम्मेवार नागरिक की तरह हमें जो है अपनी पीढ़ियों के लिए, भावी पीढ़ियों के लिए जो है वो प्राकृतिक जो संसाधन है उनका संरक्षण करना है। तो ये तो थी जानकारी आज के विशेष दिवस की, और अब आगे बढ़ते हैं। समय मनोरंजन का है, अगले गीत का है, आइए आपको सुनवाते हैं। आपको याद दिला दें आप जुड़े हैं AIR FM हमीरपुर के साथ 101.8 MHz पर, और कार्यक्रम है सुप्रभात हमीरपुर।

0: सुप्रभात हमीरपुर, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: बड़ी बहू,
5: ये तुम्हारे नाम।
4: इतनी भी क्या जल्दी थी?
5: अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम।
4: और ये
5: मेरी गुड़िया।

0: पर दादी
1: हाँ?
0: आपके नाम
2: सब कुछ मैंने बैंक लॉकर फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
1: शुभ शुभ बोलो
0: क्या
3: आरबीआई कहता है।
4: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
5: इस समय आप जुड़े हैं आकाशवाणी हमीरपुर के साथ और सुन रहे हैं सुप्रभात हमीरपुर। और अब समाचार की जो सुर्खियां हैं आपके साथ साझा करते हैं। आज के समाचार क्या कहते हैं आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रांस में हो रहे G7 शिखर सम्मेलन की, जिसमें दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच संक्षिप्त बातचीत हुई। दोनों शीर्ष नेताओं की 16 महीने के बाद ये पहली मुलाकात थी। दोनों नेताओं ने राष्ट्र प्रमुखों के सम्मुख फोटो के बाद आउटरीच सत्र के दौरान जो है वो बातचीत हुई। और फरवरी में दोनों नेता पिछले साल व्हाइट हाउस में मिले थे। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति सत्र के दौरान भी एक दूसरे के पास बैठे। और इसमें अगली जो खबर है वो है हिमाचल और उत्तराखंड से जुड़ी हुई, जिसमें ये बताया जा रहा है कि हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा पर यमुना की सहायक नदी टोंस पर बनने वाली किशाऊ बांध परियोजना को लेकर बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक गतिरोध जो है वो समाप्त हो गया है। मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने परियोजना के क्रियान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर सहमति जता दी है। और इसके साथ ही एक अहम खबर ये है कि डॉक्टर की पर्ची के बिना अब कफ सिरप बाजार में नहीं बिकेंगे। हाल ही की घटनाओं से सबक लेते हुए सरकार ने दवाओं की गुणवत्ता और मरीजों की सुरक्षा के मद्देनज़र कफ सिरप यानी खांसी की दवा समेत सिरप आधारित दवाओं की बिक्री के नियम सख्त कर दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सिरप की बिक्री और वितरण को डॉक्टर के पर्चे व लाइसेंस प्राप्त फार्मेसी के दायरे में लाने का फैसला किया है। और अगली खबर है कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और उसके उपक्रमों में आउटसोर्स पर कर्मियों की भर्ती करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। जिन पदों पर आउटसोर्स आधार पर भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है या चल रही है उनके नियुक्ति पत्र भी जारी नहीं होंगे। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया व न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि बिना किसी नियमों के आउटसोर्स पर की जा रही भर्तियां भेदभावपूर्ण, मनमानी और बेरोजगारों का शोषण है।

बात मॉनसून की, दक्षिण पश्चिम मॉनसून की पश्चिमी शाखा कमज़ोर पड़ गई है। मानसून 8 जून से पश्चिमी तट पर लगभग स्थिर है। मौसम एजेंसी के मुताबिक मुंबई में मॉनसून के लिए 7-8 दिन और इंतज़ार करना पड़ सकता है। दूसरी तरफ पूर्वी शाखा लगातार प्रगति कर रही है। ओडिशा, झारखंड और बिहार के कई हिस्से जो है वो कवर में आ चुके हैं। मानसून अटकने की मुख्य वजह बंगाल की खाड़ी में मजबूत लो प्रेशर एरिया या डिप्रेशन नहीं बनना है। बंगाल की खाड़ी में ऐसा सिस्टम बनने पर अब अरब सागर से नमी और मानसून हवाएं मजबूत होती हैं जो तेज़ बारिश की वजह बनती हैं। चलिए इंतज़ार है, छुटपुट मानसून की जो बुझारें हैं वो तो पड़ ही गई हैं और हमारी जो खेती बाड़ी का काम वो भी शुरू हो ही गया है, तो अब इंतज़ार है मानसून का। अगली खबर कहती है कि जनगणना 2027 का पहला चरण हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस अब तक 23 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में पूरा हो गया है। ये कवायद दो चरणों में हो रही है। इस पर 11,718 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पहला चरण 31 सितंबर तक चलेगा जिसमें घरों और सुविधाओं से जुड़े 33 सवाल पूछे जाएंगे। दूसरा चरण फरवरी 2027 में होगा, इसमें जाति संबंधी सवाल भी शामिल होंगे। तो ये जनगणना जो है वो हमारे किसी भी देश के लिए बड़ी अहम जो होती है और इसमें सही सही जानकारी जो प्रदान करना है, जो हमारे कर्मचारी हैं जो हमें हमारी जनगणना में सहायता करते हैं उन्हें सही सही जानकारी देना हम जिम्मेवार नागरिकों का जो है वो प्रथम कर्तव्य है। तो चलिए इसी खबर के साथ अब आगे बढ़ते हैं, अगला गीत आपको सुनवाते हैं, खेल खबरों के साथ लौटेंगे इस म्यूज़िकल ब्रेक के बाद।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: जी, इस वक्त आप जुड़े हैं आकाशवाणी हमीरपुर के साथ और अब हम आपके साथ साझा करेंगे खेल खबरें। फीफा वर्ल्ड कप की सबसे पहले बात करें तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 का पांचवां दिन पूरी तरह ड्रॉ के नाम रहा। आधिकारिक रूप से 15 जून कम मजबूत मानी जाने वाली टीमों के लिए बेहद शानदार साबित हुआ। सबसे पहले केप वर्डे ने अपने रक्षात्मक खेल के दम पर यूरोपियन चैंपियन और 2010 के विश्व विजेता स्पेन को 0-0 की बराबरी पर रोक दिया। इसके बाद बेल्जियम और मिस्र का मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा, जबकि सऊदी अरब और उरुग्वे ने भी 1-1 से बराबर खेला। आखिरी मैच सबसे रोमांचक रहा, जहां ईरान और न्यूजीलैंड ने 2-2 से बेहद मनोरंजक ड्रॉ खेला। ईरान न्यूजीलैंड के इस मैच के साथ ही वर्ल्ड कप में एक नया इतिहास दर्ज हुआ। टूर्नामेंट के इतिहास में किसी एक ही दिन में 4 मैच ड्रॉ होने का ये वाकया 68 साल बाद यानी 68 ईयर्स इसके बाद हुआ है। इससे पहले ये अनोखा संयोग 15 जून 1958 को स्वीडन वर्ल्ड कप में देखा गया था। तो देखिए, ऐतिहासिक दिन था और ये इतिहास में भी दर्ज हो गया है कि ड्रॉ के नाम रहा है ये दिन। और अगली हम बात करते हैं महिला T20 मैचों की। महिला T20 वर्ल्ड कप में बुधवार को 3 मुकाबले देखने को मिलेंगे। इस दौरान खिताब की दावेदार 3 बड़ी टीमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका मैदान में उतरेंगी। पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम दोपहर 3 बजे से बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। दूसरे मैच में भारतीय टीम शाम 7 बजे से नीदरलैंड से भिड़ेगी और वहीं रात 11 बजे से अफ्रीका और पाकिस्तान की टक्कर होगी। इस धमाकेदार ट्रिपल हेडर में भारत और नीदरलैंड्स की टीमें T20 फॉर्मेट में पहली बार आमने सामने होंगी, जो कि खास बात है। इस दौरान पाकिस्तान पर 64 रनों की शानदार जीत के साथ टूर्नामेंट का आगाज करने वाली भारतीय टीम लगातार दूसरी जीत के इरादे से मैदान में उतरेगी। दूसरी ओर डेब्यू कर रही नीदरलैंड्स की टीम अपनी पहली जीत की तलाश में टीम को अपने पहले मुकाबले में बांग्लादेश के हाथों 6 विकेट से हार झेलनी पड़ी थी। मुकाबला हेडिंगले के मैदान पर खेला जाएगा। दर्शक जो हैं वो और हमारे श्रोता जो है वो हमारे आकाशवाणी दिल्ली से आंखों देखा हाल जो है आज हमारे आकाशवाणी हमीरपुर से सुन सकेंगे। और अगली बात हम आपको बताएं कि भारतीय महिला हॉकी टीम ने नेशंस कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। तो देखिए, भारत खेलों के क्षेत्र में जो है वो आगे बढ़ रहा है। लड़कियां और लड़के जो हैं वो मिलकर, चाहे वो क्रिकेट का क्षेत्र हो, हॉकी का क्षेत्र हो, अपना परचम जो है वो बखूबी लहरा रहे हैं। तो आगे हम आपको बताते हैं कि पूल ए के मुकाबले में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। कप्तान सलीमा टेटे ने 23वें मिनट और लाल रेम स्यामी ने 49वें मिनट ने भारत के लिए गोल किए, जबकि जापान की हिरामित्सु आई ने गोल दागा। भारत लगातार दूसरी जीत दर्ज कर 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। मिडफील्डर ज्योति ने अपना 100वां मैच खेला। और इसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट खबर ये है कि देश में खेलों के कायाकल्प के लिए सरकार जल्द खेलो इंडिया मिशन के नाम से पंचवर्षीय योजना लाने जा रही है। 2036 में ओलंपिक की मेज़बानी के स्वप्न को पूरा करने के लिए कई हज़ार करोड़ रुपए की इस योजना के तहत देश में लीग की संस्कृति विकसित की जाएगी। स्कूल और ज़िले से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर हर खेल की लीग कराने का खाका खींचा जाएगा। इस योजना के केंद्र में खिलाड़ी सर्वोपरि होगा। राज्यों, निजी भागीदारों और नामी गिरामी खिलाड़ियों को साथ लेकर खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। योजना का मुख्य उद्देश्य खेल प्रतिभाओं को तलाश कर उन्हें तराशना और उच्च स्तरीय प्रशिक्षकों की संख्या बढ़ाना होगा। खेलो इंडिया मिशन को मंजूरी के लिए अगले माह तक कैबिनेट में पेश किए जाने की उम्मीद है। तो देखिए, ये उम्मीद की किरण है और ये हमारे खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छी खबर है जो अपने देश का नाम ऊंचा करना चाहते हैं अपने टैलेंट से। और इसी के साथ अब आज का ये खेल खबरों का सिलसिला यहीं पर इसको विराम देते हैं और आगे बढ़ते हैं। मनोरंजन जो है वो गीत जो है इंतज़ार में है, बिल्कुल तैयार है आपके रेडियो सेट पर आने के लिए। तो चलिए सुनते हैं इस गीत को

बिल्कुल, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गर्म होती है, और यही बताती है कि किस्मत मायने रखती है लेकिन मेहनत से ज़्यादा नहीं। अगर हम मेहनत करेंगे तो किस्मत भी हमारे साथ ही चलेगी। ये दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। कभी भी अकेला जो है वो साथ नहीं होता, साथ में दोनों चलते हैं बराबर। अगर हम मेहनत करेंगे तो किस्मत हमारे साथ चलेगी। और इसी गीत के साथ आवाज का ये कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर यहीं पर समाप्त करने की हमें आज्ञा दीजिए। हम उम्मीद करते हैं आपका दिन बहुत अच्छा जाए, जैसा कि हर दिन जाता है। तो इसी नोट के साथ लेते हैं आपसे विदा और कहते हैं सुप्रभात हमीरपुर।

0: जी, अभी आप सुन रहे थे सुप्रभात हमीरपुर। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। 8 बजने को हैं और अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से समाचार।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। संघर्ष वाले इलाकों में नाविकों की सुरक्षा पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने

0: यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों को नीट पुनर्परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के फर्जी दावों पर भरोसा न करने की अपील की। पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में आज भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसीलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। श्री मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजाम्बिक में बाढ़ और जमैका में तूफान के समय भारत के सहयोग की चर्चा भी की। श्री मोदी ने कहा कि वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल पहचान और तकनीक के जरिए लोगों के सशक्तिकरण तथा महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने में सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय का मंत्र बहुत कारगर रहा है। श्री मोदी ने स्पष्ट कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी शांति और स्थिरता से आएगी, जिसके लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जरूरी हैं। G7 के सदस्य देश भारत समेत कई देशों के साथ मिलकर दुनिया भर में स्वास्थ्य और विकास सहयोग को भी मजबूत करने की पहल करेंगे। G7 के नेताओं ने अफ्रीकी देश कांगो और युगांडा में फिर से फैले इबोला के प्रकोप से निपटने के लिए मिलकर कदम उठाने की अपील की है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की इस मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है के दर्शन पर आधारित है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने भारत कनाडा संबंधों में आई सकारात्मक तेजी का स्वागत किया है और रणनीतिक साझेदारी के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने विजन 2035 के तहत आपसी संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने राष्ट्रपति अल नाहयान को इस वर्ष भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने का न्योता भी दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने केन्या और मिस्र के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने जापान की प्रधानमंत्री सानाए ताकाइची के साथ बैठक में कहा कि दोनों देशों के संबंधों में व्यापार और निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस मौके पर आकाशवाणी समाचार, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, इस विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज इस कड़ी में चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों पर।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
3: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
2: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। 5.5 एकड़ में फैली इस परियोजना ने पहुंच को सुगम बनाया है और भारत के सबसे पूजनीय आध्यात्मिक केंद्रों में से एक को नया स्वरूप दिया है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को आसान और सुविधाजनक पहुंच प्रदान कर रहा है।
4: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी सकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
2: ये परिवर्तनकारी पहले भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6 राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये फैसला यमुना को स्वच्छ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपए तक की मांग की जा रही है। NTA के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
5: NTA यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। NTA ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने परीक्षा से जुड़ी अफवाहों, भ्रामक जानकारी या झूठे दावों को फैलने से रोकने के लिए सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म्स की कड़ी निगरानी करने का भी आदेश दिया है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल में हिमालय से लगे क्षेत्रों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, केरलम, माहे और कराईकल के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश की संभावना है। वहीं राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज गरज के साथ आंधी की संभावना बन रही है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। क्रिकेट में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज लखनऊ में दोपहर 1:30 बजे से होगा। शुभमन गिल की अगुवाई वाली भारतीय टीम फिलहाल 1-0 से आगे है। धर्मशाला में खेला गया पहला मैच भारत ने जीता था। और आवाज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
6: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी अखबारों ने G7 शिखर सम्मेलन और NEET UG पुनर्परीक्षा के आयोजन से जुड़ी खबरों को सुर्खियों में जगह दी है। कुछ अखबारों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए तैयार की गई बड़ी योजना को भी मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। लोकसत्य की पहली खबर का शीर्षक है G7 का आगाज, PM मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की हुई मुलाकात। अखबार ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से उनके देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को भी प्रमुखता से छापा है। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है मोदी ट्रंप की 16 माह बाद मुलाकात, वार्ता आज। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री मोदी और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भेंट का चित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है G7 में मोदी ने उठाया भारतीय नागरिकों का मुद्दा। पत्र ने NEET UG की पुनः परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर स्थायी प्रतिबंध की खबर को भी अपना शीर्ष समाचार बनाया है। दैनिक भास्कर सहित सभी अखबारों ने इस खबर को विस्तार से पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है पेपर लीक ना हो इसलिए 22 तक टेलीग्राम बंद। पत्र ने इस वजह से आम उपयोगकर्ताओं को होने वाली परेशानी का भी विस्तार से विश्लेषण प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर द न्यूयॉर्क टाइम्स की पत्रकार आजाद ए मुआवेनी के लेख को प्रकाशित किया है। शीर्षक है क्या ये तेहरान की जीत है। इस लेख में कहा गया है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ज्यादातर अमरीकी सैन्य दखल जटिल संघर्ष में बदलती गई जिसे शायद ही कोई जीत कहे।
0: और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से वैश्विक समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से करेंगे मुलाकात। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान ने यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किछाऊ बांध परियोजना के अमल पर सहमति व्यक्त की। और पुरुष क्रिकेट में भारत आज दोपहर लखनऊ में 3 मैचों की श्रृंखला में दूसरे वनडे में अफगानिस्तान के साथ खेलेगा। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sarabjit Kaur. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls on all nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Prime Minister Modi to meet US President Donald Trump on the sidelines of G7 summit in Avion, France today. Himachal Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan reach consensus on implementation of long-pending Keshau Dam project to revive Yamuna River. National Testing Agency warns candidates against fake NEET re-exam paper leak claims. IMD issues orange alert for heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in second ODI of 3-match series in Lucknow this afternoon. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has called on all nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Addressing an outreach session of G7 summit in Avignon, France, Mr. Modi said that conflicts in West Asia have disrupted global trade and caused loss of life, highlighting the growing risks to maritime trade and the human cost of instability in West Asia. Prime Minister said, it is our responsibility to ensure the safety of the seafarers who connect all nations through global maritime trade. Ministry of External Affairs informed that during the session, the Prime Minister underscored the importance of trust in building international partnerships, especially in an increasingly interconnected world. The Prime Minister also noted that international partnerships should move beyond the donor-recipient paradigm to one of solidarity and equal ownership. He also stated that lack of respect for international law was the biggest hurdle to building international solidarity and needed to be addressed as a priority. The French city of Avignon remains the epicenter of global diplomacy today as the G7 summit enters its crucial phase. With India participating as a partner country, all eyes are firmly set on a highly anticipated bilateral meeting between Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump, scheduled for later today on the sidelines of the summit. This marks the first face-to-face meeting between the two leaders since they last met in Washington, D.C. in February 2025. During today's engagement, they are expected to hold wide-ranging discussions to deepen bilateral cooperation across multiple sectors while also deliberating on pressing regional and global issues of mutual interest. A report.
1: This meeting also holds significance as India has emerged as a major global power, with the international community increasingly looking towards New Delhi for solutions to complex global challenges. India's growing role in shaping discussions on global issues reflects its expanding diplomatic outreach and active engagement with world leaders across forums. During an outreach session at the summit yesterday, Prime Minister Narendra Modi underscored the importance of trust in building international partnerships, especially in an increasingly interconnected world. He also highlighted that India has always followed a humanity-first approach. He said this is reflected in India-led initiatives such as the International Solar Alliance, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, the Global Biofuel Alliance, Mission Life and Ek Ped Maa Ke Naam campaign. He further said that India's vision of international partnership is rooted in the timeless philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam. The world is one family. Ankit Kumar, Akashwani News, Avignon, France.
7: Besides his meeting with the US President, Prime Minister Modi is also scheduled today to participate in the G7 working session on reviving balanced, inclusive and sustainable economic growth for the benefit of all, and the working lunch on ensuring the safe, rapid and effective deployment of artificial intelligence. The Prime Minister will also hold a trilateral meeting with EU Council President Antonio Costa, European Commission President von der Leyen, and a bilateral engagement with German Chancellor Friedrich Merz. Earlier yesterday, the Prime Minister held bilateral meetings with Canadian Prime Minister Mark Carney, United Kingdom Prime Minister Keir Starmer, and the President of the United Arab Emirates, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, on the sidelines of the summit. The G7 nations have announced a series of initiatives to strengthen global health and development cooperation with several partner countries, including India. The G7 leaders called for a coordinated international response to the re-emerging Ebola outbreak in the Democratic Republic of Congo and Uganda. India, Egypt, Kenya and South Korea joined the appeal for enhanced measures, including contact tracing, border surveillance and community engagement. The leaders also pledged support for the development of vaccines, diagnostics and treatments for the rare Ebola strain. Home Minister Amit Shah chaired a crucial meeting in New Delhi yesterday on the long-pending Keshav Multipurpose Dam project aimed at the rejuvenation of the Yamuna River. In a statement, Home Ministry said that Himachal Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan have agreed to sign a memorandum of understanding for the implementation of the project. Following the signing of the MOU, the Keshav project will be placed before the Union Cabinet for approval. Under the agreed funding pattern, the central government will provide 90% assistance for the water component of the project, while the remaining 10% will be shared by the six states. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Welcome back. You're listening to the Morning News. National Testing Agency, NTA, has urged parents and candidates to beware of scammers ahead of NEET examinations. In a social media post, NTA said that scammers on Telegram are running channels demanding money ranging from 14,000 to 25,000 rupees with claims of sharing the re-exam paper.
8: It clarified that there is no leaked paper for the re-examination. It said that fake proof videos showing chats from before the exams are also being circulated. NTA also shared the video of its Director General Abhishek Singh explaining the reason behind blocking the access to the app in the country. Talking to media, Mr. Singh said that NTA is committed to ensuring that no malpractice happens and assured that every question paper has been made in a complete secure manner. He said the agency has added layers of security to ensure that nobody who is involved in setting up the question papers, translating, printing, moving or storing them till the date of examination is compromised in any manner. With Rishu Jaiswal, Priya Mondal, Akashvani News, Delhi.
7: India has undergone a remarkable transformation driven by the principles of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi in the last 12 years. During this period, the Modi government carried out many flagship initiatives for the welfare and empowerment of the poor, farmers, women and youth. Akashvani News brings you a special feature, 12 Saal Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke. Today we focus on the steps taken by the government towards preservation and promotion of the country's heritage.
2: Over the past 12 years, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, India has undertaken several landmark initiatives to preserve, promote and celebrate its civilizational legacy, instilling a sense of pride among millions of citizens. One of the most significant moments came in January 2024 when Prime Minister Narendra Modi performed the Pran Pratishtha of Ram Lala at the Grand Shri Ram Janmabhoomi Mandir in Ayodhya, marking the fulfillment of a centuries-old aspiration. Built in the traditional Nagara style, the temple stands as a symbol of faith, devotion and India's architectural excellence. Talking to Akashvani News, Pankaj Jaria, a devotee who recently visited the temple, shared his experience.
9: Mera naam Pankaj Jaria hai.
10: A few days ago, I went to Ayodhya where we had the darshan of Prabhu Shri Ram. The arrangements are very good. The government has made excellent arrangements to manage the crowd. Everyone stands in line to have the darshan. There are locker facilities for people to keep their belongings. There is also a facility for drinking water. Very good arrangements have been made and there are also beautiful table locks and displays which look very divine.
2: In Ujjain in Madhya Pradesh, the first phase of the Mahakal Lok project was dedicated to the nation in October 2022. The total cost of the project is around 850 crore rupees. The Grand Corridor showcases magnificent sculptures, murals and architectural elements depicting the life and legends of Lord Shiva. Equipped with modern technology and AI-enabled monitoring systems, Mahakal Lok beautifully blends heritage with innovation. In Varanasi, the Kashi Vishwanath Corridor, inaugurated in December 2021, has transformed the pilgrimage experience by directly connecting the sacred Kashi Vishwanath Temple with the River Ganga. Spread across 5.5 acres, the project has enhanced accessibility and revitalized one of India's most revered spiritual centers. From 2014 to March 2025, work commenced on 580 development projects in Kashi, undertaken at a total cost of over 48,000 crore rupees. Talking to Akashvani News, a resident of Varanasi, Priyanshu Singh, said that the Kashi Vishwanath corridor is providing ease of access to pilgrims visiting the temple.
11: My name is Priyanshu Singh. I am a resident of Varanasi. Prime Minister Narendra Modi has done done a lot of work in Kashi. Earlier, the road leading to the temple used to be quite narrow, which caused a lot of inconvenience. But now, since the corridor has been built, the crowd management is more efficient and people can visit and have a darshan more easily.
4: Darshan karne mein kaafi aasani hoti hai.
2: Saklan Akhtar, Akashwani News, Delhi.
7: In men's cricket, India will take on Afghanistan in the second ODI of three-match series at the Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ikana Cricket Stadium in Lucknow today. The match is scheduled to begin at 1:30 p.m. Shubman Gill-led men in blue are currently leading the series 1-0 and will aim to clinch the series in today's clash. In women's cricket, India will take on Netherlands in their second Group A clash of ICC Women's T20 World Cup at Headingley in Leeds today. The match is scheduled to begin at 7 p.m. Indian time. In football, Norway returned to the FIFA World Cup in style with a 4-1 win over Iraq in their Group I opener at the Boston Stadium in the United States this morning. Norway's Erling Haaland netted twice to make his World Cup debut special. The scoreline now put Norway top of Group I. Earlier, France defeated Senegal 3-1 in the opening game of Group I of FIFA World Cup 2026. India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall today at isolated places over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim. Moderate to heavy rainfall is expected during the day over parts of Assam, Meghalaya, Bihar, Kerala and Mahe. And now for a look at today's newspapers. It's over to Tanvi Khurana.
12: Thank you, Sarabjit. Most newspapers today open with the details of the G7 in France, addressing an outreach with Trump present, Modi flags, seafarers' safety at G7 is the lead in the Hindustan Times. The Indian Express informs government bans Telegram until 22nd of June in bid to secure NEET retest. The Statesman in its editorial piece captioned, "Peace without peace," writes, "The announcement of a framework agreement between the United States and Iran has understandably been greeted with relief. Oil prices have retreated from their wartime highs, stock markets have rallied and governments dependent on Gulf energy supplies have welcomed what appears to be a retreat from the edge. But relief is not the same as resolution. For weeks, the conflict demonstrated how a regional confrontation can swiftly become a global economic problem." The Delhi Tribune says to curb pollution, Delhi may soon allow only BS6 vehicles. And finally, with the weather being benevolently pleasant on Tuesday, the Statesman has captured a picture of people relaxing under the shade of trees on the lawns near India Gate. And with that, it's back to you, Sarabjit.
7: Thank you, Tanvi. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi calls on all nations to ensure security of global maritime routes and protect seafarers from conflict-related threats. Prime Minister Modi to meet US President Donald Trump on the sidelines of G7 summit in Avion, France today. Himachal Pradesh, Uttarakhand, Delhi, Uttar Pradesh, Haryana and Rajasthan reach consensus on implementation of long-pending Keshau Dam project to revive Yamuna River. National Testing Agency warns candidates against fake NEET re-exam paper leak claims. IMD issues orange alert for heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in second ODI of three-match series in Lucknow this afternoon. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
13: FM बैंड 101.8 MHz पर हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं. 8:30 हुए हैं और अब पेश है हिमाचल डायरी का आज का अंक. हिमाचल डायरी के आज के इस अंक में आप सभी का स्वागत है. आज के इस अंक में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की 10वीं और 12वीं कक्षा की अनुपूरक यानी कि सप्लीमेंट्री परीक्षाओं का कार्यक्रम जो है वो जारी कर दिया है. बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि परीक्षाएं 3 जुलाई 2026 से सुबह 8:45 से दोपहर 12 बजे तक आयोजित होंगी. बोर्ड के अनुसार 10वीं कक्षा की सप्लीमेंट्री परीक्षाएं 3 से 10 जुलाई तक जबकि 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 3 से 16 जुलाई 2026 तक संचालित की जाएंगी. इन परीक्षाओं में कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट, अतिरिक्त विषय, डिप्लोमा धारक री अपियर और स्पेशल चांस श्रेणी के विद्यार्थी शामिल हो सकेंगे। हिमाचल परिवहन निगम की हमीरपुर से ओहल व सुजानपुर से कोट चोरी के रूटों पर चलने वाली बसें 15 दिनों से ठप पड़ने से कई पंचायत के लोगों के साथ साथ स्कूली स्टूडेंट्स को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक ये बस सुविधाएं बहाल नहीं हो पाई हैं। अब इसकी शिकायत जो है वह DC से लेकर RM तक पहुंची है। लोगों ने मांग उठाई है कि जल्द से जल्द इन दोनों अलग अलग रूट पर इन बसों को बहाल किया जाए। स्कूलों में स्टूडेंट्स और स्टाफ को आग से बचाने के लिए आपातकालीन निकास मार्गों का इस्तेमाल करने, अग्निशामक यंत्र चलाने और सुरक्षित स्थानों पर इकट्ठा होने की जानकारी दी जा रही है। अग्निशमन विभाग द्वारा स्कूलों में मॉक ड्रिल आयोजित कर आग लगने पर घबराए बिना सुरक्षित बाहर निकलने और आग पर काबू पाने का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अग्निशमन विभाग के लीडिंग फायरमैन योगराज का कहना है कि इसी कड़ी में जोल सप्पड़ और रैल सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में फायरमैन राकेश कुमार और इन सब के साथ जो है इस मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है और किया गया है। जनगणना 2027 के प्रथम चरण के तहत जिले में मंगलवार से मकानों के सूचीकरण और मकान गणना का कार्य शुरू हो गया है। ये अभियान जो है वो 15 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान प्रगणक और सुपरवाइजर घर घर जाकर आंकड़े एकत्रित करेंगे। उपायुक्त एवं जिला की प्रधान जनगणना अधिकारी गंधर्वा राठौर ने बताया कि पहले चरण में मकानों का सूचीकरण और गणना की जाएगी, जबकि अगले वर्ष वास्तविक जनगणना संपन्न होगी। उन्होंने सभी प्रगणकों और सुपरवाइजरों को फील्ड में जाकर सटीक और वास्तविक डेटा एकत्रित करने के लिए निर्देश दिए। उपायुक्त ने जिलावासियों से अपील की है कि वे जनगणना कर्मियों का सहयोग करें और सही जानकारी उपलब्ध करवाएं। उन्होंने कहा कि जनगणना से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर ही भविष्य की विकास योजनाएँ तैयार की जाती हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI रैल में शुरू किए जाने वाले प्राकृतिक खेती सर्टिफिकेट कोर्स को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। संस्थान पाठ्यक्रम को अंतिम रूप देने में जुटा है। कोर्स में सीटों की संख्या और प्रवेश संबंधी अन्य जानकारियां आगामी प्रोस्पेक्टस में जारी की जाएंगी। प्राकृतिक खेती को लेकर युवाओं को जागरूक करने के लिए संस्थान पंचायतों के सहयोग से विशेष अभियान चलाने की तैयारी कर रहा है। पिछले वर्ष शुरू किए गए कोर्स में एक भी विद्यार्थी ने प्रवेश नहीं लिया था, जिसके चलते कक्षाएँ शुरू नहीं हो सकी थी। अब कोर्स की अवधि 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दी गई है। ITI रेल के प्रधानाचार्य कपिल ठाकुर ने बताया कि कोर्स में सीटों की संख्या और अन्य विवरण प्रोस्पेक्टस जारी होने के बाद स्पष्ट होंगे। नाबार्ड के तहत हमीरपुर और सुजानपुर विधानसभा क्षेत्रों की पेयजल योजनाओं के लिए लगभग 33 करोड़ की स्वीकृति मिल गई है। इस राशि के तहत इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों की महत्वपूर्ण पेयजल योजना की मशीनरी का अपग्रेड करने और नए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की महत्वपूर्ण कार्य हो सकेंगे। इस योजना के तहत जल शक्ति विभाग हमीरपुर के नालटी अनुभाग के अंतर्गत विभिन्न पेयजल योजनाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 19 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। तो ये था हिमाचल डायरी का आज का अंक। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। FM बैंड 101.8 MHz पर 8:35 हुए हैं। अब आप सुनेंगे हमारे केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

0: शंकर महादेवन की आवाज में प्रसून जोशी का लिखा ये नखमा मणि कर्णिका पुंसिता।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना, उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: विविध भारती से आप सुन रही चित्रलोक।

0: और महेश बुधवार को आज के मेहमान, शुक्रवार को गीतों भरी कहानी, शनिवार बॉम्बे टॉकीज।
1: मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता।
0: और रविवार
2: उजाले उनकी यादों की।
0: जिंदगी सचमुच एक सुहाना सफर है, क्योंकि विविध भारती आपकी हम सफर है। सुनते रहिए विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
3: चित्रलोक कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।

0: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 MHz पर। थोड़ी ही देर में अब आकाशवाणी के शिमला केंद्र से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
1: जिनके पास अपार वृद्ध है समाज की असली धार,
2: सीखें युवा दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
3: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद, अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनित में जारी।
4: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
5: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प।
4: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
6: अरे पता है, हिमाचल प्रदेश में जनगणना का पहला चरण 16 जून से 15 जुलाई तक चल रहा है।
7: अच्छा, इसमें क्या होगा?
6: इसे मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कहते हैं। इसमें मकानों से जुड़ी जानकारी ली जाएगी।
7: अच्छा, तो क्या घर के दस्तावेज, बैंक की जानकारी या कोई ओटीपी देना होगा?
6: नहीं, बिल्कुल नहीं। जनगणना में किसी भी प्रकार के दस्तावेज, बैंक विवरण, पासवर्ड या ओटीपी नहीं मांगा जाता।
7: अच्छा,
6: केवल अधिकृत 33 प्रश्नों की जानकारी दीजिए। सही जानकारी देकर हिमाचल प्रदेश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए।
8: हाँ,

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियान में G7 शिखर सम्मेलन में एक सत्र को किया संबोधित। अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में विश्वास के महत्व पर दिया जोर। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू आज से धर्मशाला के 2 दिवसीय प्रवास पर, विभिन्न विकास योजनाओं का करेंगे उद्घाटन व शिलान्यास। कुल्लू जिला के जिया में ड्रेजिंग का कार्य शुरू। मानसून से पूर्व लगभग 225,000 मीट्रिक टन नदी तल सामग्री निकालने का लक्ष्य। और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट परीक्षा से पहले अभिभावकों और उम्मीदवारों से जालसाजों से सावधान रखने का किया आग्रह। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियान में G7 शिखर सम्मेलन में एक सत्र को संबोधित किया। इसका विषय था नई साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का निर्माण। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सत्र में प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में विश्वास के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर गठबंधन, वैश्विक बायोफ्यूल गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम अभियान शामिल है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है, और इसीलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है।
1: बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी का भारत का दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है के दर्शन पर आधारित है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वित्तीय समावेशन, स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल पहचान तकनीक के जरिए लोगों के सशक्तिकरण और महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का मंत्र बहुत कारगर रहा है। इधर G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक पर सबकी नजरें टिकी हैं। भारत G7 शिखर सम्मेलन में सहयोगी देश के तौर पर शामिल है। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी आज G7 के एक अन्य सत्र में भी हिस्सा लेंगे। इसका विषय है सबके लाभ के लिए संतुलित समावेशी और टिकाऊ आर्थिक विकास की फिर से शुरुआत। वे यांत्रिक मेधा को सुरक्षित, तेजी से और प्रभावी ढंग से लागू करने पर आयोजित वर्किंग लंच में भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू आज से 2 दिवसीय कांगड़ा जिले के धर्मशाला दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री इस दौरान कई विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री आज सुबह नई दिल्ली से हवाई मार्ग से गग्गल पहुंचेंगे। इसके बाद वे नगरोटा बगवा के पठ्यार स्थित धर्मगिरी में आयोजित महाराणा प्रताप जयंती समारोह में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जन शिकायतें भी सुनेंगे और लोगों से सीधा संवाद करेंगे। दोपहर बाद मुख्यमंत्री धर्मशाला पहुंचेंगे और शाम को कोतवाली बाजार स्थित फव्वारा चौक के सौंदर्यीकरण कार्य का उद्घाटन करेंगे। इसके पश्चात वे धर्मशाला में ई बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन सहित सिटी बस डिब्बो का लोकार्पण करेंगे। वे अपने प्रवास के दूसरे दिन मुख्यमंत्री कल दाड़ी स्थित मेला मैदान में कांगड़ा जिले की नवनिर्वाचित ग्राम पंचायतों के प्रधानों और उप प्रधानों को शपथ दिलाएंगे। इस कार्यक्रम में जिले भर से पंचायत प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। कुल्लू जिला में व्यास व पार्वती नदी के संगम स्थल जिया में वैज्ञानिक ड्रेजिंग कार्य का शुरू कर दिया गया है। इसका उद्देश्य केवल नदी तल से वैज्ञानिक तरीके से सामग्री निकालना ही नहीं, बल्कि नदी प्रशिक्षण, तलछट प्रबंधन, संवेदनशील आधारभूत संरचनाओं पर दबाव कम करना और व्यास नदी तंत्र के संवेदनशील क्षेत्रों में बाढ़ जोखिम को कम करना भी है। वर्ष 2026 के मानसून से पूर्व इन स्थानों से लगभग 1.25 लाख मीट्रिक टन नदी तल सामग्री निकाले जाने का लक्ष्य रखा गया है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे कुल्लू जिला संवाददाता की ये रिपोर्ट।
2: उद्देश्य केवल नदी तल से वैज्ञानिक तरीके से सामग्री निकालना ही नहीं बल्कि नदी प्रशिक्षण, तलछट प्रबंधन, संवेदनशील आधारभूत संरचनाओं पर दबाव कम करना तथा ब्यास नदी तंत्र के संवेदनशील क्षेत्रों में बाढ़ जोखिम को कम करना भी है। जिया संगम स्थल को हिमाचल प्रदेश में ड्रेजिंग एवं नदी प्रबंधन के लिए विकसित की जा रही व्यापक कुल 9 साइटों का चयन किया गया है। वर्ष 2026 के मानसून से पूर्व इन स्थानों से लगभग 1.25 लाख मीट्रिक टन नदी तल सामग्री निकाले जाने का लक्ष्य रखा गया है। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा।
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in, DTH सेवा और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी सुने जा सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। हिंदू पंचांग विक्रम संवत के अनुसार महाराणा प्रताप जयंती की आज मनाई जा रही है। मेवाड़ के महान राजपूत राजा महाराणा प्रताप का नाम भारत के उन वीरों में लिया जाता है जिन्होंने देश को मुगलों से बचाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ी थी। देश सहित प्रदेश भर में आज इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू आज कांगड़ा जिले के धर्मशाला में महाराणा प्रताप जयंती समारोह में शामिल होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एजेंसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि घोटालेबाज लोग टेलीग्राम पर ऐसे चैनल चला रहे हैं जिनमें 21 तारीख को प्रस्तावित परीक्षा के प्रश्न पत्र साझा करने के लिए 14,000 से 25,000 रुपये तक की मांग की जा रही है। एजेंसी ने स्पष्ट किया कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। NTA ने महानिदेशक अभिषेक सिंह का वीडियो जारी किया है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि देश में टेलीग्राम ऐप को कोई फिलहाल बंद नहीं किया गया है। आज विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस है। ये दिवस मरुस्थलीकरण और सूखे के प्रभावों से निपटने के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है चारागाह पहचान, सम्मान और पुनर्स्थापना। ये विषय चारागाहों के आर्थिक, पारिस्थितिकी और सांस्कृतिक महत्व को अधिक मान्यता देने, संरक्षकों के प्रति सम्मान दिखाने और खराब हो चुके चारागाहों को पुनर्स्थापित करने के लिए अधिक निवेश की जरूरत की ओर संकेत करता है। जल शक्ति विभाग द्वारा आज केलंग में मल निकासी योजना के भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। लाहौल स्पीति की विधायक अनुराधा राणा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। ये योजना केलंग क्षेत्र में आधुनिक और व्यवस्थित सीवरेज व्यवस्था विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता।
3: केलांग क्षेत्र में आधुनिक और व्यवस्थित सीवरेज व्यवस्था विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। परियोजना के क्रियान्वयन से क्षेत्र में स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के साथ साथ लोगों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। विभाग की ओर से आम नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और विभिन्न आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: और अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला का शीर्षक है किशाऊ बांध परियोजना, हिमाचल के हिस्से का खर्च उठाएंगे दिल्ली राजस्थान प्रोजेक्ट, लागत उठाने के एवज में अपने हिस्से का पानी दोनों राज्यों को देगा हिमाचल प्रदेश। पंजाब केसरी के शब्द हैं किशाऊ बांध परियोजना में हिमाचली हक को मनवाने में सफल रहे सुक्खू, सालाना 600 करोड़ रुपये आय होगी। दैनिक जागरण और दिव्य हिमाचल की लगभग एक जैसी सुर्खी है आउटसोर्स भर्तियों पर लगी रोक, हाईकोर्ट का आदेश, कोई भी नियुक्ति भर्ती और पदोन्नति नियमों के विपरीत नहीं होगी। दैनिक भास्कर की एक खबर है हाईकोर्ट के आदेश के बाद CBSE स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षकों की नियुक्तियों पर रोक, 15 जून को जारी आदेश रद्द, अगली कार्रवाई कोर्ट के निर्देशों पर निर्भर। हिमाचल दस्तक लिखता है एक बागवान से 100 बोरी तक सेब भी खरीदा जाएगा, सेब खरीद पर राज्य सरकार का बड़ा फैसला। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियान में G7 शिखर सम्मेलन में सत्र को किया संबोधित, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी में विश्वास के महत्व पर दिया जोर। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू आज से धर्मशाला के 2 दिवसीय प्रवास पर, विभिन्न विकास योजनाओं का करेंगे उद्घाटन व शिलान्यास। कुल्लू जिला के जिया में ड्रेजिंग का कार्य शुरू। मॉनसून से पूर्व लगभग 1.25 लाख मीट्रिक टन नदी तल सामग्री निकालने का लक्ष्य। और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट परीक्षा से पहले अभिभावकों और उम्मीदवारों से जालसाजों से सावधान रहने का किया आग्रह। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 11:00 बजे। नमस्कार।
4: FM बैंड 101.8 MHz पर हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 9:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
5: नौशाद। अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
6: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: दोस्तों नमस्कार, यूनुस खान की ओर से।
1: ये कौन है?
2: कबाब में हड्डी।
0: आज के फनकार कार्यक्रम में आज जिक्र उस अभिनेता का जिसने सन 1955 में बनी बिमल रॉय की फिल्म देवदास में चुन्नी लाल की यादगार भूमिका निभाई थी।
3: हाय हाय, तुम क्यों रुक गई? तुम रुकी क्या, दिल हमारा रुक गया, गम के मारे आसमां भी झुक गया।
1: ए देवदास, तुम कहां चले? घबराने की क्या बात है? बैठो बैठो बैठो। हाँ तो शुरू हो जाओ उस्ताद।

0: क्या और भला सच है क्या, जिंदगी ख्वाब है।
1: मोतीलाल को हिंदी फिल्मों के बेहद सौम्य और शिष्ट अभिनेताओं में गिना जाता है। सन 1910 में शिमला में उनका जन्म हुआ था। उनका पूरा नाम था मोतीलाल राजवंश। सन 1934 में आई फिल्म शहर का जादू से मोतीलाल की अभिनय यात्रा की शुरुआत हुई थी। सागर मूवी टोन के बैनर तले बनी इस फिल्म के निर्देशक थे केपी घोष। 30 के दशक में नायिका सविता देवी के साथ फिल्मों में उनकी जोड़ी बड़ी मशहूर रही। इस जोड़ी की कुछ खास फिल्में थीं डॉक्टर मधुरिका, जिसके लेखक थे जाने माने साहित्यकार कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी। रंजीत मूवी टोन की फिल्म अछूत, जयंत देसाई की फिल्में दीवाली और शादी, जिनमें मोतीलाल और सविता देवी नायक नायिका थी। बाद में चतुर्भुज जोशी की सन 1941 में आई फिल्म परदेसी और ससुराल में वे अभिनेत्री माधुरी के साथ दिखाई दिए। भारतीय सिनेमा की यात्रा पर शुरुआती दौर में पारसी रंगमंच और नौटंकियों के बेहद कलाबाजी भरे अभिनय की गहरी छाप पड़ी थी। अभिनय में अति नाटकीयता का समावेश होता था, लेकिन कहा जाता है कि मोतीलाल ने हिंदी सिनेमा में स्वाभाविक और सहज अभिनय की शुरुआत की, जिसमें संवादों की अदायगी उतनी नाटकीय न होकर बिल्कुल आम जिंदगी की बोलचाल जैसी होती थी।
2: देखते हो रंगीन जिंदगी, ये वो लोग हैं जिन्हें सड़कों पर बटुए मिले और उन्होंने लौटाए नहीं।
3: इसे मुझे जानने की जरूरत नहीं, मुझे इजाजत दीजिए।
2: क्या काम करते हो?
3: बेकार।
2: नौकरी चाहते हो?
3: मुझे नौकरी मिलेगी।
2: इस पते पे कल चले जाना और मैनेजर साहब से मिलना।
1: जाने माने फिल्मकार महबूब खान की शुरुआती फिल्मों में मोतीलाल नायक रहे थे, जैसे सन 1943 में आई तकदीर, सन 1937 में आई जागीरदार और सन 1938 में आई फिल्म हम तुम और वो। केदार शर्मा की फिल्म अरमान और कलिया में भी मोतीलाल ने काम किया था। सन 1945 में आई थी फिल्म पहली नजर, जिसमें वीणा मोतीलाल की नायिका थी। हम आपको याद दिला दें कि इसी फिल्म से पार्श्व गायक मुकेश की गीत यात्रा शुरू हुई थी। मोतीलाल मुकेश के चचेरे भाई थे और वे ही मुकेश को फिल्म संसार में लाए थे। फिल्म पहली नजर में संगीतकार अनिल विश्वास के निर्देशन में मुकेश ने गाया था अपना पहला नगमा।

सन 1948 में आई फिल्म गजरे, जिसमें सुरैया मोतीलाल की नायिका थीं। इस फिल्म के संगीतकार थे अनिल विश्वास और गीतकार गोपाल सिंह नेपाली। ये है सुरैया का गाया नगमा।

सन 1949 में आई रूप शौरी की फिल्म एक थी लड़की, इसमें मोतीलाल की नायिका थी मीना शौरी। आपका ये दोस्त इस फिल्म का एक दुर्लभ गीत ढूंढ कर लाया है खास तौर पर आपके लिए।

0: ज्योतिलाल की सबसे उल्लेखनीय फिल्म मानी जाती है सन 1952 में आई जेमिनी प्रोडक्शंस की मिस्टर संपत। आर के नारायण के प्रसिद्ध उपन्यास पर बनी इस फिल्म में मोतीलाल ने एक शरीफ बदमाश का किरदार निभाया था।
1: इतना ही नहीं जनाब, मैं कहता हूँ कि आज आधी से ज्यादा दुनिया 420 है। जिधर निगाह उठा के देखिए, चोर बदमाश डाकू नजर आते हैं, और मजा यह है कि देखने में आपसे और हमसे ज्यादा शरीफ मालूम होते हैं। कौन जाने यहाँ हम लोगों में कौन शरीफ है और कौन 420। ना जाने क्या होने वाला है दुनिया का। 8 आने के 12 केले, लूट मची हुई है चारों तरफ, जिसको देखो ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है। आपने वो केले वाले को मुझे ना बताया, सीधा पुलिस की हिरासत में भेज देता उसको।
2: अच्छा
1: जी हाँ, आप लोग नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ और क्यों हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि मैं थर्ड क्लास पैसेंजर हूँ। जी नहीं, मैं चाहूँ तो फर्स्ट क्लास में सफर कर सकता हूँ, सलून में भी सफर कर सकता हूँ, लेकिन चाहता नहीं। पूछिए क्यों। मैं ये जानना चाहता हूँ कि थर्ड क्लास के पैसेंजरों को क्या क्या तकलीफें हैं, उनको किन किन सहूलियतों की जरूरत है। मैं आप लोगों का हूँ, जनता का हूँ। बाय द वे, जनता एक्सप्रेस के बारे में तो आपने सुना होगा, वो मेरा ही आइडिया था।
2: आपका आइडिया?
1: ऑफ कोर्स।
2: टिकट प्लीज, टिकट, टिकट प्लीज।
1: पास।
2: क्या मैं देख सकता हूँ?
1: ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। मैंने तुम्हें कहीं देखा है, शर्मा जी के घर।
2: कौन शर्मा?
1: अरे भाई वो तुम्हारे DTH।
2: आपका मतलब वर्मा जी से है?
1: हाँ, वर्मा जी। वर्मा शर्मा में क्या फर्क है, दोनों मेरे जिगरी दोस्त हैं। क्या तनख्वाह मिलती है तुम्हें?
2: 125 रुपए।
1: 125 रुपए और डियरनेस अलाउंस और भत्ता?
2: 50 रुपए।
1: 50 और 125, 175 रुपए मिलते हैं, और दिन रात बैल की तरह से काम करते हो। जुल्म है ये, सरासर जुल्म है। मैं तुम्हारे लिए वर्मा जी से बात करूंगा। क्या नाम है तुम्हारा?
2: राम प्रसाद।
1: राम प्रसाद, मैं वर्मा जी से तुम्हारे लिए बात करूंगा और तरक्की कराने का इंतजाम करूंगा। अब तुम जा सकते हो।
2: थैंक यू सर, थैंक यू।
0: सन 1954 में HS रवेल की फिल्म मस्ताना में मोतीलाल ने एक यादगार भूमिका निभाई। इस फिल्म में उनकी नायिका थी निगार सुल्ताना।

0: सन 1955 में आई मोतीलाल के फिल्म जीवन की सबसे यादगार फिल्म देवदास।
1: अरे देवदास, अरे चुनी हुआ हो तुम, ये क्या सूरत बना रखी है, पहचाने भी नहीं जाते, क्या खबरें हैं?
2: खबर बस यही है कि जिंदा हैं। तुम यहाँ कैसे?
1: भाई कलकत्ता हमें रास नहीं आया, दिल्ली में एक नौकरी कर रखी है, उस सिलसिले में दौरे पे जा रहे हैं, आज यहाँ कल वहाँ। तुम कहाँ जा रहे हो?
2: ये भी कुछ तय नहीं किया।
1: मकसद?
2: जिंदगी में अब कोई मकसद ही नहीं रहा चुनी बाबू।
1: तुम रहे वही देवदास। अच्छा ठहरो, इतने दिनों के बाद मिले हैं, मुलाकात को रंगीन किया जाए, क्या ख्याल है? अब तो हम सोडा मिलाने के भी कायल नहीं रहे, क्यों फजूल सोडे पे पैसे जाया किए जाए, लेकिन तुम्हें तकलीफ होगी, थोड़ा पानी मिला दो।
2: मैंने पीना छोड़ दिया है चुनी बाबू।
1: किसी ने अपने सर की कसम तो नहीं दिला दी?
2: ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस नहीं पीऊंगा।
1: अरे अरे, मगर ये गिलास कहाँ ले जाते हो? तुम नहीं पियोगे तो मैं पी लूंगा। अच्छा, ये वो पुराना मर्ज है या कोई नया रोग लगा लिया? अरे कुछ कहते क्यों नहीं?
2: क्या कहूँ चुनी बाबू, मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, अब तो बस यही अच्छा लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं लगे।
1: तुम्हें क्या दुख है? मैं अच्छी तरह समझता हूँ देवदास, लेकिन ये ना समझो कि सिर्फ तुम ही इस दुख के शिकार। जब इस दुख की आग सीने में भड़कती है तो इसी का सहारा लेना पड़ता है, इसी आग से उस आग को बुझाया जा सकता है, और कोई चारा नहीं।
0: सन 1956 में फिल्म जागते रहो, जिसमें मोतीलाल के अभिनय की मिसाल आज भी दी जाती है।

सच है क्या, जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या, और भला सच है क्या, तब सच है।

0: सन 1959 में ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनाड़ी में मोतीलाल एक कड़क बिजनेसमैन के किरदार में नजर आए थे।
1: आजी इस घर में हो क्या रहा है? तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ।
2: ये क्या गाना पूछी हो रही तुम लोग?
3: कुछ नहीं चाचा जी, यूं ही बात कर रहे थे। वो राजकुमार नीचे आए हैं ना।
1: तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि उसका नाम राजकुमार है?
3: जी मुझे आशा ने बताया।
1: आशा को कैसे मालूम हुआ कि वो कौन है, क्या है, कहाँ काम करता है?
3: जी मैं जी आरती। घबराओ नहीं आशा, चाचा जी तुम्हें काट थोड़ी खाएंगे, बताओ ना।
1: हाँ डरने की क्या बात है, राजकुमार को तो मैं खुद पसंद करता हूँ, मेरे यहाँ तो काम करता है वो।
3: सॉरी।
1: हाँ मैं क्या कह रहा था, राजकुमार बड़ा काबिल लड़का है, बड़ा होनहार है, बड़ा ईमानदार है।
3: हाँ और बड़े अच्छे चित्रकार भी हैं और गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं।
1: अच्छा
3: मुझे आशा ने बताया।
0: सन 1959 में दिलीप कुमार और मोतीलाल एक साथ नजर आए फिल्म

0: सन 1960 बिमल रॉय की फिल्म परख, मोतीलाल का यादगार अभिनय।
1: ये क्या पागलपन फिर से शुरू कर दिया है तूने? कहाँ था डेढ़ महीने से?
2: तुम्हारे ही काम के लिए गया था मैं।
1: मेरा काम?
2: हाँ, तुम्हें याद नहीं, पिताजी की वसीयत के मुताबिक वो 5 लाख रुपए का चेक जो राधा नगर मैंने भेजा था, उस वक्त तुम्हें कहा था कि ये रुपया किसी गलत आदमी के हाथ में न पड़ जाए, इसलिए मैं वहाँ गया। वहाँ जाके पोस्ट ऑफिस में एक डाकिये की नौकरी कर ली और वहाँ से छुट्टी लेके अब अपनी माँ के दर्शन करने के लिए आया हूँ।
1: लेकिन तुझे इस पोशाक में देख कर मुझे बड़ा डर लगने लगता है।
2: डर लगने लगता है क्यों माँ?
1: कुछ ऐसी ही पोशाक में तेरे पिताजी को वो गांव छोड़ना पड़ा था, इसलिए अब तुझे उस जिंदगी के नजदीक जाके देख मेरा रोम रोम कांपता है।
2: माँ तुम बहुत ही भोली हो, मैं को असली डाकिया थोड़ी बन गया हूँ, ये तो एक स्वांग है, देखो तुझे तमाशा क्या क्या होता है।
0: सन 1965 में मोतीलाल ने एक फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया था। ये फिल्म थी छोटी छोटी बातें, जिसमें नादिरा उनकी नायिका थी।

0: कहता है।
1: ये फिल्म नाकाम रही थी और मोतीलाल को इससे गहरा सदमा पहुंचा था। इसी साल यानी सन 1965 में मोतीलाल का देहावसान हो गया था।

0: विविध भारती पर हर रोज दिन में एक बजे विविध भारती की गीत माला आपके साथ।
1: जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा।
0: इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी।
1: हम और तुम,
0: तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ।
2: हम साथ साथ है,
0: जुड़े रहे। एक बेटी की यादों में उसके पिता
3: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
3: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर।
4: FM बैंड 101.8 MHz पर हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 10 बजने को हैं अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और नाविकों को संघर्ष से जुड़े खतरों से सुरक्षा देने की अपील की है। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में समुद्री व्यापार के बढ़ते खतरों और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से मानवीय नुकसान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है जो वैश्विक समुद्री व्यापार के माध्यम से सभी देशों को जोड़ते हैं। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा मानवता को प्राथमिकता दी है, जो भारत के नेतृत्व वाली पहलों में दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि भारत की सोच सदियों से वसुधैव कुटुंबकम की रही है और इसलिए भारत दुनिया में प्राकृतिक आपदाओं के समय सबसे पहले मदद पहुंचाने वाला देश बना है। श्री मोदी ने श्रीलंका में चक्रवात, अफगानिस्तान में भूकंप, मोजाम्बिक में बाढ़ और जमैका में तूफान के समय भारत के सहयोग की चर्चा की। श्री मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी शांति और स्थिरता से आएगी, जिसके लिए बातचीत और कूटनीतिक प्रयास जरूरी हैं। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह बैठक इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक बड़ी वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए लगातार नई दिल्ली की ओर देख रहा है। वैश्विक मुद्दों पर चर्चाओं को नया आकार देने में भारत की बढ़ती भूमिका, उसके विस्तार लेते राजनयिक प्रभाव और विभिन्न मंचों पर विश्व नेताओं के साथ सक्रिय जुड़ाव को दर्शाती है। कल शिखर सम्मेलन के एक आउटरीच सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि आज की आपस में जुड़ी हुई दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए आपसी विश्वास कितना जरूरी है। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री यूरोपीय संघ परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष फॉन डेर लेन के साथ त्रिपक्षीय बैठक करेंगे। वे जर्मन चांसलर फेडरिक मर्स के साथ भी बैठक करेंगे। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान कनाडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। यमुना नदी को स्वच्छ बनाने के लिए किशाऊ बांध परियोजना पर 6

राज्यों में सहमति बन गई है। इनमें हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और राजस्थान शामिल हैं। ये सहमति कल गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित बैठक में बनी। सहमति के अनुसार परियोजना की 90% राशि केंद्र सरकार देगी, शेष 10% राशि 6 राज्य मिलकर वहन करेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों से घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 59 जिलों में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के उम्मीदवारों के लिए विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते के बाद हॉर्मुज जल डमरू मध्य इस सप्ताहांत तक खुल जाएगा। इससे ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इसराइल की सैन्य कार्रवाई के बाद दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आया था। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल में हिमालय से लगे क्षेत्रों और सिक्किम के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, मेघालय, बिहार, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैकाल के कुछ हिस्सों में दिन में तेज बारिश की संभावना है। आईसीसी महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से होगा। भारत ने अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। जी 10:05 हुए हैं और ये समय है लघु वार्ता का, जिसमें हमारा आज का विषय रहेगा योग एक फायदे अनेक।

श्रोताओं, वर्तमान समय में मनुष्य का जीवन जो है वो बहुत ही ज़्यादा व्यस्त और स्ट्रेसफुल हो गया है। इससे हम इनकार नहीं कर सकते। हमारी जो आधुनिक जीवन शैली है, अनियमित दिनचर्या है, असंतुलित जो हमारा खान पान है और जो हमारी फिजिकल इनएक्टिविटी है, ये हमारे जो मानसिक दबाव के कारण अनेक प्रकार की शारीरिक और मानसिक समस्याएँ पैदा करने के कारण है। ऐसे समय में योग एक ऐसा हमारे को अमूल्य उपहार की तरह कार्य करता है जो व्यक्ति को स्वस्थ, संतुलित और सुखी जीवन प्रदान करने में पूर्णतः सक्षम है। योग एक केवल व्यायाम नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने की एक संपूर्ण पद्धति है और ये सब वही शरीर, वही आत्मा और वही मन जान सकता है जो इसको करता है और जिसको इसका ज्ञान है कि योग वास्तव में है क्या। ये शरीर, मन, आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, मनुष्य को संपूर्ण स्वास्थ्य की ओर ले जाता है। और ये योग की जो परिभाषा है, योग का जो ये जानकारी है, ये आपको कोई विशेषज्ञ ही बता सकता है। अगर आप अपने मन से योग के प्रति कोई जानकारी मन में पाले हुए हैं कि योग तो हम घर बैठे भी कर सकते हैं, घर के काम करते हुए भी हम योग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो ये पूर्णतः गलत है।

भारतीय संस्कृति की प्राचीन विरासत योग आज पूरे विश्व में लोकप्रिय है हो चुका है। हम प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। विश्व के अनेक देशों ने योग की उपयोगिता को स्वीकार किया है और करोड़ों लोग अपने जीवन में इसे अपनाकर स्वस्थ जीवन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसीलिए तो कहा गया है कि योग एक फायदे अनेक। आइए जानते हैं अब योग शब्द का अर्थ क्या है। योग शब्द संस्कृत की युज धातु से बना है और जिसका अर्थ है जोड़ना या मिलाना। योग का तात्पर्य शरीर मन आत्मा को एक सूत्र में पिरोना है। योग मनुष्य को स्वयं से प्रकृति से और परमात्मा से जोड़ने का माध्यम है। महर्षि पतंजलि ने योग को परिभाषित करते हुए कहा है योगश्चित्त निवृत्ति निरोधा, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। दूसरे शब्दों में मन की चंचलता को नियंत्रित करके एकाग्रता और आत्म शांति प्राप्त करना ही योग है। श्रोताओं, योग की उत्पत्ति भारत में हजारों वर्ष पूर्व हुई। प्राचीन ऋषि मुनियों ने तप ध्यान और साधना के माध्यम से योग की खोज की। वे शरीर और मन को स्वस्थ रखने और आत्मज्ञान प्राप्त करने का सबसे अच्छा साधन मानते थे। वेदों, उपनिषदों, भगवद गीता और विभिन्न धार्मिक ग्रंथों ने योग का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। महर्षि पतंजलि ने योग को व्यवस्थित रूप प्रदान किया और योग सूत्र की रचना की। उन्होंने योग के 8 अंगों का वर्णन किया जिन्हें हम अष्टांग योग के रूप में जानते हैं। अष्टांग योग में 8 अंग हैं, जैसा कि नाम से ही विदित है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये प्रमुख इसके अंग हैं, 8 अंग। योग के अनेक फायदे हैं, चाहे वो शारीरिक स्तर पर हों या मानसिक। योग हमारे हर शरीर के और मन के पहलू से जुड़ा है। योग के माध्यम से शरीर में ऊर्जा बढ़ती है, रक्त संचार बहुत बेहतर होता है, पाचन शक्ति मजबूत होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, शरीर सक्रिय और स्फूर्तिवान बनता है। आज ज्यादातर लोग तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। योग मन को शांत करता है और मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। चिंता और घबराहट जो है वो दूर होती है जब हम योग के आसनों को सांस की गति के साथ, लय के साथ जब करते हैं। मन प्रसन्न रहता है, सकारात्मक सोच विकसित होती है और आत्मविश्वास बढ़ता है जो नियमित योग करता है। योग और ध्यान मन को स्थिर करके मानसिक शांति प्रदान करते हैं, कहने का तात्पर्य यही है। योग करने से एकाग्रता भी बढ़ती है। योग विद्यार्थियों के लिए अत्यंत लाभकारी है क्योंकि ये उनकी पढ़ाई करने में और उनको एकाग्रता बनाए रखने में मदद करता है, क्योंकि पढ़ाई करने में एकाग्रता की बहुत आवश्यकता होती है। आजकल हमारे पास जो है डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, मोबाइल जिसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मोबाइल अगर हाथ में हो तो हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं, बस एक बार इसमें घुस जाएं तो फिर निकलने का कोई रास्ता सूझता नहीं है। ऐसे में योग हमारी बहुत मदद करता है। अगर कोई विद्यार्थी रोज़ाना योग करता है तो अपने मन को नियंत्रित कर सकता है और अपनी पढ़ाई पर एकाग्रता जो है वो ला सकता है, और ये स्मरण शक्ति भी बढ़ाता है। निर्णय लेने की क्षमता हमें विकसित होती है। निर्णय हम तभी नहीं ले पाते जब हमारा मन जो है वो स्ट्रेसफुल होता है, हमें नहीं पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। लेकिन जब हमारा मन शांत होता है तो हमारे सामने जो भी सिचुएशंस आती हैं हम उनकी गहराई तक सोच पाते हैं कि क्या करने से हमें लाभ होगा और क्या नहीं करने से हमें हानि होगी। तो मानसिक क्षमता की जो मजबूती होती है वो बढ़ती है योग करने से। और तो और योग जो है वो बीमारियों से बचाव में सहायक है। ये शरीर की प्राकृतिक उपचार क्षमता को बढ़ाता है। देखिए, सेल्फ हीलिंग पावर हमारी बॉडी में ही मौजूद होती है और उसको ट्रिगर करना, उसको जगाना जो है वो योग का काम है। तो योग से हम बहुत सारी समस्याओं में लाभ पा सकते हैं जिनके नाम हैं, जैसे उक्त रक्तचाप, उच्च रक्तचाप है जिसको हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, मधुमेह है, मोटापा, हृदय रोग, अनिद्रा, पीठ दर्द, गर्दन में दर्द, गठिया और तनाव तथा अवसाद। ये हमारे जो लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं, हमारे जो गलत हमारे लाइफस्टाइल अपनाई है उससे ये इन रोगों को जो है हम
सुनते हैं और ये बहुत आम हो चुके हैं। हर तीसरे व्यक्ति में जो है वो बीपी की समस्या है, शुगर की समस्या है ना। तो इन सारी समस्याओं से निजात हम पा सकते हैं एक नियमित हमारा जो योगाभ्यास हो और एक बढ़िया हमारी जीवन शैली हो, खान पान में अगर हम सुधार रखें, अच्छा खाएं, तो हम बीमारियों से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। वज़न नियंत्रित करने में भी योग जो है वो सहायक होता है। अतिरिक्त जो हमारी कैलोरीज होती हैं उनको कम करता है, शरीर की चर्बी घटती है योग करने से, पाचन बेहतर होता है और शरीर का संतुलन बना रहता है। तो इसमें हमें जानकारी होनी चाहिए कि कौन कौन से आसन हमें किस किस समस्या से निजात दिलाते हैं। जैसे सूर्य नमस्कार है, भुजंगासन है, नौकासन है या त्रिकोण आसन है, ये वज़न कम करने में सहायक माने जाते हैं। और देखिए, हृदय को भी स्वस्थ रखता है हमारा ये योग। योग की जो योग है हृदय की कार्यक्षमता में सुधार लाता है, रक्तचाप नियंत्रित रहता है, कोलेस्ट्रॉल जो है हमारा संतुलित रहता है, रक्त संचाप सुधरता है और हृदय की जो रोगों का खतरा है वो कम होता है योग अभ्यास करने वाले को। श्वसन तंत्र भी जो है वो मजबूत होता है नियमित योग करने से, जिसमें प्राणायाम के विभिन्न प्रकार हैं, विभिन्न क्रियाएं हैं, अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, भ्रामरी प्राणायाम विशेष रूप से लाभकारी होता है। तो ये किसी इंस्ट्रक्टर के, कोई अच्छा जानकार है उसके अंडर आप कर सकते हैं। योग प्रतिरोधक क्षमता जो है रोग की जो है वो इम्यून सिस्टम हमारा सुधरता है इस योग करने से, और नींद में सुधार होता है, नींद की गुणवत्ता बेहतर बनती है, मानसिक बेचैनी कम होती है। और जहाँ तक बात है महिलाओं की, तो महिलाओं के लिए भी योग जो है वो बहुत फ़ायदा पहुँचाता है। उनके हार्मोन्स संतुलित रहते हैं, मासिक धर्म संबंधी समस्याएं कम रहती हैं, गर्भावस्था में शरीर को मजबूत बनाता है, प्रसव के बाद रिकवरी में सहायता करता है और मानसिक तनाव तो कम करता ही है। और बच्चों के लिए भी योग के बहुत लाभ हैं, अनुशासन विकसित होता है, बच्चे बात नहीं मानते तो अगर योग करें तो उनका मन भी शांत रहेगा और वो हमारी बात ध्यान से सुनेंगे। ध्यान केंद्रित करने में योग सहायता करता है और वृद्ध लोगों में भी योग जो है वो बहुत चमत्कार उत्पन्न करता है, जोड़ों को लचीला बनाता है, संतुलन बनाए रखता है और जीवन की गुणवत्ता में जो है वो सुधार करता है। योग से हमारा आध्यात्मिक विकास भी होता है, सकारात्मक दृष्टि जो है वो विकसित होती है, आध्यात्मिक चेतना का विकास होता है और दैनिक जीवन में भी हम योग से बहुत कुछ कर सकते हैं, आत्मनियंत्रण विकसित होता है। तो कहने का भावार्थ यही है कि योग भारत की अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर है और ये केवल व्यायाम नहीं बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीने का एक पूरा विज्ञान है। तो इन सब पहलुओं पर जाकर हमने देखा कि हर हमारे जीवन के पहलू, चाहे वो शारीरिक है, मानसिक है, हर पहलू में, और चाहे वो वृद्ध है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो महिला है, चाहे वो पुरुष है, हर किसी को जो है वो योग जो है वो लाभ पहुंचाता है। तो योग एक है पर इसके फ़ायदे अनेक, इससे यही निष्कर्ष निकलता है। और आज का ये हमारा लघु वार्ता का विषय था। उम्मीद है आपको योग के बारे में काफ़ी जानकारी मिली होगी और आप इसे अपने जीवन में ज़रूर उतारेंगे। 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाते हैं। तो आज का ये लघु वार्ता कार्यक्रम बस यहीं तक। आप जुड़े हैं AIR FM हमीरपुर के साथ, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय 10:16 हुए हैं और ये समय है लाइव फोन इन कार्यक्रम गल तुसानी का।

0: जी बिल्कुल, मिलीजुली रही करने असा रहेंगे ता देश समाज जो असा बचाई सकदे कने इक्की दूजे दे कम्मा भी आई सकदे। लाइव फोन इन गल तुसां दी कार्यक्रम इस वक्त तुसां सुना दे आकाशवाणी हमीरपुर ते। अज जिस विषय पर असा गल करा दे तुसां ने ओ है कि मिले यूं तो करें क्यों, कि कोई भी चीज़ अगर जो अजकल जैसे बड़ी आसानियां कन्नै मिली जा दी तां अहे उस दी कीमत नहीं पछाण दे कन्नै असा तुसी जो इ'यां समझदे। तां इक अगले श्रोता असा ने जुड़ना चाहते इन्हां ने गल कर दे। जी
1: हेलो
0: जी नमस्कार।
1: हेलो, नमस्कार।
0: हेलो, हाँ जी नमस्कार जी। जी कौन गला दे?
1: हम मुकेश जी बोल रहे हैं।
0: हाँ जी, अपना नाम जोर से बताएं।
1: छबिल।
0: छबिल।
1: हाँ जी,
0: छबिल जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम च। केड़ी जगह ते गल करे तुसा?
1: मतेड़
0: मतेड़। मतेड़ केड़ी जगह होया?
1: ए पंडोल वैजनाथ।
0: अच्छा, पंडोल बैजनाथ ते। बड़े दूरा ते फोन आ दे। अच्छा संजो है ना। अच्छा
1: जी
0: छबिल जी, क्या करते तुसा?
1: जी,
0: क्या करते तुसा?
1: स्टूडेंट है,
0: स्टूडेंट। केड़ी क्लास च पढ़ते?
1: 8th।
0: 8th बिच पढ़ते। अच्छा, तो तुसे आज का विषय पर क्या बोलना चाहते? हाँ जी छबिल जी बोलो।
2: हेलो,
0: हाँ जी, हाँ जी बोलिए।
2: नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी।
2: हाँ जी, अजकल जी ना लोगों जो ना पैसे का बड़ा गुमान हुई है ना।
0: जी मिले यूं तो करें क्यों, कोई भी चीज़ असा जो बड़ी जल्दी जी से मिली जाती थी। हूँ छबिल, छबिल कौन आना तुसा क्या लगते?
2: जी
0: छबिल क्या लगते तुसा?
2: बोलो।
0: छबिल, छबिल ने जब भी गल की ना,
2: हाँ जी, क्या
0: हाँ क्या लगते तुसा?
2: बोलो। मेरे जी पोत्रो लगते।
0: हाँ, तो तुसा जियां अजकल खेती बाड़ी करा दे, खेती बाड़ी का काम शुरू हो गया, तो तुसा मदद कर दे तुसा पोतरू हो गए।
2: हाँ जी,
0: अच्छा बहुत अच्छी गल है ना, कि नहीं तो अजकल के बच्चे जे ऐसे खेती बाड़ी जो बड़ा बुरा समझते कि अहाँ कजो अपने हाथ गंदे करने है ना,
2: हाँ जी,
0: कने कजो मतलब ता तुसा किया इन्हों जो समझाते कि असा दी अपनी जड़ी जमीना कने जुड़ना कितना जरूरी आ जी। तुसा जो जी दिखा बच्चों की गल असा करते ना, कि बच्चों जो पहले के जमाने क्या होंगे कि ये भी गल है कि पैसा अजकल ज़्यादा हो गया पुराने जमाने के तुलना बिच। तो अज के जमाने बिच जे असें अपने बच्चों जो हर चीज़ देना चाहते हैं ना, सह मंगते नहीं इसते पहले तिना जो दे तिना हर तरह का खिलौना जे असें उपलब्ध कराते हर तरह का ना, पर सह 2 मिनट च तोड़ी मरोड़ी करने जे असें फिर और डिमांड करना लगी पौंदे। मतलब तिना जो कोई वैल्यू नहीं कि इस ये भी पैसे करने कोई चीज़ आई। पहले के जमाने च दिखा असा होंदे हे तां अहां जो कपड़े जे असें बड़े कोई नवा सूट मिली जांदा तां बड़े खुश हो जांदे हे। अज बच्चे जो इतने ज़्यादा रंग बिरंगे तरह तरह के ब्रांडेड कपड़े हैं फिर भी से खुश नहीं हैं, फिर भी तिना लगता कि नहीं मेरे वाल घट्ट आ उस बल ज्यादा है ना। तो कोई भी चीज़ जी असा जो बड़ी आसानी करने मिली जाती है, बच्चे जो है हर एक चीज़ जी है हत्था पर दिया दे पर फिर भी अहाँ बच्चे खुश नहीं है। लेकिन पहले के जमाने दिखा बड़ी घट्ट संसाधन होंगे थे फिर भी बच्चे खुश थे, कौलियाँ चमचे कन्ने गलासा कन्ने खेली कन्ने खुश रहते थे है ना। तो बड़ा बदलाव आया इस समय बच्चे कन्ने, यही मैं तुमने जानना चाहती हाँ जी कि असा जो बड़ी जी जल्दी जी असा ईजीली अवेलेबल हो आई चीज़ें तो यह बड़ी तिने वैल्यू जी इसे यह नहीं करी पा दे। कहीं नियम भी है कि कोई चीज़ असा जो अगर बड़ी आसानी ने मिली जाती तो यह कदर घट ही करते हैं ना। तो अस अपने भावी पीढ़ी जो जे असें तिन्हों मेहनत का श्रम का राग जरूर सुनाइए तिन्हों जो दसीए कि मेहनत करना कितना जरूरी है, नहीं तो आने वाली नस्ल जो जे असें बड़ा मुश्किल हो जानी है ना। पर फिलहाल असं जो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है तो जो एक गीत सुनाना सा वह सुन दे।

0: जी मारकंडारे मेले जो भी दिखो, देवी देवतियों की धरती जड़ा सदा हिंदुस्तान है और सदा हिमाचल है, और देवी देवता जे ऐसे ऐसे इथी खूब मनाते हैं मारकंडारे मेले। लोग ही तुसा सुनिया कने अज का जड़ा सदा लाइफ फोन इन कार्यक्रम गल तुसा जड़ा विषय है मिले यूं तो करें क्यों। कोई भी चीज़ असो बड़ी जल्दी मिली आती तो अह इसकी कदर नहीं करते। तुहदा इस विषय पर क्या विचार है, आओ सुन दे जी। आकाशवाणी हमीरपुर,
1: नमस्कार जी। राजेंद्र सिंह सिपहिया,
0: राजेंद्र सिंह

0: लाइव फोन इन कार्यक्रम गल तुसां दी इस वक्त तुसां सुना दे आकाशवाणी हमीरपुर ते रुकदे इक ब्रेक वास्ते।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: अरे राहुल, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आते।
5: ताऊ जी, मैं दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ।
4: अच्छा, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि पैसों की तंगी के कारण 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दोगे, फिर पढ़ाई कैसे जारी रखी?
5: ताऊ जी, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना का कमाल है। मुझे मात्र 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपए का शिक्षा ऋण मिला है। अब आर्थिक तंगी मेरे सपनों की राह में रुकावट नहीं बन सकती।
4: वाह बेटा, ये तो प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है।
5: जी ताऊ जी, इस योजना के तहत विद्यार्थी देश और विदेश में प्रोफेशनल तथा तकनीकी शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
6: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना वंचित वर्गों के बच्चों के उच्च शिक्षा के सपनों को कर रही है साकार। योजना के तहत 12 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के 28 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थी ITI, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, लॉ, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए शिक्षा विभाग की वेबसाइट education.hp.gov.in पर लॉग ऑन करें। डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना, सपनों को मिले नई उड़ान, शिक्षा बने सफलता की पहचान, शिक्षा के पथ पर अग्रसर, विकास की नई बुलंदियों को छू रहा हिमाचल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: जी, लाइव फोन इन गलत संधि कार्यक्रम जी एक बार फिर तो संधा स्वागत है। 2132 संधा फोन नंबर है। इस विषय, इस फोन नंबर पर तुसे मिले यूं तो करें क्यों, इस विषय पर अपने विचार साझा कर सकते। आओ सुन दे अगले श्रोता क्या बोल दे। आकाशवाणी हमीरपुर।
7: हाँ जी, नमस्कार जी।
0: जी नमस्कार जी।
7: हाँ जी, मैं सुखजीत सिंह बोल रहा जी।
0: हाँ जी, क्या नाम दसे तुसे?
7: सुखजीत सिंह दसा जी, मैं नुवाल है, सुखजीत सिंह नुवाल जी।
0: जी, तुसां दी आवाज साफ नहीं आई करदी, बोला ही तो है तुहें, पर
7: सुखजीत सिंह
0: नुवाल। सुरजीत, सुरजीत।
7: हाँ जी, हाँ जी।
0: केड़ी जगह ते? अच्छा जी, चलिए सुरजीत जी, दस क्या बोलना चाहते आज के विषय पर?
7: ये है सर, जो राजेंद्र भाई ने जो बोला ना, वो तो ठीक बोला है। बच्चे तो कह रहे थे मानते हैं, सब खरीद लूंगा, बात चली है, काम तो करते ही कोई नहीं, तो कुछ तो यही चले।
0: हाँ, मतलब कोई भी चीज, टॉपिक ये है कि अहां जो कोई चीज अगर रामा ने मिली आ रही ना, ता अहे तिस जो कदर नहीं कर दे तिस दी, फिर यह काम नहीं करना चाहते, तो तुहें मतलब क्या समझ दे कि वाकई ऐसा है?
7: कदर क्या समझ नहीं, बच्चे गाँव जो है चीजा बेकदरी हो दी, मोबाइल लै दे, ऑनलाइन मोबाइल लै दे, बुढ़े दे दादू का पैसे ले लै दे, मंगवा दी चीजा, कने फिर जाके फटिए दे ता कोने पर, दो दिन बिना चाह करना, कने उसके बाद वो दे दी चीजा हो गई, हो गई, हो गई।
0: मतलब
7: जी क्या था बच्चा, उसमें हमारी 76 साल उम्र हुई, एक तो कपड़ा नहीं मिलता है,
0: जी जी,
7: जूते नहीं मिलने, जूते नहीं मिलने, तो हूं तो एक एक बच्चों के पास 3-3 जोड़े हैं।
0: जी जी जी, बिल्कुल।
7: तो उसमें बोलता है ये खराब हो गया था, दूसरा ले लेना, बोलना ये खराब हो गया था, अभी ये ठीक नहीं है। तो अभी ऐसा टाइम तो आएगा इनको भी कमाने का, लेकिन अभी जमीन में अभी हमने हल्दी लगाई है, गया था खेत में, जुताई पुताई करके आ गया, अभी ब्रेकफास्ट किया मैंने भी आके।
0: अच्छा चलिए, तो बोलने दम
7: अगले बच्चों का नहीं है इसमें कोई ख्याल ध्यान।
0: चलिए फिर भी अगर बोल देना समस्या है, तो यहाँ समाधान भी है ना,
7: राशन
0: भी अगर सस्ता हाँ मिला था, खेता च को कमाइए, है ना, ये भी गल है।
7: जमीन में तो करना नहीं चाह रहे, जमीन में तो ऐसे जाने बोलते अभी घास चढ़ा हुआ, जहर चढ़ा हुआ, उसको कुछ नहीं करना। तो अभी हमारे को देख देख कर दुख होता, उसी को देख के पहले तो हम करते थे, बहुत नाच गाना करते थे, खेतों में जाते थे, हमारा पेड़ियां भरी जाती थी, चार चार ड्रम भरे जाते थे, थल्ली
0: योगदान जरूर दे सकते अपने अपने विचार रखी सकते मिले यू तो करें कि ऐसा विषय है कने अगे बदे एक कमर्शियल ब्रेक लैना उसके बाद गीत सुनाना लौटते है इस ब्रेक के बाद
8: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना
8: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स
8: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण
3: एफिलेटेड टू एचपी यूनिवर्सिटी
8: यूजीसी से मान्यता प्राप्त हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस

0: जी थोड़ा सा टाइम बचिया तो इस विच दिखते अगले श्रोता क्या बोल दे। जी आकाशवाणी हमीरपुर,
1: नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्ते जी। हाँ जी कौन बोल रहे?
1: मैडम नागेंद्र सिंह नेगी बोला करता, गोपालपुर सरकार से जी।
0: अच्छा नमस्कार जी। ओ ठीक ठाक हो
1: ठीक महाराज, नमस्कार।
0: जी? नमस्कार जी। बोला आज के विषय पर क्या बोलना चाहते तुसे?
1: मैडम जी बहुत अच्छा विषय है और ये बिल्कुल मतलब क्या बोलते हैं, जो कड़वा सच है कि कदर पर प्रेरणादायक विचार है तुम्हारा दाजे, और मुफ्त बिच मिली चीजा री कोई कदर नहीं होती जी।
0: हाँ जी बिल्कुल
1: क्योंकि कदर कदर हमेशा ता ही होती जे जिस चीजा जो पाने खातर कोई आदमी
0: संघर्ष
1: मेहनत
0: करो, मेहनत
1: कितरी,
0: करो जी।
1: संघर्ष की रहा, समय जिस पर बर्बाद की रहा, तीसरी कीमत चुकाना पया कर दी,
0: जी
1: ता तीस जी अहमियत तो दिलाते होंगी बंदे जी। तो
0: हाँ।
1: ये चाहे बच्चे की गल ली चाहे दुनियादारी की गल ली जी।
0: चलो बिल्कुल, समस्या तो है ना, लेकिन हुण इसका हल क्या है? तो सानी नज़र बिच इसका क्या हल हो सकता? अजकल हर चीज़ असंजो बड़ी जल्दी उपलब्ध हो जाती, तो उसकी नेचुरली कदर भी घटनी, तो कियां यह चीज़ों बैलेंस करी सकते हैं ये?
1: मैडम जी इसका सबसे बढ़िया तरीका था मैं समझता भी अपनी डिस्पेंसरी जड़ी ना जी निर्भरता इसा जो हटाई कने जे ऐसे बच्चियां जो ये जरूर सिखाया जाए कि इस बीच तुम्हारा आत्म सम्मान किया और
0: जी
1: इस बीच तुम जो किया अर्ज करनी चाहिए, किया इस जो पैदा करना चाहिए सब चीजा जो,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि
0: सही बोल रहे।
1: विकल्प जे ऐसे थोड़ा

0: ने तो एग्जाम्पल दिता और दिखा मानव मूल्य कन्नै तुसें जोड़िया ना कि मानव मूल्य जेह्ड़े असांदा प्रेम करुणा है, इक दूजे ने सहयोग करना है ना, अगर ये जिंदा रहेंगे। कन्नै आत्मनिर्भरता की गल की, ये बहुत सही है कि सेल्फ रिस्पेक्ट अगर अह कुसी दे विच जगाई सकिए ना, तो सह
1: जी
0: अपू करी कन्नै जे असें तिसदा मतलब अपी करी कन्नै तिसदा अर्जन करना करना तीसी है ना। तो बहुत अच्छा
1: बिल्कुल
0: तुसें
1: बिल्कुल
0: पॉइंट
1: मैडम जी
0: बोलिया।
1: जी जी
0: चलो
1: ऐसा
0: हुण
1: नहीं होंदा
0: समा
1: है कि
0: वास्ते
1: करो।
0: ना बड़ा घट बचिया, क्योंकि समय जो है कार्यक्रम तो हुआ
1: जी
0: था,
1: जी
0: असा बड़ा
1: ठीक
0: अच्छा लगे
1: ठीक
0: तुसा करने गाल करने, तुसा बड़ा अच्छा पॉइंट जी ऐसे उजागर कितिया। नेकी जी धन्यवाद तुसा कार्यक्रम ने जुड़ने ताने।
1: धन्यवाद नमस्कार जी
0: नमस्कार जी। जी श्रोताओं तो हूँ दिखा बड़ी इंपॉर्टेंट गलबात जी अज इस विषय के जरिए अपने श्रोता कन्ने जी इसे डिस्कस की, कन्ने बड़ा अच्छा पॉइंट जी असर निकली नहीं आया। तो हूँ अगे अस ज़्यादा गलबात नहीं कर सकते क्योंकि टाइम के बाहर तो कोई भी नहीं जाए सकता, ना से जाए सकते है ना, और रेडियो जो असर टाइम के कारण ही पहचाना जाता। तो हूँ टाइम असा बोला था कि हूँ इस कार्यक्रम से रुखसत लीती जाए, कन्ने तुसा जो बोलिया जाए नमस्कार राम राम।

हम आकाशवाणी हमीरपुर से बोल रहे हैं। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर 11 बजने को हैं प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। G7 शिखर सम्मेलन के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक पर सबकी नजरें टिकी हैं। भारत G7 शिखर सम्मेलन में सहयोगी देश के तौर पर शामिल है। आज की मुलाकात में दोनों पक्षों के बीच कई क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत करने और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक चर्चा की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी आज G7 के एक अन्य सत्र में भी हिस्सा लेंगे। इसका विषय है सबके लाभ के लिए संतुलित समावेशी और टिकाऊ आर्थिक विकास की फिर से शुरुआत। वे यांत्रिक मेधा को सुरक्षित, तेजी से और प्रभावी ढंग से लागू करने पर आयोजित वर्किंग लंच में भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड की सीमा पर टोंस नदी पर 15,000 करोड़ रुपए की प्रस्तावित 422 मेगावाट क्षमता की किशाऊ बांध परियोजना के निर्माण से हिमाचल को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना की वित्तीय लागत वहन करने को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना के जल घटक के रूप में लाभान्वित होने वाले राज्य दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा हिमाचल के हिस्से के विद्युत घटक के रूप में होने वाली करीब 2,000 करोड़ रुपए की लागत को वहन करेंगे। हिमाचल प्रदेश के विद्युत घटक के हिस्से की लागत को साझा करने के एवज में हिमाचल प्रदेश के लिए आवंटित पानी को दिल्ली और राजस्थान को देने पर सहमति बनी है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि परियोजना के पूर्ण होने पर राज्य को विद्युत घटक के रूप में प्रतिवर्ष 100 करोड़ यूनिट बिजली की हिस्सेदारी मिलेगी, जिसकी अनुमानित लागत करीब 600 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष होगी। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के वित्तीय संसाधनों में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू आज से 2 दिवसीय कांगड़ा जिले के धर्मशाला दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री इस दौरान कई विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री आज सुबह नई दिल्ली से हवाई मार्ग से गग्गल पहुंचेंगे। इसके बाद वे नगरोटा बगवां के पठियार स्थित धर्मगिरी में आयोजित महाराणा प्रताप जयंती समारोह में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जन शिकायतें भी सुनेंगे और लोगों से सीधा संवाद करेंगे। वहीं अपने प्रवास के दूसरे दिन मुख्यमंत्री कल दाढ़ी स्थित मेला मैदान में कांगड़ा जिले की नव निर्वाचित ग्राम पंचायतों के प्रधानों और प्रधानों को शपथ दिलाएंगे। इस कार्यक्रम में जिले भर से पंचायत प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आज वीर योद्धा महाराणा प्रताप की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बिरला ने कहा कि महाराणा प्रताप का जीवन अटूट आत्मसम्मान, स्वाभिमान, स्वतंत्रता और राष्ट्रभक्ति की एक अमर गाथा है। उन्होंने कहा कि बेहद मुश्किल हालात में भी महाराणा प्रताप ने कभी अपने सिद्धांतों, संस्कृति और मातृभूमि के सम्मान से समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा कि उनकी वीरता केवल मेवाड़ या राजस्थान की ही धरोहर नहीं बल्कि

0: पूरे भारतवर्ष के लिए प्रेरणा का स्रोत है। बिरला ने सभी से आग्रह किया कि वे अपने जीवन में महाराणा प्रताप के देशभक्ति, कर्तव्य और आत्मसम्मान के आदर्शों को अपनाने का संकल्प लें। कुल्लू जिला में व्यास व पार्वती नदी के संगम स्थल जिया में वैज्ञानिक ड्रेजिंग कार्य का शुरू कर दिया गया है। इसका उद्देश्य केवल नदी तल से वैज्ञानिक तरीके से सामग्री निकालना ही नहीं बल्कि नदी प्रशिक्षण, तलछट प्रबंधन, संवेदनशील आधारभूत संरचनाओं पर दबाव कम करना और व्यास नदी के संवेदनशील क्षेत्रों में बाढ़ जोखिम को कम करना भी है। वर्ष 2026 के मानसून से पूर्व इन स्थानों से लगभग 1.25 लाख मीट्रिक टन नदी तल सामग्री निकाले जाने का लक्ष्य रखा गया है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे कुल्लू जिला संवाददाता की ये रिपोर्ट।
1: तल से वैज्ञानिक तरीके से सामग्री निकालना ही नहीं बल्कि नदी प्रशिक्षण, तलछट प्रबंधन, संवेदनशील आधारभूत संरचनाओं पर दबाव कम करना तथा ब्यास नदी तंत्र के संवेदनशील क्षेत्रों में बाढ़ जोखिम को कम करना भी है। जिया संगम स्थल को हिमाचल प्रदेश में ड्रेजिंग एवं नदी प्रबंधन के लिए विकसित की जा रही व्यापक कुल 9 साइटों का चयन किया गया है। वर्ष 2026 के मानसून से पूर्व इन स्थानों से लगभग 1.25 लाख मीट्रिक टन नदी तल सामग्री निकाले जाने का लक्ष्य रखा गया है। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03 बजे। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 MHz पर। श्रोताओं, 11:05 हो चुके हैं। अब आप हमारे केंद्र से सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा।

0: साधना सरगम और साथियों की आवाज़ में आप सुन रहे थे ग्रेटेस्ट भजन ग्रेटेस्ट सिंगर्स। इस एल्बम से ही मीराबाई का लिखा ये भजन, जिसमें संगीत केदार पंडित का।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैला

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ में आप सुन रहे थे गुलदस्ता एल्बम से ये गज़ल, जिसे लिखा अमी खनफी ने और इसे संगीत से सजाया अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन ने। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

तलत अज़ीज़ की आवाज़ में आप सुन रहे थे गज़ल जिसे लिखा कतील शिफाई ने। तलत अज़ीज़ के का संगीत गिफ्ट्स ऑफ सॉन्ग्स एंड गज़ल इस एल्बम से हमने आपको इसे सुनाया। आपको ये बता दें कि रोज़ाना शाम 7:45 पर विविध रंगों से सजती है इंद्रधनुष के रंग, जिसमें अलग अलग कार्यक्रम आपको रोज़ाना सुनाई पड़ते हैं। और आज आप सुन सकते हैं शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम राग अनुराग, तो सुनिएगा शाम 7:45 पर। और इस समय विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग, जिसमें कव्वाली गीत गज़ल और पॉप गीतों की होती है एक साथ बंदिश और आप इन्हें सुनते हैं। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

बरसात की रात फिल्म से ये कवाली आप सुन रहे थे। मन्ना डे, मोहम्मद रफ़ी, एसटी बतीश, सुधा मल्होत्रा, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ आप सुन रहे थे। माफ़ कीजिएगा, सुधा मल्होत्रा और साथियों की आवाज़ आप सुन रहे थे इस कवाली में। साहिल ध्यानवी ने इसे लिखा, रोशन का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

मैं चंदन हूँ बहू हूँ। इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो, इशारों को अगर समझो।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में आप सुन रहे थे धर्मा फिल्म से गीत, वर्मा मलिक का की बोल और सोनी कोमी का संगीत। आपको बता दें कि शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत आज के मेहमान कार्यक्रम में आप सुन सकते हैं अभिनेता विजय राज से कमल शर्मा की बातचीत। प्रस्तुति अनुश्री पाठक की है और विविध भारती पर अगर आप रोज़ाना रात 10 बजे छाया गीत सुनते ही हैं, लेकिन किसी दिन अगर चूक जाएं तो शाम 5 बजे आप सुन सकते हैं पिछले दिन का छाया गीत जो पुनः प्रसारित होता है। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

जगजीत सिंह की आवाज में सरफरोश फिल्म से ये सुन रहे थे कलाम आप। निदा फाजलीक ने इसे लिखा, जतिन ललित का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

उस्ताद सुजात खान की आवाज़ में सुनिए उन्हीं के संगीतबद्ध किया ये गीत, जिसे लिखा है कमलेश सोनावाला ने और इसे हमने लिया है हवा के झोंकों में एल्बम से।

श्रोताओ, अभी तक आप हमारे केंद्र से सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 12 बज चुके हैं और आज है बुधवार और आज के दिन आप सुनते हैं कार्यक्रम महिला जगत। तो लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम महिला जगत।

महिला जगत कार्यक्रम सुनने आलियां हरी सारी सखियां रा स्वागत आज के इस कार्यक्रम च। कने आज कार्यक्रम तो सुनना मेरे सौगी यानी सुकृति सौगी। तभी दिखा जून रा महीना कने सिखर धुप्पा जिहा सह भी बिल्कुल पे 12 बजी गिरे तो हरी सारी महिला जी सारी सखियां जी से घर बैठी रही होनी। कने एड़े धुप्पे पर जे असें कोई काम करने का मन नहीं करता। कने यही तो थोड़ा टाइम हुआ भई अहरिया सखियां जो आ जे आ सह थोड़ा जहा आराम मिला है ना। सह अपने बारे च जे कुछ ना कुछ या फिर अपनी कोई तिनारी से जे रुचि हुई सह आला काम करी सकें या फिर कोई तिनार आराम करने रा टाइम हुआ है ना। तो यही एक समय हुआ पिताली जी अहरी सारी सखियां जी हुई सह अपने घर च हुई कने ये कार्यक्रम भी सुनी करती हुई है ना। तो अज जे इस कार्यक्रम च अह तुहां जो जानकारी देनी सह देनी थोड़ी जी जनगणना रे बारे च, क्योंकि देखा भी जनगणना शुरू होने लगी गिरी। कने सजे प्रगण के यानी कि एन्यूमरेटर है से तुम्हारे घर भी आना शुरू हो जाने। कने देखा भी ताली जे तिना आना तो तुहां बिल्कुल सटीक जानकारी जे आ से तिना जो देनी, कोई भी तथ्य या फिर कोई भी जानकारी अपने परिवार रे बारे च जे आ तिना ते नहीं छुपानी, क्योंकि एड़ा बिल्कुल नहीं आ भई तुहां जो जे आ सह जे तुहें अपने घर के बारे च दसी देंगे जे तुहां जो फैसिलिटी ज़्यादा ही तुहें बढ़िया घर बनाए रखने फैसिलिटी तिस च ज़्यादा ही तो भाई तुहां जो टैक्स पाना है ना। बड़ी सारी सोच ही बड़े सारे लोगों की भाई जे अहे एड़ा दसी दिया तो जो टैक्स पे आना या फिर तिना अहरा आधार मंगना या OTP आना या फिर कुछ होना तो तेरा कुछ नहीं आ है ना। तो जनगणना जरा जे आए फिलहाल जे असें हाउस लिस्टिंग लग रही होने यानी कि तुम्हारे मकाना की गणना लग रही होने हाली से जे जनगणना होनी सह फरवरी च जाने होनी यानी कि सजे असली से जे लोगों की गणना होनी सह फरवरी च जाने होनी। हाली तो ये अहरा दिखने लग रही भी अहरे लाइफ स्टाइल या लिविंग स्टैंडर्ड जे असें भारत जे असें तिस च जे कुती पूजा है ना तो सह दिखना हाली। तो जनगणना या आधिकारिक सर्वेक्षण रे खातर जो कोई भी प्रगणक तुम्हारे घर आवा तो तिना जो तुहां अपने परिवार रे सदस्यों की जे असें डेमोग्राफिक यानी जनसांख्यिकीय कने सामाजिक आर्थिक जानकारी जे ही से बिल्कुल सटीक देनी, तीसरे बारे च जे असें कोई भी तथ्य नहीं छुपाना है ना। कने व्यक्तिगत विवरण जे आ तीसरी गल करिए तो सारे सदस्यों के पूरे नौ है ना कने जन्मतिथि कने सजे मुखिया तीसरा नंबर जरूर जे असें मंगी सकें। मुखिया कोई भी हो सकता से जे जानकारी जे असें प्रगणक जो दे रहा चाहे से एक लेडी हो या फिर कोई बुजुर्ग हो या फिर कोई जेंट्स हो कोई भी दे करता हो तो सह अपना नौ जिया घर रे मुखिया रे तौर पर जिया सह लिखाई सकां। घर रा मुखिया कोई भी हो सकता है ना। कने जितने भी तुम्हारे कई बार जो बुजुर्ग ही करे होए तो भी बच्चे बाहर रेंदे होए या नौकरी करते होए तो तिन्हारी जानकारी भी तुहां तिना जो जरूर देनी। कने जे अपने सजे बाहर रेंदे होए होए तो जे सह अपनी जनगणना इत्थी कराना चाहे यानी हिमाचल च कराना चाहे तो तिन्हारी जानकारी भी तुहां देनी। कने फिर तिना जो दसना भी तुम्हारी जानकारी अहे देतरी कने

तुहां ताली जी तिथि जिसे रहें तिथि जनगणना ताली जी होनी तो तिथि तुहां जानकारी नहीं देनी क्योंकि इसते जे असे डेटा गलत हो जाना है ना। तो ये जरूर तुहां ध्यान रखनी गल कने सहजे बाहर रहें तिन्हारी जानकारी जरूर देनी तिन्हारी वैवाहिक स्थिति भी जरूर दसनी है ना कितनी तिन्हारी मतलब भी कितने से विवाह जो कितने वर्ष हो गए है ना। तो सारी जानकारी एड़ी तुहां देनी शिक्षा रे बारे च भी तुहां पूरी जानकारी देनी है ना भई शिक्षा कितनी ग्रहण कीती री अपनी भी कने अपने बच्चों की भी कने निवास स्थिति री बड़ी जे हुण लगी री हाउस लिस्टिंग होने तो इस निवास स्थिति री जानकारी जे असे पूरी देनी भी तुम्हारा घर जे असे केड़े मटीरियल ने बनी रहा कच्चा कि पक्का कने कितने कमरे है ना कने केड़े टॉयलेट्स तुहे यूज़ करें टॉयलेट जे असे अटैच्ड है या फिर तुहे बाहर जाएं है ना गऊ शेड जे यानी गऊशाला जी सह कितने तुहांगे या फिर कोई तुम्हारा एड़ा तुहे कोई शेड बनाए रहा तीसरी जानकारी भी तुहां पूरी देनी है ना। कने पीने रे पानी रे स्रोत री जानकारी भी देनी भी तुहे पीने रा पानी जे तुहां जो कुत ते प्राप्त हुआ नलके ते तुहें ओ करें फिल्टर लाए रहा कि क्या लाए रहा कने से जे तुम्हारे टॉयलेट से सेप्टिक टैंक से सह केड़े बनी रहे तीसरी भी पूरी जानकारी देनी। जे कोई कच्चा मकान आ है ना तो तीसरी जानकारी भी तुहां देनी कई बार हुआ भी कच्चे मकाना जो जे असे फर्श पाई तरह हुआ है ना तो फ्लोर री जानकारी भी पूरी होनी चाहिए कने दीवारां पर जे असे कई बार कच्ची ईटा होए कने प्लस्तर करी दें तो सह भी तुहां पूरा सटीक जानकारी जे आ सजे जनगणना करने आए रहे होए तिना जो देनी क्योंकि इसते ही जे असे डेटा बिल्कुल सही जाना कने सजे जानकारी देने लगी रहा हो सह अपना मोबाइल नंबर जे आखिर च तिना जो दे सकदा। कने गल करिए जे अहे स्वगणना री जानकारी री तो स्वगणना भी बड़े सारे लोकें करी ले रही होंगी सेल्फ एनुमरेशन है ना तो सह आई डी जे तुहे करी ले रही स्वगणना तो सह आई डी तुहां जेड़े तुहारे घर जनगणना करने आने तिना जो तुहां शेयर करनी कने तीसरी सह आई डी शेयर करने ते जे सो तुहारा डेटा जे तिना के अपने आप आई जाना। तो स्वगणना री जानकारी भी तुहां जो पूरी होनी चाहिए हूँ तो खैर 14 जून तक ही थी पर स्वगणना च एड़ा हा भी तुहे अपने घर री पूरी सटीक जानकारी जे सह आपू भरी सकते हे। कने दूजी गल ए भी कई बार एड़ा हुआ ना भी सोचें भी इं ही आए रे कने लोग जे सह तिना जो एंटरटेन नहीं करते कोई भी आए रहा हो है ना तो सोचें भी इं ही जानकारी लैने आए तो एड़ा बिल्कुल नहीं करना देखा भाई इतने धुप्पे च जे असें प्रगणक बेचारे जानकारी कट्ठा लगी रे करने है ना तो इन्हों तुहां जरूर सहायता करनी कने बिल्कुल एक सटीक डेटा जे आ कने सटीक जे असें तुहां जानकारी अपने परिवार रे बारे च देनी कने हेल्प भी करनी भी हाँ कई बार पता नहीं लगता भी हाँ किहड़े रस्ते च किहड़ा गाँव आ या किहड़ा घर आ है ना तो सह भी तुहां जानकारी देनी या अपने पड़ोसा च जे कोई नहीं रहिंदा हो है ना खाली घर हो कने से बाहर गेरे हो या तो कुती तो तिन्हारा फोन नंबर दे दिया या तिन्हारे बारे च जानकारी जे असे तुहे दे सके है तो ये तो की है गल जनगणना री कने हुण अहां कार्यक्रम च सुनना एक लोक गीत।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: आकाशवाणी राय हमीरपुर केंद्र ने दिनारे 12:14 इग्रिक ने इस वक्त तुह सुनी करते कार्यक्रम महिला जगत कने हूँ अहाँ गल करनी सजे अज अहे दिवस मनाए करदे तीसरे बारे च। जी हाँ जी 17 जून कने 17 जून जो अहे मनाए करदे मरुस्थलीकरण कने सूखे ते निपटने ताई विश्व दिवस। ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो प्रत्येक वर्ष 17 जून जो मनाया जाता कने इसरा उद्देश्य मरुस्थलीकरण कने सूखे री सजे उपस्थिति तीसरे बारे च जागरूकता बढ़ाना कने मरुस्थलीकरण रोकने कने सूखे ते उभरने रे तरीके पर जो असें प्रकाश डालना है ना। तो दिखा भाई प्रकृति की गल करिए अपने आस पास की गल करिए कई बार बरखा नहीं होंगी तो अहाँ जो भी बड़ा अजीब लगा भी बरखा का नहीं हो करती। हूँ दिखा पहले इतनी गर्मी नहीं होंगी ही है ना, पर अजकला जे असें कुछ सालों तो यह दिखी रहे भी गर्मी जे असें बड़ी गरीक ने सर्दियाँ थोड़ी सर्दियाँ भी ताली जे अपने जोर पर आई ताली बड़ी ज़्यादा सर्दी हुई है, पर सर्दियाँ रसपैन जे असें थोड़ा कटी गिरा कने गर्मी जी से इतनी बड़ी गिरी भाई हूँ बर्दाश्त ते बाहर रही। पहले लोग जे असें दिल्ली या इस रे हरियाणा रे लोग जे है या पंजाब रे लोग जे है से बोला है तो वहाँ पे ये थी आए ने थोड़ा ठंडक मिलाई राहत मिलाई, पर उन से एड़ा बोला है भाई ये थी भी तितनी ही गर्मी तितनी जे बाहर गर्मी, तो ये बिल्कुल सच गल ही भाई ये थी भी तितनी गर्मी होने लगी करी तितनी जे हमारे पड़ोसी राज्य तिना चे गर्मी हो तिथि जितनी गर्मी, तो इसरा कारण जे है ग्लोबल वार्मिंग ही है ना। तो ये ग्लोबल वार्मिंग जे आ इतना ही रुकी सक जे अ प्रकृति का संरक्षण करगे, यानी प्रकृतिक संसाधन जे आहारे पानी मिट्टी है ना जंगल जीव जंतु इनारी जे आ से अहे इन्हों संरक्षित करगे ताकि अहारा पर्यावरण जे आ से संतुलित रहो। हूँ दिखा भाई थोड़े दिन पहले दिखा होगा तुहे जंगलों च कितनी अग लगेगी है ना, कई बार जे असें लोग जाने बुझे ने भी लाए कने कई बार आपू भी आग जे जंगलों च लगी हैं तो कितनी वन संपदा जी से नष्ट हुई हैं, कितने पंछी पखेरू जो हैं तिनारे निवास स्थान जे से नष्ट हुई हैं, कितने कीड़े मकोड़े हुए तिनारा तो बेचारे रा से मतलब कि कोई अस्तित्व ही नहीं बचता से जे कीड़े मकोड़े हुए है ना। तो ये बिल्कुल जे से हमारी प्रकृति या खातर जी बिल्कुल ठीक गल नहीं है ना। अपने अहे जे दैनिक जीवन शैली जी इस अहे जे थोड़े थोड़े छोटे छोटे बदलाव करिए अहारे प्रकृतिक संसाधन जे तिनारा कने अहे जे समझदारी ने उपयोग करिए अहारी प्रकृति जे असे संरक्षित हो सकती कने अहे अपना योगदान प्रकृति संरक्षण च दे सकदे। तो इस सब ते पहले गल आई पेड़ लगाने री, तो दिखा भाई हूँ थोड़े टाइम बाद जे असें बरसाती रा मौसम शुरू हो जाना कने तुहां क्या करना भाई अपने आस पास जे अपने घर रे आस पास या फिर कोई तुहां जो एड़ी जगह मिलो चाहे सरकारी जमीन का नहीं हो तो तिथि तुहां जो खाली जगह मिलो तो तुहे तिथि जाने जे असें पौधे लगाए सकें पेड़ जे असें हवा शुद्ध करें मिट्टी रे कटाव जो रोकें कने वन्य जीवन जो आश्रय दें ये तो सारे जो ही पता, पर क्या अह पेड़ लगाने की कोशिश करा भी है पेड़ कटने जो जे असें एकदम तैयार हुई हैं अहे, पर क्या अहे एड़ा कित्या भी तिस पेड़ रही जगह जे असें एक पेड़ कटे तो एक ही पेड़ लाया हो नहीं ना इं बोले तो जहाँ भी अगर तुहे जे एक पेड़ कटें तो तीसरी जगह 10 लाने चाहिए, पर 10 क्या अहाँ तो एक भी लगी नहीं पाँगा अहे 10 जरूर कट्टी लैने पर अहाँ एक पेड़ लाने की कोशिश नहीं करनी है ना। तो ये तुहां जरूर कोशिश करनी हूँ आने वाले बरसाती रे मौसम च भी अपने आस पास जे तिथि जे तुहां जो खाली जमीन मिलो तिथि तुहां पेड़ लगाने कने पेड़ भी जड़े लगाने तिनारी जे चौड़ी पत्ती हो नेड़ी पत्ती आले पेड़ नहीं लगाने चौड़ी पत्ती आले पेड़ लगाने कने जे हूँ बरसाती रा मौसम आ तिस थोड़ी तुहां जो जे क्योंकि बरखा बार बार होंदी रहनी तो तिस पौधे री जे असें इतनी केयर में नहीं करने पौनी कने पेड़ जे असें आपू लगियां। दूजी गल जे इस है जल संरक्षण री पानी की बर्बादी जे असें बिल्कुल रोकनी चाहिए कने अहां ते जे ए अपने आप ते शुरुआत करनी चाहिए इस शुरुआत हो तली जे ब्रश करें सब ते ज़्यादा पानी अहे वेस्ट तली करें क्योंकि अहे तली जे ब्रश करें ना तली एकदम वॉश बेसन अगे खड़ी रहें कने बस नलका खुला छड़ी रहा कने बस जी लगी रे ब्रश करने तो एड़ा बिल्कुल नहीं करना, बर्तन जे धोने तो ताली भी तुआ थोड़ा घट पानी इस्तेमाल करना कने सारे जो जे आ से रेन हार्वेस्टिंग टैंक जे आ से जरूर बनाने चाहिए अपने घर ताकि बारिश रस जे पानी आ ते सो कट्ठा करीने जे आ से रोकी सकी कने से बाद जे आ इस्तेमाल होई सको। भई गल करिए जे अहे ऊर्जा री बचत री

ये करते हैं कुछ चुनिंदा पुराने नगमों से आपका मनोरंजन। और पहला गीत जो हम कार्यक्रम में आपको सुनवाने वाले हैं वो सुनवाएंगे हम मुकेश की आवाज़ में। तो आइए सुनते हैं हिमालय की गोद में फिल्म का ये गीत, गाया है इसे मुकेश ने।

जी बिल्कुल दोस्तों, मनपसंद साथी अगर किसी को मिल जाए तो फिर ज़िंदगी में बहार ही बहार आ जाती है। बहरहाल कार्यक्रम है सैनिकों के लिए। इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से, और आइए अब आपको सुनवाते हैं प्यासा फिल्म से ये गीत। गाया है इसे मोहम्मद रफ़ी और गीता दत्त ने, संगीत है SD बर्मन का और शब्द रचना है साहिर लुधियानवी की। तो आइए सुनते हैं प्यासा फिल्म का ये गीत।

गाया था इस गीत को किशोर कुमार और साथ दिया था उनका आशा भोसले ने। और आइए कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं दर्द फिल्म का गीत। एक बार फिर से आवाज़ें किशोर कुमार और आशा की हैं। नक्श लालपुरी की, शब्द रचना है, संगीत है खय्याम का।

तकनीकी खराबी के कारण ये गीत हम आपको पूरा नहीं सुनवा पाए, इसका हमें खेद है। आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सैनिकों के लिए, और कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं अमित कुमार और लता मंगेशकर का गाया रोमांस फिल्म का ये गीत।

आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। दिन का एक बज चुका है और अब से लेकर शाम 5 बजे तक आप हमारे केंद्र से सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर, लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कार्यक्रम के शुरुआत के पहले आपको बता दें आज की इबारत यानी टेक्स्ट क्या है। तो आज की इबारत है, हर सवाल का जवाब हो ये ज़रूरी तो नहीं, हर जवाब का सवाल हो ये भी कहाँ ज़रूरी है। अब आप ही सोचिए, कब, कौन, कहाँ, किससे, क्यों और कैसे मिलेगा और क्या कहेगा, ये कोई जानता है भला? नहीं। यह जानकर भी कुछ सवाल और जवाब अनजान से राहों में भटकते रहते हैं। वैसे सवालों को उनके जवाबों से मिलाने की कोशिश में ही तो हम कभी सवालों के पीछे जवाब लिए तो कभी जवाबों के लिए सवाल ढूंढने घूमते रहते हैं। पर जिंदगी भाई, वो तो इन सारे सवालों जवाबों से परे होती है। तो ये है आज की इबारत और टेक्स्ट। और जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों, या कहें कि जब से सुरीला सफ़र शुरू हुआ है, तो हम एक इबारत रोज़ाना फेसबुक पर पोस्ट करते हैं। हमारे फेसबुक पेज के ज़रिए आप इस इबारत या टेक्स्ट को जानते हैं और इसमें ही कुछ शब्द छुपे होते हैं जिनसे गीत कार्यक्रम में शामिल किए जाते हैं। अगर आप अब तक हमारे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं तो टाइप कीजिए फेसबुक पर जाकर www.facebook.com/vbsmumbai और आप विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के पेज पर पहुंच जाएंगे। हिंदी में लिखा है ये विविध भारती राष्ट्रीय सेवा और इसमें जाकर आप हमारे सभी कार्यक्रमों की जानकारी भी हासिल कर पाएंगे और सुरीला सफ़र की पोस्ट भी आपको वहीं मिल जाएगी जिसके कमेंट के ज़रिए आप अपनी बात हम तक पहुँचा सकते हैं। तो हमारे साथियों ने आज की इबारत और टेक्स्ट पढ़कर ये अंदाज़ा लगाया है कि कुछ सवाल जवाब की बातें होने वाली हैं। सुरीला सफ़र में तो खैर वैसे भी सवाल जवाब की बातें होती ही हैं, लेकिन हमारे एक साथी लिखते हैं कि कब हुआ, कहाँ हुआ और कैसे हुआ काम, सवालों से मिलता है हर बात का नाम, जिज्ञासा जगाती है ज्ञान की आस, उत्तर से खुलते हैं समझ के प्रकाश। तो बहुत ही अच्छी तरह से हमारे बहुत से साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी हैं, लेकिन क्योंकि कार्यक्रम में गीत भी तो ज़रूरी हैं तो गीत आपको सुनवाएंगे। उससे पहले आपसे हम पूछना चाहते हैं कुछ सवाल। तो ये बताइए कि ऐसे कौन से सवाल हैं जिनके जवाब आपको अब तक नहीं मिले, या ऐसे कौन से जवाब हैं जिनके सवाल आपसे पूछे ही नहीं गए, और कौन सा सवाल ऐसा है जो आपको सबसे कठिन लगता है, और कौन सा ऐसा सवाल है जो आपको लगता है कि इसे तो पूछना ही नहीं चाहिए किसी से भी। किस तरह के जवाब आपको पसंद नहीं आते, और किस तरह का जब जवाब देने का आपका मन नहीं होता है तो किस तरह से आप टालते हैं कोई बात। तो ये सारी बातें आप हमसे साझा कर सकते हैं, अपने अनुभव हमसे साझा कर सकते हैं कि कभी आपसे अगर पूछा गया हो ऐसा सवाल जिसने आपको असमंजस में डाल दिया हो कि इसका जवाब क्या दें। और कई बार ऐसा भी होता है कि किसी सवाल का जवाब हमें पता होता है लेकिन हम कह नहीं पाते क्योंकि कुछ परिस्थिति ऐसी होती है। तो इस तरह की कोई परिस्थिति अगर आपके सामने आई हो तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, और कुछ फिल्मों से जुड़ी बातें भी आप हमें बता सकते हैं कि कौन सी ऐसी फिल्म है जिसने आपके मन में कई सवाल छोड़ दिए, या कोई ऐसी फिल्म भी हो सकती है जिसने आपके मन के सवालों को हल कर दिया हो कोई जवाब देकर। तो ये सारी बातें होंगी इस एक घंटे के दौरान। तब तक हम आपको सुनवाने वाले हैं कार्यक्रम का पहला गीत। हालांकि आप सभी ने बहुत सारा अंदाज़ा तो लगाया है कार्यक्रम

देख कबीरा रोया फिल्म का ये गीत मन्ना डे की आवाज में आप सुन रहे थे और हमारे साथियों ने ये भी बताया कि अनूप कुमार पर फिल्माया गया है ये गीत, तो बिल्कुल सही जवाब। वही हमारी एक साथी कहती है कि इतने सारे सवाल एक साथ धीरे धीरे पूछिए सवाल, तो भाई एक साथ इसलिए हमने सारे सवाल आपसे कह दिए क्योंकि आप अपनी सुविधा अनुसार धीरे धीरे जवाब देते रहें, और अगर आपको चाहिए तो बीच बीच में तो हम अपना सवाल दोहराते भी रहेंगे। वैसे हमारे एक साथी ने कह दिया है कि उन्हें नापसंद आने वाले सवालों में से पुरुषों के लिए है उनकी आय और महिलाओं के लिए है उनकी आयु, ये सवाल पसंद नहीं आते। वैसे हम कहें कि तो इसका उल्टा भी हो सकता है, भाई महिलाओं से भी अब उनकी आय ना पूछी जाए और ना ही पुरुषों से पूछी जाए उनकी उम्र, तो ये सवाल तो बिल्कुल ही हमें छोड़ देने चाहिए। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि सवालों जवाब पर तो कई फिल्मों में गीतकारों ने गीत लिखे हैं, तो ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन कार्यक्रम के अनुसार समय के अनुसार गीत शामिल किए जा रहे हैं। हाँ, तो इस गीत में पूछा गया कि कौन आया मेरे मन के द्वारे, एक सवाल था, लेकिन जब कोई हमारे मन के द्वारे या कहें कि घर के द्वारे तक आ ही जाता है तो हम पूछते हैं उससे सबसे पहले एक सवाल, और जब भी किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले भी वही सवाल पूछते हैं। कुछ ऐसा ही एक गीत है जिसमें किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ें हैं, तो अगर आप वो गीत पहचान सकें तो बड़ी अच्छी बात होगी। और तब तक हम आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला गीत जो कि शायद सभी के लिस्ट में है, और इस गीत में बोल किसके हैं ये आपको हमें बताना है।

0: शैलेंद्र का लिखा ये गीत आप सुन रहे थे ससुराल फिल्म में।
1: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर, जिसमें सवाल जवाब का सिलसिला जारी हो चुका है और कई सवाल हमने आपने पूछे ये कि ऐसे कौन से सवाल हैं जिनका जवाब आपको अब तक नहीं मिला, या ऐसे कौन से जवाब हैं जिनके सवाल आपसे पूछे नहीं गए, कौन सा सवाल ऐसा है जो कठिन लगता है और कौन से ऐसे सवाल हैं जो पूछे नहीं जाने चाहिए। अगर आपको पसंद ना हो तो आप जवाब न देने के क्या क्या तरकीबें लगाते हैं, और जब जवाब देने आपको पसंद नहीं आए तो कैसे जवाब वो थे जो आपको पसंद नहीं आते।

वहीं हमने पूछा था कि कौन सी फिल्म है जिसने कई सवाल आपके मन में छोड़ दिए थे, तो इसके बारे में हमारे साथी ने लिखा है कि बागबान फिल्म ऐसी फिल्म थी जिसको देखने के बाद कई सारे सवाल मन में चल रहे थे। हमारे एक साथी लिखती है कि जिंदगी एक अनसुलझी पहेली है जहाँ हर मोड़ पर एक नया सफर हमारा इंतजार कर रहा है। कौन, कब और कहाँ हमें मिल जाए ये कोई नहीं जानता। अनजाने रास्ते, अजनबी चेहरे और अचानक होने वाली मुलाकातें ही तो इस सफर को खूबसूरत और रोमांचक बनाते हैं। बस हर पल का खुले दिल से स्वागत करें। और हमारे साथियों ने, हमने तो ये गीत सुनवाया ही, एक सवाल मैं करूं एक सवाल तुम करो, इससे थोड़ा ज्यादा ही संजीदा रूप में ले लिया और उन्होंने भी हमसे सवाल करने शुरू कर दिए हैं, जैसे कि आप कहाँ थे, क्यों नहीं आ रही थी। इसी तरह से हमारे कई साथियों ने लिखा, एक साथी ने तो लिखा कि अमर अकबर एंथनी में जो माँ होती है, छोटा बच्चा तो उनके सामने ही रोता रहता है, तो उसे पहचाना क्यों नहीं उन्होंने, क्योंकि वो उसकी आवाज तो सुन पा रही थी। भाई, इन सवालों का जवाब तो हमारे पास नहीं है फिलहाल, लेकिन हम जो सवाल आपसे पूछेंगे उनका जवाब जरूर आपके पास है, ये हमें पता है। वैसे एक सवाल मैंने जो पूछा है आपसे, उसका भी जवाब आपने हमें दिया नहीं कि जब हम किसी से मिलते हैं तो क्या पूछते हैं। कुछ ऐसा ही एक गीत है जिसे किशोर कुमार और आशा भोसले ने गाया है। अगर आपको और भी ज्यादा हिंट चाहिए, नहीं, देखिए जवाब आ गया। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, चलती का नाम गाड़ी फिल्म का ये गीत है। हमारे साथी ने बिल्कुल सही जवाब दिया और ये गीत हम आपको सुनवाएं, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाने वाले हैं एक दूसरा गीत जिसमें आपको ये बताना है कि इसे लिखा किसने है, और तब तक हम भी देखते हैं कि आपने क्या क्या सवाल हमारे लिए सामने रखे हैं।

जैनिसा अख्तर ने लिखा इस गीत को। ब्लैक कैट फिल्म से गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में आपने सुना और एन दत्ता का संगीत था। कार्यक्रम सुरीला सफर चल रहा है इस वक्त विविध भारती पर और आप सवालों जवाबों के बारे में सोच रहे हैं। हमारे साथियों ने बहुत सी बातें कही, कौन सा सवाल कठिन लगता है, कौन से सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए, इस पर बहुत से साथियों ने जवाब दिया कि मुझे ये सवाल हमेशा कचोटता रहता है। हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि इस दुनिया में कोई अमीर कोई गरीब क्यों है, फिर यकायक गीत मेरे होंठों पर आ जाता है कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। उसी तरह से हमारे साथी कह रहे हैं कि सैलरी के बारे में पूछना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन बहुत से लोग पूछते हैं तो उसका जवाब देना भी पसंद नहीं आता। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मैथ्स के जो सवाल होते हैं वो बड़े कठिन होते हैं, वो ना पूछे जाएं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो कई सवालों का जवाब नहीं दे पाते थे, कुछ तो डर के मारे भूल जाते थे। जब फिजिक्स वाले सर सवाल का जवाब पूछते थे तो डर के मारे नहीं बता पाते थे, आते हुए भी पता नहीं क्यों हम उनसे डरते थे, बाकी सब टीचर से मस्त आराम से बातें करते थे, मस्ती भी करते थे। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आपने सवाल क्या पूछा, हम तो समझ नहीं पाए। तो ठीक है, फिर से हम आपको सवाल तो दोहराने वाले ही हैं। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि धैर्य रखें, आज आप जिसे जवाब नहीं दे पा रहे उसे समय स्वयं जवाब देगा। वहीं हमारी एक और साथी ने लिखा कि कभी किसी स्त्री से कोई पुष्टि ही नहीं की जाती कि तुम क्या चाहती हो, मशीन के तरह घर के बाहर के काम करते रहती है परिवार के लिए, अगर आन पड़े तो कमाने भी लग जाती है, लेकिन सभी बातों में एक सवाल अधूरा ही रह जाता है कि तुम क्या चाहती हो। बिल्कुल, बहुत ही ज़रूरी सवाल आपने लिख भेजा, ये सवाल तो पूछा ही नहीं जाता जिसे ज़रूर पूछना चाहिए। वहीं एक और ज़रूरी सवाल है जिससे रोज़ाना हम दो चार होते हैं। हमारे साथी ने लिखा, मुझे रोज एक ही सवाल परेशान करता है कि आज खाने में क्या बनेगा, और जब लोग ये कहते हैं कि कुछ भी बना लो तो ये कुछ भी क्या होता है। वाकई, तो ये कुछ भी क्या होता है, ये सवाल जो है इनके मन में चल रहा है, और खाने में क्या बनेगा ये भी इनके मन में हमेशा चलता रहता है। लेकिन मन में क्या चल रहा है ये तो तभी पता चलेगा जब आपका मनचाहा गीत हमारे गीत के साथ शायद मैच हो जाए। चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, बताइए किस फिल्म का ये गीत है।

गैम्बलर फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं सुरीला सफर, और सवाल जवाब का सिलसिला जारी है। वैसे हमारे साथी कह रहे हैं कि बहुत सी बातें कह रहे हैं और क्या क्या सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए उन पर हमारे साथी कह रहे हैं कि जब किन का जवाब नहीं देते बनता है। इस पर भी हमारे साथी कह रहे हैं कि भाई जब पत्नी पूछे कि क्या बना कैसी लग रही हूँ तो उसका जवाब देना बड़ा कठिन होता है। वहीं वो कह रहे हैं कि जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, इस प्रश्न का जवाब भी अभी तक नहीं मिला। तो कुछ मुश्किल सवाल जवाब के बारे में तो इन्होंने लिखा। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मेरे दो बेटे हैं और हरदम पूछा जाता है कि लाडला कौन है। ऐसे सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए क्योंकि माँ को अपनी संतान एक समान प्रिय होती है। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि जब उम्र पूछा जाती है तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कोई भी अपनी उम्र खासतौर से लड़कियों से अगर पूछी जाती है तो ये सवाल सही नहीं लगते। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कौन सा बच्चा प्यारा है जब पूछा जाए, या किसी ज़्यादा भाई बहन से ज़्यादा आपकी किससे ज़्यादा दोस्ती है ये पूछा जाए, या पूछा जाए कि कौन से गाने आपको पसंद है लता जी के, रफ़ी जी के, या किसी भी इस तरह से गायकों के नाम लेकर पूछा जाता है, या कौन सा फिल्मी गाना अधिक पसंद है। इस तरह के जो सवाल हैं वो बड़े मुश्किल लगते हैं। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं कि जीवन में इस तरह के सवाल जवाब, यानी कि ऐसा क्यों वैसा क्यों मेरे साथ ही क्यों, ये बहुत होते हैं। दुख सुख के सुर तो आते जाते रहते हैं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वो नहीं जिसके पास हर सवाल का जवाब हो, बल्कि वो है जो ये समझ सके कि कुछ चीज़ों को वक्त के भरोसे छोड़ देना और इन सुरीले सफ़र का मज़ा लेना ही ज़िंदगी है। ना इब्तिदा की खबर है ना इंतहा का पता है, ज़िंदगी बस एक सुरीला सफ़र है और तू ही मेरी रहनुमा है। तो बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरह से जवाब हमारे साथी लिख भेज रहे हैं, लेकिन ये तो बताइए कि वो कौन सा ऐसा जवाब है, किस तरह का जवाब है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता। या एक और बात आप बता सकते हैं ये कि अगर खुद से कोई सवाल पूछना हो, क्योंकि कई बार हमें खुद से भी कुछ सवाल पूछने पड़ते हैं कि आखिर तुम चाहते क्या हो, इस तरह के कई सवाल होते हैं। तो अगर आप खुद से कोई सवाल पूछना चाहें तो वो सवाल क्या होगा? मान लीजिए कि आज ही आपको अगर अपने आप से कोई सवाल पूछना है तो ये बताइए कि वो सवाल क्या होगा। और तब तक हम आपको कार्यक्रम का अगला गीत सुनवा रहे हैं, क्योंकि भाई इतनी देर हो गई हम सभी को मिले हुए, लेकिन हमने तो आपसे आपका हाल ही नहीं पूछा। तो वो हाल पूछ रहा है ये गीत और आपको सुनवा रहे हैं। हमें ये बताइए कि इस फिल्म में नायक नायिका कौन थे।

चलती का नाम गाड़ी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ें। और इस फिल्म में नायक नायिका किशोर कुमार और मधुबाला इस गीत में नजर आते हैं। और हमारे साथियों ने तो इतनी सारी गाड़ी चला दी है सवालों की, उन्होंने तो हमसे ही सवाल पूछने शुरू कर दिए। भाई एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो, जो गीत हमने सुनवाया उसका अर्थ ये थोड़ी था कि आप हमसे सवाल करते ही चले जाएं। देखिए आपके पास तो जवाब देने का ऑप्शन उपलब्ध है और आप देते रहते हैं जवाब। हमारे एक साथी ने कहा कि अज्ञात फिल्म ने बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में छोड़ दिए। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जब हम किसी से मिलते हैं और सवाल पूछते हैं तो शब्दों से ज़्यादा हमारी आवाज़ का लहजा और आंखों की चमक मायने रखती है। सवाल चाहे जो भी हो, अगर उसके पीछे सच्ची आत्मीयता है तो सामने वाला अपनी हर फिक्र भूलकर मुस्कुरा देता है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जिंदगी के दिए सवाल जवाब बहुत कठिन लगते हैं, ना तो सवाल समझ में आते हैं ना जवाब। वहीं हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि उनकी घर में एक छोटी बेबी है, बच्ची है उनकी, और उनकी या उनकी नाती पोती वो हो सकती हैं, और वो जब सवाल पूछती हैं सवाल पर सवाल तो उस नन्ही परी के सवालों के जवाब देते देते थक जाते हैं, लेकिन उसके सवाल बिल्कुल भी नहीं ख़त्म होते। लेकिन इसी तरह से तो वो अपने जान पाएंगी इस दुनिया को और आसपास के लोगों को। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बेसिर पैर बेतुका सवालों सवाल पसंद नहीं आते, परिचर्चा के विषय वस्तु से दूर अवांछनीय सवालों से इन्हें चिढ़ है। वहीं हमारे एक साथी तो ये पूछ रहे हैं कि आपकी ड्यूटी कितने घंटे की होती है, ये सवाल ज़रा छोटा सा ही है, ऐसा वो कह रहे हैं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जब आप इबारत तैयार करते हैं तो उसमें बहुत कुछ सोच के आते होंगे, पर प्रोग्राम शुरू होता है तो सब कुछ अलग हो जाता है संदेशों के साथ, तो आप ये सब कैसे मैनेज करते हैं? तो भाई हम तो यही कहेंगे कि आप सभी का साथ मिलता है तो जो भी हम सोच कर आते हैं उससे ज़्यादा अच्छी हो जाती है सोच, और कार्यक्रम में आप सभी का सहयोग जब मिलता है तो कार्यक्रम भी बहुत अच्छा होता जाता है। तो आप सभी के सहयोग से ये सवाल जवाब जो हो रहा है, या कहें कि ये कार्यक्रम जब होता है तो आपका सहयोग भी पूरी तरह से होता है, तो 50-50% पार्टनरशिप पे चल रहे हैं हम, ऐसा कह सकते हैं। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि कुछ सवालों के जवाब नहीं होते, इसे वक्त पर छोड़ देना चाहिए, और वक्त इतना सटीक हल उसका निकाल कर जवाब देता ही है। वहीं हमारे एक और साथी कह रही हैं कि नाइट में भी आपकी ड्यूटीज़ होती हैं क्या, जैसे रेलवे में होती हैं? और हमारे एक और साथी पूछ रहे हैं कि भाई आप कौन तय करता है कि कौन आएगा सुरीला सफ़र में? तो ये विविध भारती से जुड़े जो भी सवाल आपने पूछे उसका जवाब तो आपको यहीं आकर मिलेगा। तो अगली बार जब आप आएँ तो यहाँ की सैर पर आइएगा और आपको इन सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि ये सवाल भी अक्सर जहन में आता है कि जीवन एक सफ़र है तो मृत्यु क्या है? भाई बहुत ही गहन सवाल है ये, और इसके बारे में जवाब ढूंढते ढूंढते कई दार्शनिक बहुत सी बातें लिख भी गए हैं, बट इस पे तो सोचना बहुत ही गहराई से सोचना पड़ सकता है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि नए जोड़ों के साथी अंतरंगता की बातें अक्सर पूछते हैं, वो नहीं पूछने चाहिए। बिल्कुल सही बात आपने कही। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि शादी के लड्डू जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। तो सवाल ये है कि शादी के लड्डू ही क्यों, कड़वा करेला भी तो हो सकता है। तो भाई नेक्स्ट टाइम जब आपके आसपास किसी की शादी हो तो आप कहिएगा कि इस बार लड्डू ना बनाएं और बनाएं करेला, देखें आपकी बात अगर वो मानते हैं तो फिर इस कहावत को हम बदल भी सकते हैं, क्योंकि शादी में तो भाई लड्डू वड्डू ही मिलते हैं, मिठाई मिलती हैं, करेला तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। चलिए तो अब हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, और इस गीत में आवाज़ किसकी है ये तो आप बताएंगे ही, साथ ही आप बताएंगे फिल्म का नाम भी।

जवानी दीवानी फिल्म का ये गीत आपने सुना, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ें। हमारे साथियों ने बिल्कुल सही जवाब दिया और हमारे एक साथी लिख रहे हैं कि कोई भी बच्चे जब आपस में एक दूसरे से सवाल करते हैं कि मम्मी ज़्यादा अच्छे लगते हैं क्या पापा, वहीं हमारे एक साथी ने कहा कि एक सवाल पूछ ही लेता हूँ, जन्म के समय आत्मा आई थी या देह परिवर्तन के समय आत्मा ही जाती है, तो ये सवाल है कि मन आया किधर से? और इस सवाल का जवाब हमारे पास तो नहीं है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बहुत सी बातें होती हैं जो नहीं पूछनी चाहिए, और इस फहरिस्त में हमारे एक साथी ने, उन्होंने अंग्रेजी में अपना जवाब लिखा है तो उसे हम हिंदी अनुवाद करके आपको सुनवा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि किसी को भी, किसी भी युवा बच्चे जो होते हैं, लड़के होते हैं, उनके माता पिता से या उनसे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि वो शादी कब करने वाले हैं, या जो नई नई इनकी शादी होती, नवविवाहिता होती हैं, उनकी माओं से ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि आपकी बेटी कब माँ बनेगी, या फिर उनकी शादी, किसी की शादी से संबंधित सवाल नहीं पूछना चाहिए, और अगर उन्हें बुलाया गया है तो भी किस तरह से बातें नहीं पूछनी चाहिए, कि कभी भी कोई अगर कोई गर्भवती भी है तो उससे भी ये नहीं पूछना चाहिए कि गुड न्यूज़ कब दे रहे हैं, और इस तरह की बातें क्योंकि परेशान करती हैं जिनको भी, जिनकी भी संबंधित होती हैं परेशानी, उन्हें परेशान करती हैं, इसलिए आपको इस तरह के सवाल नहीं पूछना चाहिए। वहीं हमारे एक साथी हैं, वो कह रहे हैं कि उनको क्या सवाल नहीं पूछना चाहिए, वो कह रहे हैं कि एक सवाल पूछ रहा हूँ कि आसमान में उड़ने वाले बादल इतना सारा पानी कैसे लेकर उड़ सकते हैं, जिनमें पानी के टैंकर होते हैं जिसमें शहर और गाँव में बरसते हैं और पूरा गाँव शहर तर बतर हो जाता है। विज्ञान का सवाल है, जवाब हो तो ज़रूर देना। भाई इसका जवाब इतना बड़ा है कि इसका जवाब तो आपको विज्ञान की किताब का एक पन्ना भेज कर ही हमारे साथी दे देंगे, तो जिस भी साथी के पास वो पन्ना है वो उन्हें जरूर भेजें। और हमारे एक और साथी कह रही हैं कि कौन सा सवाल खुद से पूछना चाहेंगे, उसमें उन्होंने पूछा है कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, मैं अपने काम ठीक से नहीं कर पा रही, क्यों नहीं कर पा रही हूं, इस तरह के सवाल वो पूछना चाहती हैं खुद से। तो हम उन्हें बस ये जवाब देना चाहेंगे कि आपको थोड़ा आराम करना चाहिए और खुद को लेकर थोड़ा नर्म पड़ना चाहिए, तो इससे आप जरूर अपने कामों को पूरी तरह से कर सकेंगे। और खुद को जज करना कुछ दिनों के लिए बंद कीजिए और अपने, आप ये सोचिए कि आप ज़रूर कर पाएंगी उन कामों को, शायद थोड़ी थकान हो, तो इस तरह से, इस जवाब से शायद आपको कुछ आराम मिले और कुछ आराम आपको इस गीत से भी मिल सकता है। तो सुनिए ये गीत और हमें बताइए किस फिल्म का ये गीत है और लिखा किसने है।

ಮಂದಿ

0: चंद्रसेना फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे।
1: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
2: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर, जिसमें बात हो रही है सवालों और जवाबों की। बहुत से ऐसे सवाल जिनके जवाब नहीं मिलते, या बहुत से ऐसे सवाल जिनसे हम चाहते हैं कि कोई हमसे पूछे ही ना, या जिनके जवाब हम देना ही नहीं चाहते, और कुछ ऐसे सवाल जो हम खुद से पूछना चाहते हैं। इन सभी के बारे में आपने लिखा है। हमारे एक साथी कहते हैं कि मैं क्या किसी के सवाल का जवाब दूंगी, मेरी तो फोन की बैटरी जवाब दे चुकी, बिजली धोखा दे गई और फोन की मानो चंद सांसें गिनती की रह गई और अन्य कोई साधन भी उपलब्ध नहीं कि फोन चार्ज हो सके। बस अब श्रवण कुमार बनेंगे वक्ता बाबू तो बनने से रहे, सुनेंगे रेडियो सेट पर शेष प्रोग्राम। शुक्र है रेडियो की बैटरी अपने पूरे शबाब पर है। चलिए अच्छी बात है कि आप कार्यक्रम में किसी भी तरह से शामिल तो हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि स्कूल के समय में गणित का सवाल जब सबसे खतरनाक लगता था, 8वीं क्लास में 0 नंबर मिले थे और बहुत पिटाई हुई थी, उसके बाद पूरी नौकरी में गणित का ही काम करना पड़ा, लेकिन गणित आज भी नहीं आती। भाई तो हमारा सवाल तो यही कि गणित नहीं आती फिर भी गणित का इतना काम कैसे कर लेते हैं आप। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज आपके सवाल जवाब ने बचपन में पिताजी की मार याद दिला दी है। जब वो गणित पढ़ाते थे तो सवाल का जवाब पता होता था लेकिन उनके आगे जुबान नहीं खुलती थी, जब एक थप्पड़ पड़ते तो झट से जवाब देता था। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि जब कोई घर का सदस्य बाहर जा रहा हो किसी महत्वपूर्ण काम से तो कहाँ जा रहे हो, इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए। और हमारी कौर साथी ने कहा, अगर मैं खुद से सवाल करती हूँ कि मैं सबके लिए जीती हूँ, खुद के लिए कब जी पाऊंगी, जिसमें कुछ पल मेरे बिल्कुल अपने हों, तो बिल्कुल इम्पॉसिबल सा लगता है। भाई इस इम्पॉसिबल को आप पॉसिबल कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो कुछ वक्त अपने लिए निकालने लगेंगे तो वाकई घर के सदस्यों को भी इसकी आदत होती जाएगी और आप वाकई अपने लिए वो समय निकाल पाएंगे। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जल्द ही आप इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाएंगी, लेकिन इससे पहले हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम का ये गीत। और ये गीत सुनकर हमें आप बताइए कि किसका संगीत है, फिल्म का नाम भी।

बुढ़ा मिल गया फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मन्ना डे और अर्चना की आवाज़ से, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव वर्मन का संगीत। हमारे एक साथी ने लिखा है कि आज की भारत एक ऐसे तथ्य को उजागर करती है जिसकी तलाश में सारी जिंदगी हम व्यतीत कर लेते हैं और मिलकर भी हमें वो चीज़ नहीं मिलती। हम पूरी जिंदगी या तो अपने सवालों के लिए सही जवाब ढूंढते रहते हैं या फिर मिले हुए अनुभवों को सही साबित करने के लिए नए सवाल खड़े करते रहते हैं। राहों में इन सवालों का भटकना भी इस सफर का एक खूबसूरत हिस्सा है। सवाल और जवाब के ताने बाने से इंसानी जहन की कश्मकश को बड़े ही सरल मगर गहरे शब्दों में पिरोया है। वहीं मारिक और साथी कहती कि सवाल जवाब तो जब तक जीवन है चलते ही रहेंगे। हाँ, कुछ सवाल के जवाब हमेशा अनुत्तरित रह जाते हैं। दरअसल कभी कभी किसी सवाल का जवाब ना मिले उसी में बड़ी खूबसूरती छिपी होती है। हर सवाल का जवाब मिल जाए तो जिंदगी में फिर रोमांच ही खत्म हो जाए। जिंदगी के सवाल जवाब को जितनी गंभीरता से लोगे उतनी ही पीड़ा होगी। जीवन का सबसे निश्चल पक्ष है जो जैसा है वैसा ही ग्रहण करो मगर सवाल जवाब भी करते रहना चाहिए क्योंकि इससे जीवन में जिज्ञासा बनी रहती है। वहीं हमारे और साथी कहते हैं कि आज की भारत जीवन केवल सवालों और जवाबों का गणित नहीं है। जीवन में कई मुलाकातें घटनाएं और रिश्ते बिना किसी पूर्व योजना के बनते हैं। कई प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं, कई उत्तर समय के साथ स्वयं मिल जाते हैं। इसलिए हर बात को तर्क और उत्तरों में बांधने के बजाय जीवन के रहस्यों संयोगों और अनुभवों को स्वीकार करना चाहिए। एक और साथी कहते हैं, सवालों जवाबों में उलझी जिंदगी आज आखिर मुकाम पर पहुंच चुकी है। तमाम सवाल अधूरे रह गए जिनके जवाब हमने खोजे ही नहीं और अपनी जिंदगी को तबाह करते चले गए। कुछ मजबूरियां थी जो कह रही थी कि जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है, फिर सवाल जवाब में उलझे तो अच्छा होने के बजाय और बुरा हो सकता था। आज सवाल जवाब की बातें चली तो वो दिन याद आ गए कि एक कंपनी में सर्वे सर्वा था और कुछ लोग बेईमानी में शामिल होने का भरसक प्रयास किए। मैं उनके साथ नहीं गया। आज उन्हीं बेईमान लोगों के हाथों कंपनी की बागडोर चली है और हम सब कुछ छोड़कर घर में बैठ गए हैं। तो ये बातें हमारे साथियों ने लिख भेजी हैं जिसमें बहुत सी उनके मन की गूढ़ बातें शामिल हैं। वहीं मालिक साथी का कहना है कि रोज़ अपने दिल से एक सवाल पूछते हैं कि क्या हमारी वजह से आज कोई मुस्कुराया। अक्सर जवाब हाँ में होता है पर कभी कभी ना में भी होता है। तो हमारी एक और साथी ने कहा कि जिस सवाल का टेढ़ा जवाब दिया जाता है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। कोई भी टेढ़ा जवाब देता है, बदतमीजी से बात करता है तो अच्छा नहीं लगता। एक और साथी कहती हैं कि सवाल जवाब के बारे में उन्होंने लिख भेजा है कि जिंदगी वाकई इन कब कहाँ कैसे की उलझनों से कहीं ऊपर एक अनसुलझा खूबसूरत सफर है। कभी प्रश्न आईना बनकर हमारा असली रूप दिखाते हैं, कभी बादल बनकर मन के आकाश को नया आकार दे जाते हैं। कुछ सवालों को उत्तर चाहिए पर कुछ सवाल बस महसूस किए जाने के लिए होते हैं। अक्सर इन्हीं अनुत्तरित प्रश्नों की चुप्पी में जीवन की सबसे गहरी सीख छुपी होती है। अतः सवालों जवाबों के अंतहीन चक्र में उलझने के बजाय जिंदगी का असली मजा लीजिए तो अनजानी राहों की खूबसूरती को महसूस करने और हर पल को बिना किसी शर्त के जीने में ही जिंदगी का मजा छिपा है। और अब आपको कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनवाते हैं। बताइए किस फिल्म का है।

0: वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंचा। 2020-21 की तुलना में 110% की वृद्धि। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया। 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट। और भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैच की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला लखनऊ में जारी। अब समाचार विस्तार से। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराधों से निपटने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया है। अपने बयान में नेताओं ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए शांति समझौते का स्वागत किया और इसे क्षेत्रीय तनाव कम करने तथा ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने का एक महत्वपूर्ण अवसर बताया। G7 नेताओं ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित नौवहन गतिविधियों के महत्व का भी उल्लेख किया। एक अन्य घोषणा में नेताओं ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का संकल्प लिया और इसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिरता के लिए बढ़ता खतरा बताया। सहयोगी देशों ब्राजील और दक्षिण कोरिया ने भी इस पहल का समर्थन किया है। नेताओं ने ज्ञान कौशल को बढ़ाने और तस्करी को रोकने के लिए G7+ पोर्ट्स नेटवर्क का प्रस्ताव भी रखा। G7 देश के नेताओं ने विकासशील देशों पर बढ़ते कर्ज के बोझ से निपटने की कोशिशें तेज करने का संकल्प लिया है। इसमें वे कमजोर मध्यम आय वाले देश भी शामिल हैं, जो अभी कोरोना महामारी के दौरान G20 के कर्ज राहत ढांचे के लिए योग्य नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इससे पहले दोनों नेताओं ने फरवरी 2025 में अमेरिका के वाशिंगटन में बैठक की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। हमारे संवाददाता अंकित कुमार एवियन से G7 सम्मेलन के घटनाक्रमों पर ताजा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। जी अंकित, दोनों नेताओं के बीच किन क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है?
1: जी लवली, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात है, ये कई मायनों में अहम है। हालांकि दोनों नेता कल ग्रुप फोटो और वर्किंग सेशन के समय मिले थे, लेकिन अब सबकी निगाहें इस द्विपक्षीय मुलाकात पर टिकी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान पश्चिम एशिया संकट को लेकर बात हो सकती है। देखिए, भारत हमेशा से शांति और बातचीत का पैरोकार रहा है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस मुद्दे पर व्यापक बातचीत हो सकती है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच ट्रेड डील की प्रगति पर भी बात हो सकती है। भारत ऊर्जा सुरक्षा के मुद्दे पर भी बात कर सकता है, क्योंकि पश्चिम एशिया का संकट हो या अन्य कोई भी भू राजनीतिक तनाव हो, ऊर्जा क्षेत्र पर व्यापक असर पड़ने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में इस मुद्दे पर प्रमुखता से बात हो सकती है। इन मुद्दों के अलावा श्री मोदी और श्री ट्रंप भारत अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार के सभी पहलुओं पर भी चर्चा कर सकते हैं। लवली,
0: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। श्री मोदी सम्मेलन के दौरान सभी के लाभ के लिए संतुलित, समावेशी और मजबूत आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर सत्र में भी हिस्सा लेंगे। श्री मोदी का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, तेज और प्रभावी इस्तेमाल को सुनिश्चित करने पर आयोजित एक विशेष सत्र में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं।
2: प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों यानी CEOs के साथ बैठक करेंगे। यह बैठक दोपहर तक चलने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां उपस्थित प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कुछ ही समय में होने जा रहा है। दुनिया भर के अग्रणी प्रौद्योगिकी कंपनियों, स्टार्टअप्स, निवेशकों और नवाचार क्षेत्र के विशेषज्ञों का इस प्रतिष्ठित आयोजन में जुटना शुरू हो चुका है। कल शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी होंगी, जो भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत करेगी। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर जैसी निर्णायक कार्रवाइयों तक भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि उसकी संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा संरचना में ऐतिहासिक परिवर्तन देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह उपलब्धि पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक की प्रभावशाली वृद्धि है। वित्त वर्ष 2020-21 में इसमें 110% की वृद्धि हुई है, जब ये आंकड़ा 84,000 करोड़ रुपए से अधिक था। श्री सिंह ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के 4,746 करोड़ रुपए की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत की रक्षा क्षमताओं में आत्मनिर्भरता और नवाचार, तकनीक तथा स्वदेशी निर्माण की सहायता से महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। MyGov की एक पोस्ट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कैसे भारत ने जल, थल और आकाश में उन्नत स्वदेशी तकनीकों के बल पर अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि इससे पिछले 12 वर्षों में भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए बदलाव की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमरीकी कंपनी के विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष अभिषेक देव ने बताया है कि भारत का कृषि संबंधी खाद्य उत्पादों से जुड़ा निर्यात बढ़कर 500 उत्पादों तक पहुंच गया है। भारत ने यह उपलब्धि अमेरिका, ब्राजील, चीन और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख वैश्विक निर्यातकों से प्रतिस्पर्धा के बावजूद हासिल की है। श्री देव ने कहा कि पिछले वर्ष कृषि निर्यात $53 अरब मूल्य का था।
3: भारत आज विश्व के शीर्ष 10 कृषि निर्यातक देशों में लगातार अपनी जगह बनाए हुए है। ये उपलब्धि इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का मुकाबला कई बड़े और विकसित देशों से है। पिछले कुछ वर्षों में भारत की कृषि निर्यात में निरंतर वृद्धि देखने को मिली है। हाल ही में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में हमारा कृषि निर्यात $53 अरब तक पहुँच गया और इसकी वृद्धि दर भी काफी अच्छी रही है।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बंजर भूमि को दोबारा उपजाऊ बनाने की सरकार की कोशिशें न सिर्फ प्रकृति की सेवा है बल्कि मानवता के भविष्य को सुरक्षित करने का संकल्प भी है। नई दिल्ली में मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए वैश्विक दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में श्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2,60,00,000 हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा है।
4: हम पूरी तरीके से अपने मंत्रालय की प्रतिबद्धता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कॉप 2014 की दिल्ली डिक्लेरेशन के समय में करी थी कि हम 26 मिलियन हेक्टेयर को 2030 तक एक तरीके से रेस्टोरेशन का काम करेंगे। भारत सरकार अपने ग्रीन इंडिया मिशन में लगभग 1.7 लाख हेक्टेयर जमीन का कार्य हमने किया है और कैंपा के समर्थन से भी पिछले 5 वर्षों में 3.2 लाख हेक्टेयर का हम लोगों ने फॉरेस्टेशन करने का काम किया है।
0: मणिपुर में सुरक्षा बलों ने राज्य भर में उग्रवाद विरोधी अभियान तेज कर दिए हैं। अधिकारियों के अनुसार अलग अलग अभियानों में 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया और 26 अवैध बंकर नष्ट किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए उग्रवादियों की पहचान प्रतिबंधित पीपल्स लिबरेशन आर्मी और उसके राजनीतिक विंग रेवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट के सक्रिय सदस्यों के रूप में हुई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आगामी नीट परीक्षा को देखते हुए विद्यार्थियों और अभिभावकों को घोटालेबाजों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के संपन्न हो।
5: एनटीए यह पक्का करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि कोई भी गड़बड़ी ना हो। हर प्रश्न पत्र और उसमें शामिल हर सवाल को पूरी तरह सुरक्षित तरीके से तैयार किया गया है। हमने सामान्य सुरक्षा उपायों के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम भी किए हैं। एनटीए ने कई एजेंसियों की मदद ली है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा बिना किसी गड़बड़ी के सम्पन्न हो।
0: इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र दिखाने पर राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों के किराए में 50% की छूट दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने आज लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट पुनर्परीक्षा से पहले छात्रों के मन में तनाव पैदा करने और उनकी एकाग्रता भंग करने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार इस परीक्षा को पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने जा रही है।
6: मात्र 3 दिन के बाद नीट की परीक्षा दोबारा संपन्न होने जा रही है। इस विषय को लेकर जहां एक तरफ सारे छात्र पूर्ण मनोयोग से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जहां एक तरफ सरकार संवेदनशीलता से काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संवेदनशीलता के स्थान पर कुटिलता का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल की हिजबुल्ला और सैन्य कार्रवाइयों की निंदा की है। फ्रांस में जारी G7 सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने कहा कि यह संघर्ष बहुत लंबे समय से जारी है और इसमें कई लोगों की जान गई है। उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू से सैन्य कार्रवाइयों के संचालन में अधिक जिम्मेदारी बरतने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
7: ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिका ईरान समझौता ज्ञापन की घोषणा के बाद से इसराइल ने लेबनान में युद्ध विराम का कई बार उल्लंघन किया है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि यदि हमले जारी रहे तो कड़ा जवाब दिया जा सकता है। ईरान के सैन्य अधिकारियों ने कहा है कि इसराइली बलों ने 48 घंटे में 84 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का उल्लंघन ईरान और अमेरिका के बीच जारी व्यापक कूटनीतिक प्रक्रिया के लिए खतरा बन सकता है। वहीं इस बीच हिजबुल्ला के अधिकारियों का कहना है कि समझौते के बाद से संगठन ने कोई सैनिक कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसराइल को भी युद्ध विराम की शर्तों का पालन करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर इसराइली नेतृत्व ने संकेत दिया है कि सुरक्षा खतरों को देखते हुए सैन्य अभियान जारी रहेंगे और उत्तरी सीमा पर सेना हाई अलर्ट पर बनी रहेगी। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: इस बीच ब्रेंट क्रूड की कीमत 5.4% गिरकर $78.66 हो गई है। लखनऊ में भारत और अफगानिस्तान के बीच 3 एकदिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 13 ओवर में 1 विकेट पर 96 रन बना लिए हैं। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। ICC महिला T20 विश्व कप क्रिकेट में आज भारत का सामना नीदरलैंड्स से होगा। ये मैच ब्रिटेन में लीड्स में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 से हराया है। अर्जेंटीना ने भी आज सुबह अल्जीरिया को 3-0 से पराजित किया। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। विभाग ने आज उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G7 नेताओं ने वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के प्रयासों पर केंद्रित कई घोषणाओं को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी आज शाम पेरिस पहुंचेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट और ऑपरेशन सिंदूर का उदाहरण देते हुए कहा कि भारत की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का रक्षा उत्पादन रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रुपए पहुंचा। सुरक्षा बलों ने मणिपुर में प्रवर्तन और आतंकवाद रोधी अभियान तेज किया। 3 आतंकवादी गिरफ्तार, 26 अवैध बंकर नष्ट और भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आजाद फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर की आवाज़, राजेंद्र कृष्ण के बोल, सी रामचंद्र का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नक में विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: जोरू का भाई फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। तलत महमूद की आवाज, साहिल लुधियानवी के बोल, जयदेव का संगीत।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: जानिसार अख्तर के बोल आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। सी रामचंद्र का संगीत फिल्म यास्मीन के इस गीत में आपने सुना।
1: एक जानी माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
2: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
1: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
2: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
1: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
2: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
1: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

गीता दत्त और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में आप सुन रहे थे मिस्टर एंड मिसेस 55 फिल्म का ये गीत, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, ओपी नैयर का संगीत।

0: वचन फिल्म से गीत आप सुन रहे थे, आशा भोसले की आवाज थी, प्रेम धवन के बोल, रविशंकर का संगीत।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नकमे। आइए सुनते हैं गीता दत्त की आवाज में CID फिल्म से ये गीत, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, OP नैयर का संगीत।

गीता दत्त की आवाज़ में सीआईडी फिल्म का ये गीत आपने सुना, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल ओपी नैयर का संगीत। अब कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं श्री 420 फिल्म से गीत। शैलेंद्र ने इसे लिखा है, शंकर जयकिशन का संगीत, आवाजें लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, मुकेश और साथियों की। इस गीत को सुनिए, मुझे दीजिए इजाजत।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एविया में G7 सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। इससे पहले दोनों नेताओं ने फरवरी 2025 में अमेरिका के वाशिंगटन में बैठक की थी। इस दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक हित के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन के दौरान सभी के लाभ के लिए संतुलित, समावेशी और मजबूत आर्थिक विकास को बढ़ावा

0: पूरी कर चुकी परियोजनाओं में सामान्य 12% मुफ्त बिजली रॉयल्टी के अतिरिक्त निशुल्क बिजली रॉयल्टी की हिस्सेदारी बढ़ाई जानी चाहिए। उन्होंने 180 मेगावाट की बैरा सियूल जलविद्युत परियोजना के संचालन के 44 वर्ष पूरे होने के बाद इस परियोजना में निशुल्क बिजली की हिस्सेदारी बढ़ाकर 50% करने का अनुरोध भी किया। मुख्यमंत्री ने भाखड़ा बांध प्रबंधन बोर्ड परियोजनाओं में राज्य को देय ऊर्जा बकाया के भुगतान में हो रहे विलंब का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य को प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों का सामना करना पड़ा और पौंग बांध विस्थापितों का पुनर्वास आज भी पूरी तरह नहीं हो सका है। प्रदेश के सबसे बड़े जिले कांगड़ा में नवनिर्वाचित पंचायत प्रधानों व उप प्रधानों को कल शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह धर्मशाला के दाड़ी मैदान में होगा, जहां मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू 1692 पंचायत प्रधानों व उप प्रधानों को शपथ दिलाएंगे। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह के लिए सभी जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है और समारोह के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
1: जिला कांगड़ा में प्रधान और उप प्रधान की शपथ होनी है, तो सरकार ने 18 जून का इसमें समय तय किया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय सभी प्रधान और उप प्रधानों को नियमानुसार उसमें शपथ दिलाएंगे और सभी प्रधान और उप प्रधानों को पंचायत राज विभाग की तरफ से आई कार्ड इशू किए जा रहे हैं और उनको सबको इन्विटेशन भेजा गया है। 846 हमारे प्रधान और 846 उप प्रधान, सो दोनों मिला के हमारे 1692।
0: प्रदेश के अनेक जिलों में 19 जून तक तेज हवाओं के साथ वर्षा और ओलावृष्टि की संभावना है। शिमला स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने बताया कि अगले 24 घंटों में चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिले के अनेक स्थानों पर ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान अनेक जिलों में रुक रुक कर वर्षा का क्रम जारी रहेगा। संदीप शर्मा ने बताया कि जून महीने में अभी तक प्रदेश में सामान्य से 5% कम वर्षा हुई है।
2: 17 जून से लेके 19 जून तक जो प्रदेश की जो मैदानी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे एक दो स्थानों में हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है, अर्थात जो मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट है और जो हाई रिचेज हैं वहाँ पे कुछ एक क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश होगी। मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट है चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला है, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, यहाँ पे 17 तारीख से लेके 19 तारीख तक थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग हो सकती है। साथ में स्पेशली जो डिस्ट्रिक्ट है कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, यहाँ पे जो पॉकेट्स हैं हमारे कुछ एक पॉकेट्स हैं वहाँ पे ओलावृष्टि भी हो सकती है। 18 जून को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
0: सिरमौर जिले के आंज भोज इलाके में शांत महायज्ञ का आज समापन हो गया। इसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। आंज भोज क्षेत्र के धनवा गांव में शिरगुल देवता और बिजट महाराज के नए मंदिर का निर्माण किया गया है। इसी उपलक्ष्य में इलाके में शांत महायज्ञ का आयोजन किया गया। महायज्ञ के दौरान इलाके में माहौल भक्तिमय बना रहा और वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच बड़ी संख्या में लोग इस आयोजन में शामिल हुए। श्रद्धालुओं ने बताया कि इस दौरान पारंपरिक वाद्य यंत्रों के बीच देव परंपरा की अनूठी झलक देखने को मिली।
3: ये जो धनड़ा की धरती है जो कि अब तीर्थ स्थल बन चुका है, ये केवल मात्र एक ऐसा स्थल है जहाँ पर कि बिजट महाराज और शिरगुल महाराज दोनों देवता एक साथ यहाँ विराजमान है। तो बेसिकली ये बिजट महाराज की धरती है जहाँ पर शिरगुल महाराज का बहुत प्राचीन मंदिर था, निर्माण काम चला हुआ था, आज यहाँ पर एक कुरड़ भी स्थापित हुआ है और ये शांत महापर्व का भी आज यहाँ समापन होने जा रहा है। चारों तरफ यहाँ पब्लिक ही पब्लिक है, श्रद्धालु ही श्रद्धालु है।
4: पूरा जो माहौल है वो पूरा देवमय माहौल हुआ है। बिजट महाराज और शिरगुल महाराज दोनों यहाँ एक ऐसा स्थान है जहाँ दोनों एक ही जगह विस्थापित है।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30। नमस्कार।
5: प्रादेशिक समाचार के बाद अब पेश है सामयिक चर्चा। विषय है परिवर्तन के 12 वर्ष, भारत में जीवन की सुगमता की कहानी। वाचक स्वर प्रभा शर्मा।
6: वर्ष 2014 के बाद से भारत की यात्रा सम्मान, अवसर और समावेशी प्रगति की दिशा में एक अहम बदलाव को दिखाती है। पिछले 12 वर्षों में महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों और सुधारों के जरिए शासन में एक उद्देश्य के साथ बदलाव आया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सुरक्षित घर, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जरिए साफ ईंधन और जल जीवन मिशन के तहत पीने का साफ पानी मिलने से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी बदल गई है। स्वच्छ भारत मिशन से पूरे देश में साफ सफाई बेहतर हुई, जबकि सौभाग्य योजना से लाखों घरों तक भरोसेमंद बिजली पहुंची। नए राजमार्गों, सुरंगों

0: पुलों, मेट्रो नेटवर्क और क्षेत्रीय हवाई मार्गों के साथ परिवहन और कनेक्टिविटी का ऐतिहासिक तेजी से विस्तार हुआ। प्रधानमंत्री जनधन योजना और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के जरिए वित्तीय समावेशन ने नागरिकों को बैंकिंग, ऋण और सुरक्षा के मामले में सशक्त बनाया। अटल मिशन फॉर रिजुवेन्युएशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन अमृत के तहत शहरी बदलाव ने हजारों कस्बों में अवसंरचना और सेवाओं को मजबूत किया। डिजिटल सुधारों और माई गोव जैसे नागरिक प्लेटफॉर्म ने सुशासन में लोगों की भागीदारी, जवाबदेही और भरोसे को बढ़ाया। इन सभी पहलों ने मिलकर आराम, सुरक्षा और अवसर का एक नया माहौल बनाया है। 2024 में शुरू की गई PMAYU 2.0 योजना के तहत लाभार्थी नेतृत्व वाली निर्माण प्रक्रिया श्रेणी में पात्र परिवारों को 2.5 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाती है। इस योजना के लिए जरूरी है कि परिवार की कोई महिला सदस्य मालकिन या सह मालकिन हो। शुरू होने के बाद से PMAYU के तहत 1.25 करोड़ से ज्यादा घरों को मंजूरी दी गई है। इनमें से 98 लाख से ज्यादा घर बनकर तैयार हो चुके हैं। 2005 से 14 के बीच पुरानी योजनाओं के तहत सिर्फ 8 लाख शहरी घर ही बन पाए थे। 2016 में शुरू की गई PMAYG योजना के तहत मैदानी इलाकों में प्रति घर 1,20,000 रुपये और पहाड़ी व दुर्गम क्षेत्रों में प्रति घर 1,30,000 रुपये दिए जाते हैं। 2016 से 2026 के बीच कुल 3,98,00,000 घर बनाने का लक्ष्य रखा गया था। इनमें से 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी गई और 3,05,00,000 घर बनकर तैयार हो गए हैं। मंजूरी मिले घरों में से 75% घर महिलाओं के नाम पर हैं या उनका संयुक्त मालिकाना हक है। सभी घरों में शौचालय, पीने का पानी और बिजली कनेक्शन जैसी सुविधाओं के लिए सरकारी कार्यक्रमों का पालन किया गया है। 2015 में शुरू किए गए अमृत मिशन ने कई शहरी इलाकों में बुनियादी सुविधाओं की कमी को दूर करने का काम किया। अमृत के पहले चरण में 500 शहरी घरों को शामिल किया गया, जिसमें पानी की सप्लाई, सीवरेज, हरित क्षेत्र और परिवहन पर ध्यान दिया गया। अक्टूबर 2021 में अमृत 2.0 के तहत 2,00,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ सभी 4,800 सर्वाधिक नगरों को शामिल किया गया। ये बजट मूल मिशन के मुकाबले लगभग 3 गुना ज्यादा था। अमृत और अमृत 2.0 के तहत 2.79 लाख करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी दी गई, जबकि 2015 से पहले 62.983 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी दी गई थी। मई 2016 में शुरू की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने साफ एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराकर ग्रामीण इलाकों में खाना पकाने के तरीकों को बदल दिया। इस योजना को पूरे देश में विस्तार हुआ और सितंबर 2019 तक इसने 8 करोड़ कनेक्शन का शुरुआती लक्ष्य हासिल कर लिया।
1: मोबाइल की दुनिया से बाहर आई है मंजरी जी,
2: देखिए
1: श्रोताओं की टिप्पणियों में खो गई है पता है।
2: ममता जी देखिए, उधर भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि हम जब उनके विषय जो संदेश लिखते हैं उनको भी हमें वहां से निकाल के लाना है अपने पास और आपको भी देना है, तो उधर उलझे हुए थे। लेकिन ऐसा नहीं है, मेरा दिमाग लगा हुआ है कि आज जो हम बात करने वाले हैं विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस के बारे में। तो देखिए, धरती पर जो हरियाली है उसकी सुंदरता को 4 चांद जो है वो हरियाली ही, पेड़ पौधे ही लगाते हैं, और इसके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम सभी को जो भोजन मिलता है या पानी, औषधियाँ, फल फूल, सब इन्हीं वृक्ष पेड़ पौधों के द्वारा ही तो मिलता है ना ममता जी।
1: बिल्कुल सही बात है, प्रकृति है तो हमारा वजूद है, इसके बिना जीवन कुछ है ही नहीं, अधूरा है। हमारे पूर्वजों ने जो प्रकृति को संरक्षण के लिए जो कोशिशें की है उसका ख्याल हमें भी रखना चाहिए। असंख्य जो पौधे उन्होंने लगाए हैं पेड़ के रूप में फलित हो रहे हैं, जो जैसे आम है, जामुन है और तरह तरह के पेड़ हैं, और खेतों में जो फसलें उन्होंने उगाई हैं और वो खेत अब आज भी लहलहाते हैं, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी बाग और खेत चले आ रहे हैं। लेकिन हमारी क्या भूमिका होती है उसे उपजाऊ बनाए रखने के लिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें भी अपने स्तर पर कोशिश करनी चाहिए। आधुनिकता की दौड़ में इस कदर हम भागे जा रहे हैं कि सोचते भी नहीं कि शहरों के नवीनीकरण से जो धरती है वो चोटिल हो रही है,

0: जंगलों में पेड़ की कटाई हो रही है, खेतों को शहरी विकास के चक्कर में खत्म किए जा रहे हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या छोड़ेंगे, ये आज ही सोचना होगा हमें, वरना जो धरती की उर्वरा क्षमता है वो
1: बिल्कुल
0: नष्ट हो जाएगी, बची नहीं
1: बिल्कुल
0: रहेगी।
1: बिल्कुल सही बात है। और जब क्या कहते हैं कि जब धरती जो उपजाऊ शक्ति खो देती है, तो उसमें ना भी आप पेड़ पौधे लगाने की सोचिए, उसमें से कुछ भी निकलता नहीं है, तो वो स्थिति बहुत हृदय विदारक हो जाती है। और जो प्रकृति है, तो हमारा वजूद भी उसी से है, क्योंकि उसके बिना जीवन बिल्कुल संभव नहीं है कहा जाए। और इस दिन की जो मनाने की शुरुआत है, वो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1994 में की थी, जब उसने मरुस्थलीकरण के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को अपनाया और इसलिए एक मुहिम चलाएगी। और विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस हर साल 17 जून को मनाने के विषय में सोचा गया था।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और इस दिन की घोषणा 30 जनवरी 1995 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी। उस दिन के बाद जब मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का मसौदा तैयार किया गया था, जिससे बंजर होती भूमि, भूमि के क्षरण और सूखे के वैश्विक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 1995 में से ये दिवस घोषित किया था। और तब से ये प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। और इसका उद्देश्य भी है कि हम उन जगहों को पर भी ध्यान दें जहाँ पर सूखा है, तो वहाँ पर पेड़ पौधे लगाने का सोचें, और साथ में वहाँ पर पानी हम कैसे उनको देंगे, इसकी भी व्यवस्था पूरी तरह से करनी चाहिए।
0: बिल्कुल। सूखा एक प्राकृतिक आपदा है, जिसमें किसी भी क्षेत्र में लंबे समय तक वर्षा अगर नहीं होती है तो वहाँ सूखा पड़ता है। कृषि, पशुपालन और जैविक विविधता और मानव जीवन पर बहुत सारे नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। लेकिन जो सूखे प्रदेश हैं, जहाँ पर हम अपने हाथ से जो हरियाली रोप सकते हैं, वो मुहिम हम चला सकते हैं।
1: बिल्कुल। और
0: किसी न
1: ममता जी,
0: किसी रूप
1: जो
0: में
1: जो हमारे जो खेत वगैरह होते हैं, उसमें खाद का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। जो प्रकृति के द्वारा जो बनाते हैं खाद, पत्ते गोबर वगैरह से डाल के जो खाद बनाई जाती है, उससे ज़्यादा अच्छा रहता है पेड़ पौधों को उगना। लेकिन उसकी जगह रासायनिक खाद का भी उपयोग करने लग गए हैं, तो कहीं ना कहीं तो उनकी पैदावार पर, फसलों पर असर तो पड़ता ही पड़ता है। और जैविक खेती को अगर अपनाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और साथ में वर्षा का जल, जब वर्षा बरसती पानी का मौसम आएगा, तो हमें जल संचय कैसे करना है, उसके लिए भी हमें सोचना चाहिए कि तालाब बनवाना है, कुएं हैं, बावड़ी, इस तरह की चीज़ों को हमें बनाना चाहिए।
0: पानी को बचाने के लिए और जल संरक्षण के लिए बहुत अच्छा उदाहरण होता है जब हम पहाड़ों की ओर जाते
1: जी
0: हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो ग्रामीण इलाके हैं, पहाड़ों पर जो छोटे छोटे गांव हैं, वहाँ पर ऐसा नहीं कि आपने स्विच ऑन किया और गीज़र चालू हो गया, स्विच ऑन किया पानी शुरू हो गया। तो वहाँ हमने देखा है कि टपरी बनी है, मान लीजिए छोटी छोटी चाय की दुकान है या कुछ समोसे बिक रहे हैं, बन रहे हैं, छोटी सी टपरी बनी हुई है, तो टपरी के नीचे बड़े बड़े बकेट रख दिए जाते हैं, बाल्टियाँ या ड्रम। तो जब बारिश होती है, क्योंकि पहाड़ों पर तो बारिश बहुत ज़्यादा होती है, और कब होती है ये बिल्कुल तय नहीं होता, अचानक बारिश, अचानक धूप हो जाती है, तो वो लगा रहता है, बाल्टी रखी रहती है, बारिश हुई तो वो जो बारिश का पानी है उस बाल्टी में इकट्ठा होता है। तो हमने कई बार पूछा भी लोगों से, तो उनका यही कहना है कि ये पानी हम इकट्ठा करके बाकायदा इसका उपयोग करते हैं, और पानी एकदम स्वच्छ होता है, क्योंकि उधर पहाड़ों की ओर गंदगी कम होती है, तो ना के बराबर होती है, जो एकदम जहाँ पर लोगों की पहुंच नहीं है वहां तो बिल्कुल नहीं, कूड़ा कचरा दिखाई देता है। तो ये सब हम अपने घर आंगन में भी कर सकते हैं, जो आंगन वाले घर हैं वहां हम कर सकते हैं।
1: अपने आप याद कीजिए कि हम लोग के घरों में भी ये चीज होती थी कि बारिश के पानी के लिए, मतलब अपना लगा दी बाल्टी वगैरह रख दी, और बारिश का पानी इकट्ठा कर रहे हैं, कहीं छत से वो आ रहा है पानी उस जगह से, ढलान से, तो वहां इकट्ठा कर रहे हैं, तो वो बर्तन धोने, फर्श धोने, इन सब के काम बहुत
0: बचपन में
1: था।
0: तो खेल खेल में भी पानी इकट्ठा किया जाता था, छोटे छोटे बर्तन रख दिए जाते थे, देखते हैं किसके बर्तन में पानी ज्यादा इकट्ठा होता है, और ये कहा जाता था कि बादल हम पर ज्यादा मेहरबान है, पानी हमारे तसले में ज्यादा भर गया,
1: और हम बच्चे तो छाता उल्टा कर देते थे।
0: तो ये जो खेल खेल में पानी इकट्ठा करने की आदत है, ये आने वाली पीढ़ी को भी सिखाना चाहिए कि पानी का उपयोग किस तरह से करें। बहुत सारे लोग हैं कि नल खोल देते हैं, क्या नल खोल दिया तो पानी बह रहा है, तो जब धरती जहाँ बंजर होती है, धरती जहाँ जहाँ पर हरियाली नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, जो सूखा है, वहाँ उनसे पूछिए कि क्या अहमियत है
1: बिल्कुल
0: हरियाली की और पानी की।
1: बिल्कुल। और इन सब चीज़ों के पीछे हम लोग ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम लोग घर बनाते जा रहे हैं, बिल्डिंग बनाते जा रहे हैं, खेतों को नष्ट करते जा रहे हैं, वनों को काटते जा रहे हैं, पेड़ों को काटते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग भी बहुत
0: अभी
1: जिम्मेदार
0: अभी
1: हैं।
0: आपने कहा कि खाद की बात कही थी ना
1: जी जी
0: मंजरी
1: जी
0: जी, कि जैविक खाद और रासायनिक खाद भी इकट्ठा करें। अभी अभी हेलो फरमाइश में,
1: जी
0: हेलो फरमाइश प्रोग्राम में एक श्रोता ने हमें बताया कि वो लोग गोबर से खाद बनाते हैं, मतलब गोबर एक गड्ढा बनाते हैं जहाँ पर गाय भैंस के गोबर इकट्ठा करते हैं, और ये गांव में होता है
1: होता ही
0: अमूमन।
1: होता ही
0: तो
1: जी
0: वो अपना अनुभव बता रहे थे कि वो इकट्ठा करते हैं और उसे ले जाकर खेतों में डालते हैं, और ये कॉल एक महिला का था।
1: जी
0: तो अब ये कृषक महिला भी हो रही हैं, ये भी बहुत अच्छी बात
1: बहुत
0: है।
1: अच्छी बात है।
0: और अब बहुत अच्छी बात ये होगी कि हमें गाना सुनवा दे अपने
1: जी
0: श्रोताओं को।

0: मंजरी जी, साड़ियों के संसार पर चर्चा हो रही है इन दिनों, और एक सेगमेंट है बाकायदा सखी सहेली में, तो आज हम चर्चा करेंगे। साड़ी वैसे भी पारंपरिक पोशाक है, और जब भी कहीं कोई फंक्शन होता है, कहीं घूमने जाना होता है, तो कौन सी वाली साड़ी पहनी जाए, बहुत पहले से चयन किया जाता है, साड़ियों का बक्सा खुल जाता है। आप क्या
1: खुल
0: करती
1: जाता
0: हैं?
1: है, मेरा भी खुल जाता है और उसमें देखते हैं तरह तरह की साड़ियाँ देखते हैं, लेकिन कहते हैं ना जैसा मौसम होता है उस हिसाब से साड़ी पहनने का मन करता है। तो अगर जैसे बारिश का मौसम होगा तो लगेगा कि भाई हरा भरा मौसम रहता है, तो लगेगा कि भाई ऐसी साड़ी पहने जिसमें कलर बहुत चटक रंग हो। तो ध्यान तो मेरा तो सीधा इसी पर चला जाता है कि बांधनी की साड़ी, लहरिया की साड़ी, बंधेज वाली साड़ी पहना जाए। तो उनका पहनने का एक अपना अलग मज़ा होता है। और जैसे आजकल गर्मी का मौसम है तो इस समय बस याद आता है कि हल्के कलर पहने, आसमानी, गुलाबी और क्या कहते हैं हल्का हरा धानी कलर पहने, और वो सूती साड़ियाँ हों जो बहुत अच्छी लगे। और सूती साड़ी पर अगर बांधनी का काम हो तो बहुत ही अच्छा लगता है, फिर तो लगेगा ये भी पहन लेते हैं, है ना।
0: सही बात है।
1: तो जो कहते हैं ना ममता जी, बांधनी जो साड़ी है इसका जो इतिहास है वो बहुत ही पुराना है, प्राचीन काल से इसका समझ लीजिए चला आ रहा है। और बांधनी जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द है, बंध से लिया गया है, और बांधनी या बंधेज भी इसको कहा जाता है। साड़ियाँ ये जो है मुख्य रूप से भारत के गुजरात में जामनगर और वहाँ पर कच्छ, भुज और अहमदाबाद में बांधनी के सबसे बड़े और प्रमुख केंद्र हैं। और वहीं राजस्थान में भी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और सीकर अपने बेहतरीन कामों के लिए, बंधेज के कामों के लिए, बांधनी साड़ी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और जब हम वहाँ जाते हैं तो देखते हैं दुकानों पर इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ टंगी रहती हैं, और साथ में जो महिलाओं को हम देखते हैं विशेष त्योहारों पर, तो वो उनके जो रंग होते हैं बांधनी साड़ियों के तो बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही बारीकी तरीके से बांधा जाता है। और इन साड़ियों को ममता जी टाई डाई तकनीक के से हाथों के द्वारा धागों से बांधकर बनाया जाता है, और जिसके रंगकार जो हैं बेहद आकर्षक डिज़ाइन तैयार करते हैं, और बिल्कुल हाथ से और पतला पतला करके बांधा जाता है। कई लोग चने बांधते हैं, कई लोग दाल बांधते हैं, कोई छोटे छोटे पत्थर भी बांधते हैं उसमें डिज़ाइन अलग अलग तरह से देने के लिए।
0: मतलब
1: तो
0: काफी मेहनत लगती है,
1: मेहनत
0: और समय
1: लगती
0: भी
1: है,
0: लगता है, ऊर्जा भी लगती है। बांधनी बनाने की प्रक्रिया बड़ी मेहनत वाली होती है। सबसे पहले साड़ी के लिए कपड़ा चुना जाता है, और कपड़े पर हल्के निशान बनाए जाते हैं ताकि डिज़ाइन बिल्कुल सटीक बने। कारीगर कपड़े की छोटी छोटी पोटलियाँ बना लेते हैं, उन्हें धागे से कसकर बांधते हैं। अब कपड़ों को रंगों में इसके बाद डुबोया जाता है। कई बार तो अलग अलग रंगों के लिए ये प्रक्रिया दोहराई जाती है। रंग सूखने के बाद धागे खोले जाते हैं और सुंदर गोल, लहरदार या फूल जैसे डिज़ाइन दिखाई देते हैं।
1: बिल्कुल। और बांधनी साड़ी जो है वो कई प्रकार के कपड़ों पर बनाई जाती है, जैसे कि रेशम से आपको दिखेगी, जारजेट, कॉटन, मलमल से भी बनाया जाता है, शिफॉन, क्रेप और सिल्क पर भी बांधनी का काम होता है। और राजस्थान में बांधनी में पारंपरिक राजस्थानी रंग और बड़े पैटर्न देखने को मिलते हैं, जबकि गुजरात में बंधेज में बारीक डिज़ाइन और चमकीले रंग खास माने जाते हैं। और ये बांधनी साड़ी विभिन्न रंगों और प्रिंटों में आती है, और खोम्बी, पटोरी, घरचोला और चंद्रोखानी, इसके अलावा ये काम साड़ी, कुर्ता, सलवार कमीज और चनिया चोली में भी पाया जा सकता है। यानी कि अब इसका जो काम है, इसका वर्क है, बहुत तरीके से बढ़ गया है, हर तरीके के, उसमें कांच से भी, सितारों से भी काम होगा और जरी के भी गोटे लगे रहते हैं, तो बहुत खूबसूरत बना दी जाती है इन साड़ियों को।
0: गुजराती बांधनी रेशम या कपास से बनी इस शैली में मोर होते हैं, फूल और हाथी जैसे आकर्षक पैटर्न बनाए जाते हैं। ये नवरात्रि और शादियों के दौरान बहुत ही लोकप्रिय होते हैं। और राजस्थानी बांधनी में जैसे कि बड़े चटक लाल, पीला रंग, लहरिया और जैसे चक्करदार रूपांकन होता है, मोथरा जिसे कहते हैं, ये ख़ास पहचान
1: जी,
0: है राजस्थानी बांधनी की।
1: बिल्कुल।
0: और बाकी राजस्थानी बांधनी या गुजराती बांधनी के और जो प्रकार हैं, और जो हमारे जो राजस्थान और गुजरात के श्रोता हैं वो भी बता सकते हैं कि
1: बिल्कुल।
0: क्या खासियत है साड़ियों की। भुज में ख़ास तरह की बांधनी होती है। कच्छ के आदिवासी आकृतियाँ आमतौर पर काले और लाल रंग में, जिनमें बारीक ज्यामितीय बिंदु होते हैं। मॉडर्न बांधनी समकालीन सौंदर्य बोध के लिए डिजिटल प्रिंट के इस्तेमाल किए जाते हैं, और पेस्टल रंगों का उपयोग भी किया जाता है, और कुछ
1: बिल्कुल
0: फ्यूजन डिज़ाइन भी बनाई जाती है।
1: जी। और हमारे साथी भी लिखते हैं कि बांधनी साड़ी प्रमुख रूप से राजस्थान और गुजरात में पहनी जाती है, और उसका डिज़ाइन बहुत ही सुंदर होता है, इसको बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और साथ में हमारे साथी और भी लिख रहे हैं कि बांधनी साड़ी भारत की सबसे प्राचीन और जीवंत टाई डाई वस्त्र कलाओं में से एक है और मुख्य रूप से गुजरात और राजस्थान राज्यों में बहुत प्रचलित है। और बिंदियाँ बहुत बारीक होती हैं और चटक रंग की होती हैं, तो इसका जो है सांस्कृतिक महत्व भी है, त्यौहार उत्सव पर भी खूब पहनी जाती हैं।
0: और इन साड़ियों के साथ चूड़ी का भी कॉम्बिनेशन होता है,
1: बिल्कुल साज श्रृंगार तो बहुत ज़रूरी है।
0: और उसी रंग की अगर चूड़ी पहन ली जाए तो फिर और लुक एकदम अलग आ जाता है। अब ये बात तो ये इस गाने के साथ हम जोड़ रहे हैं, तो सुनते हैं ये गाना हरे कांच की चूड़ियाँ, फिल्म का नाम है

0: विविध भारती पर यह है कार्यक्रम सखी सहेली।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने

0: उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
0: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
2: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती पर इस समय सखियां सहेलियां और सखा सुन रहे हैं सखी सहेली कार्यक्रम
5: जी।
4: और बात अब डायरी की चल पड़ी है।
5: बिल्कुल,
4: डायरी लिखना एक कला भी है और डायरी लिखने से तनाव दूर हो जाता है, मन हल्का हो जाता है और एक फायदा और होता है कि कई बरस बाद, जैसे मान लीजिए आज आपने कोई बात लिखी डायरी में, अब से 20 साल बाद आपकी आने वाली पीढ़ी उसे देखेगी पढ़ेगी तो आज क्या क्या हुआ वो जानेगी, और क्या माहौल था घर का, माँ डायरी लिख रही, पिता डायरी लिख रहे हैं तो बच्चे सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो तो वो एक जानकारी मिलती है और एक अलग अनुभव होता है।
5: बिल्कुल,
4: है ना।
5: बिल्कुल, डायरी जो लिखने की आदत है उसमें बहुत सारी बातें आपके जीवन की आ जाती हैं। उस वर्ष आपने, उस महीने आपने क्या चीज फेस करी अपने जीवन में, सुख दुख सब, हंसी खुशी सब कुछ उसमें रहता है।
4: सूखा पड़ा, बारिश हुई बहुत ज्यादा,
5: बिल्कुल,
4: और बहुत खुशगवार दिन था, शादी ब्याह, दुनिया भर की बातें आ जाती हैं। अब हमारी एक सखी है जिन्होंने एक बात लिखी है, लिखा है कि 10वीं क्लास पास करते ही मुझे भी डायरी लिखने का खूब शौक चढ़ा था। एक युवा लड़की की डायरी में जो जो लिखा जा सकता था वो सब मैं रोज लिखती थी। जैसे कि आज शाम गजब की बारिश हुई, कल रात मेरे कमरे में घुप अंधेरा, एकाएक जानी पहचानी खुशबू मेरे चारों तरफ फैल गई, मेरी आंखों में चमक सी जागी। स्कूल जाते समय एक लड़का रोज मेरा पीछा करता है, कल तक जो बेरंग था आज सब कुछ रंग बिरंगा लग रहा है। मेरे मन में एक कविता आकार ले रही है मगर शब्द साथ नहीं दे रहे। फिर मैंने कविता के ख्याल को झटक दिया। चाहतों से भरी जिंदगी में डायरी अपनी किसी सहेली की तरह होती है और जब हकीकत के थपेड़े पड़ते हैं तो डायरी लिखने में बड़ा सुकून मिलता है। डायरी में फिल्मी गीत भी बहुत लिखे हैं पर अब डायरी नहीं लिखती। भाई क्यों नहीं लिखती है?
5: जो लिखा है उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है, मैं तो उसी में डूब गई थी।
4: अब सवाल ये है कि क्यों नहीं लिखती है?
5: लिखना चाहिए,
4: लिखना चाहिए। बिल्कुल, हाँ ये जरूर है कि अगर कागज कलम साथ में नहीं होता है तो आपके पास बड़ा अच्छा यंत्र है, मोबाइल यंत्र। आप कहीं बाहर है, रस्ते में जा रहे हैं, ट्रेन में है, विमान में है, या फिर कार में, गाड़ी में, बस में, ऑटो रिक्शा में, तो वहाँ भी आप डायरी लिख सकते हैं, बोल के टाइप करने की भी सुविधा है। तो
5: जी बिल्कुल। अरे हमारे साथी लिखते हैं कि डायरी लिखना अच्छा भी है और कुछ हद तक नहीं भी अच्छा, इसलिए कि दिन भर की अच्छी बुरी बातों को लिख कर रख देना और मन को हल्का कर लेना। 6 महीने पहले का पन्ना पलटो तो लगता है उस समय की यही बात कितनी बुरी लगती थी कि, लेकिन समय की धूल ने उस पर पर्दा डाल दिया। डायरी लिखने से यादें जिंदा रहती हैं, बच्चे की पहली हंसी से लेकर पिता की आखिरी नसीहत मानो सब कुछ कह रही हो। लेकिन यही आदत तब बुरी बन जब डायरी में सिर्फ दुख, नफरत और शिकायतें लिखते रहो, तो यही डायरी जिंदगी को दलदल बना देती है। वाकई सही बात आपने कहा है, और व्यक्ति उसी में धंसता चला जाता है। इसलिए हर दिन जैसा व्यक्ति व्यतीत होता है उसको स्वीकार करो और डायरी में लिखो, लेकिन इतना ध्यान रहे कि जब भी पिछले पन्ने पलटो तो अच्छे और बुरे दोनों तरह के दिनों को बराबर सम्मान दो। उन पन्नों में सिर्फ सुख के ही पन्नों को महत्व ना दो। मुझे डायरी लिखने की आदत है पर व्यक्तिगत जीवन पर नहीं।

0: सिर्फ अपनी कृषि भूमि में किस सीजन में कौन सी फसल बोई थी उसकी और शाप की हर दिन के आय और व्यय का हिसाब भी लिखते
1: कहा
0: हैं।
1: जाता है कि डायरी और संस्मरण ईमानदारी से लिखा जाता
0: बहुत
1: है,
0: ईमानदारी से इनकी लिखी है
1: और
0: बात
1: उसमें डायरी में
0: जी,
1: जो भी बात लिखे सच लिखे,
0: बिल्कुल
1: क्योंकि झूठ लिखने का कोई मतलब नहीं होता।
0: नहीं।
1: कुछ लोग डायरी भी आत्मश्लाघा में लीन होकर लिखते हैं पर अपनी तारीफ, तो उससे कोई मतलब नहीं होता।
0: बिल्कुल नहीं होता
1: सच
0: है,
1: को सच की तरह लिखें, झूठ को झूठ लिखें कि ये गलत था,
0: तभी तो
1: तो
0: उस समय
1: तभी
0: का पता
1: उसका
0: चलेगा कि
1: अर्थ होता
0: आपने
1: है।
0: जीवन में क्या
1: हाँ,
0: बिताया। तो
1: अब हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मेरे नाना जी को डायरी लिखने का बड़ा शौक था। एक बार उनकी सीट पर बैठा तो उनकी डायरी हाथ आ गई। मैंने खोल कर देखी तो जो पढ़ा वो सच में गजब ही था। नाना जी का स्वतंत्रता संग्राम में जेल के दिन, उनके साथियों के साथ क्रांति के दिन, मैं तो एक्साइटेड हो गया था। और खोजा तो वो डायरी भी मिली जिसमें मेरी माँ की शादी के बारे में भी पूर्ण ब्यौरा लिखा गया था। उसे पढ़ा तो लगा जैसे मैं उन दिनों के लम्हों को जी रहा था। सच में डायरी लिखना बहुत बड़ी बात है, वर्षों बाद भी आपके पुराने दिन जीवित रहते हैं। आजकल जो मोबाइल में नोटपैड पर लिखना डायरी का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि मोबाइल 5-7 साल में बदलना ही पड़ता है, जबकि डायरी आपके साथ है तो उसके बाद भी रहती है। बिल्कुल सही है, डायरी का तो कोई मुकाबला नहीं है,
0: बिल्कुल,
1: कागज़ और पन्नों का कोई मुकाबला नहीं है। वो कलम से जो बैठ के लिखते हैं
0: उसका अपना
1: तो
0: ही मजा
1: जो
0: है
1: हौले हौले जज्बात
0: जी।
1: निखर के आते हैं, कागज़ पर चमकते हैं, तो वो बात निराली होती है। लेकिन न से तो बेहतर है कुछ, तो इसलिए कि अगर आप लिखते ही नहीं तो कम से कम मोबाइल के नोटपैड पर लिख सकते हैं,
0: बिल्कुल, और हमारी
1: और
0: जी
1: डायरी अगर लिखने की आदत है तो बहुत अच्छी बात है।
0: बिल्कुल। और देखिए हमारी साथी लिखते हैं कि डायरी लिखना मैंने 8th क्लास से शुरू किया था। मुझे क्लास और घर की दिन भर की सभी घटनाओं को रोज़ लिखा करती थी और आज भी कायम है। सोने से पहले डायरी लिखकर बड़ा सुकून मिलता है। बहुत अच्छी सी बात इन्होंने लिखी है और मुझे लगता है कि आपको भी डायरी लिखने का शौक है
1: भाई, अगर डायरी लिखने से कई बार लिखने की ताकत मिलती है,
0: जी
1: प्रेरणा मिलती है, तो इसलिए हम सबको डायरी लिखनी चाहिए,
0: बिल्कुल,
1: हमें आपको भी लिखनी चाहिए।
0: नहीं लिखते
1: फिलहाल
0: जी
1: गाना सुनना
0: जी
1: चाहिए।
0: जो

0: लिखे जो खत तुझे, खत लिखना भी एक आदत है और आजकल खत लिखने का चलन भी खत्म हो रहा है, तो उसे भी जिंदा रखना चाहिए। इसीलिए विविध भारती ने जिंदा रखने के लिए शुरुआत की है मन चाहे गीत की। मन चाहे गीत कार्यक्रम में फिर से चिट्ठियां आनी शुरू हो गई और एक दो नहीं बहुत ढेर सारी चिट्ठियां आनी शुरू हो गई हैं और अब फिर वही स्थिति हो गई कि कौन सी वाली चिट्ठी ले पहले, कौन सी वाली बाद में ले, तो बस वो आँख मूंद के उठाने वाली नौबत आ
1: गई। पड़ेगा
0: तो हमें चिट्ठियों से प्यार होता है, इससे ये जाहिर है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि डायरी लिखना मुझे बहुत पसंद है, जब हम पन्ने पलट कर पढ़ते हैं तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। डायरी के अंदर मैंने कुछ पुराने पत्रों को भी संजो कर रखा है, उसे पढ़कर भी बहुत अच्छा लगता है। डायरी तो ज़रूर लिखनी चाहिए, मन में नए विचार भावनाएं जागृत होती हैं, दुख लिख देने से वो कम होने लगता है। डायरी हमारी मित्र है जो हमारे राज किसी से नहीं कहती है और हम पूरे विश्वास के साथ उसे अपनी सारी बातें कह देते हैं। लेकिन कई बार अपनी प्रेम कहानी जब लिखते हैं और छुपाते हैं तो वो जब उजागर होता है तो फिर वो दोस्त नहीं रह जाती है डायरी।
1: देखिए ममता जी, एक ऐसा भी उस समय भी ऐसा चला था, भाई लिखते तो थे ही डायरी सब लोग, लेकिन उसमें भी अपने दिल की बातें लिखते थे प्यार भरी।
0: आपने लिखी कभी?
1: तो ये बात तो बताइए नहीं जा सकती है क्योंकि ये बात को रहने
0: उजागर राज को राज रहने दो, बिल्कुल
1: राज ही रहने देते हैं। तो लेकिन हम वो ये कह रहे थे ममता जी कि जो उस समय भी डायरियां बड़ी डिजाइनर डायरियां आती थी और कुछ डायरियां ऐसी आती थी ममता जी उसमें लॉक होता था, तो मैंने खुद देखा है कि वो लॉक वाली रहती थी, उसमें वो स्पेशल खास
0: वो अभी भी आती है।
1: हाँ,
0: बस शौक होना चाहिए डायरी खरीदने का, डायरी लिखने का और डायरी तोहफे में देने का भी एक अलग मजा है।
1: सोचते हैं यही हम आपको दे देते हैं, आप मुझे दे दो। फिलहाल तो हम कमेंट्स पढ़ लेते हैं, है ना?
0: बिल्कुल।
1: तो एक साथी लिखते हैं कि मुझे डायरी लिखने का शौक है। कोई आवश्यक कार्य नोट करता हूँ। 2005 में हमारे पूरे परिवार करीब 45 लोग और सहायक बस चलाने वाला रसोई मैनेजमेंट 6 लोग कुल 50 व्यक्ति ने बद्रीनाथ तक का 21 दिनों का प्रवास किया था। उनका सभी वर्णन मैंने लिखा हुआ है। आज भी कभी डायरी देखता हूँ और पढ़ता हूँ तो पूरा प्रवास के स्थलों, कहाँ रुके, भोजन का मेनू सभी विवरण पढ़ते हैं तो नजर समक्ष पूरा प्रवास याद ताजा हो जाती है। बिल्कुल सही लिखा है आपने।
0: और एक श्रोता ने लिखा है कि आपका मन हल्का होता है एक तो डायरी लिखने से। वैसे मैं लिखती हूँ कुछ लेन देन की बातें, कुछ वैसी बातें जो मुझे याद रखनी चाहिए, यानी मैं पेन ज़रूर उठाती हूँ। आजकल स्लेट और पेंसिल पर सुरीला सफ़र के इबारत पढ़कर गाने और क्या कुछ कहना है लिखती हूँ। क्या बात है भाई, जब मैं लिखती रहती हूँ तो मेरी हेल्पर आ जाती है तो पूछती है कि चाची अब आप क्या पढ़ती रहती हैं, लिखती रहती हैं, तो मैं हंस के कह देती हूँ बस ऐसे ही कुछ कुछ बातें लिखते हैं और फिर मिटा देते हैं। और ये जो लिखी है कि लेन देन की बातें लिखते हैं, अभी भी बहुत सारे हमारे घर के बड़े बुज़ुर्ग हैं जो बाकायदा कागज़ कलम लेकर जो घर की ज़रूरी चीज़ें हैं उसकी लिस्ट बनाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और उस लिस्ट को देते हैं अपने बच्चों को कि ले जाओ ये सामान लेकर आओ। हम अमूमन क्या होता है कि सीधे स्टोर में जाते हैं या मॉल में जाते हैं और चीज़ें दिखती हैं, सामान रखते जाते हैं, भरते जाते हैं, कई बार अनावश्यक चीज़ें आ जाती हैं।
1: हमें याद है ममता जी, जो आपने बुज़ुर्गों की बात की आदत बताई है, तो वो लोग इसलिए भी लिखते थे कि महीने में हमने कितना खर्च किया, अगले महीने हमें कहाँ पे कटौती करनी है, तो वो एक पूरा बजट बना के चलते थे। तो हमने भी अपने बड़ों से यही सीखा है, तो वो डायरी उस तरह का हम भी नोट बनाते हैं घर पे कि हम अगले महीने किस चीज़ को माइनस करते हैं, तो एक बजट बना के जब चलते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है और गृहस्थी में तो बहुत ज़रूरी होता है।
0: पढ़ाई की बातें और गानों की बातें, संगीत की बातें और तो और संगीत सरिता जो प्रोग्राम प्रसारित होता है आज भी, हम जब छोटे थे सुनते थे तो अपनी डायरी में संगीत सरिता से जुड़ी जो बातें होती, जानकारियाँ, वो डायरी में नोट करते थे और उन जानकारियों के आधार पर अपनी बातें लिखा करते थे।
1: क्या बहुत तो अच्छी
0: ये हम सबकी आदत में शुमार है ये सब डायरी लिखना, लेकिन अब कहीं विलुप्त हो रहा है ये चलन।
1: बिल्कुल। लेकिन हमारे साथी लिख रहे हैं कि डायरी लिखना एक बहुत अच्छी उपयोगी आदत है, ये हम अपने दैनिक अनुभव, विचारों और भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करने का अवसर देती है। डायरी लिखने से आत्मचिंतन की क्षमता बढ़ती है और हम अपनी गलतियों तथा उपलब्धियों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। ये हमारी लेखन कला को भी निखारती है और स्मरण शक्ति को मजबूत बनाती है। कई वर्षों बाद जब हम अपनी पुरानी डायरी पढ़ते हैं तो जीवन के अनेक यादगार पल फिर से ताज़ा हो जाते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को नियमित रूप से डायरी लिखने की आदत को अपना

0: छाया फिल्म का ये गाना था और डायरी लिखने पर हमारे श्रोता बहुत सारे टिप्पणियां लिख रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि अगर डायरी लिखने की बात है तो महात्मा गांधी जी के जो सचिव हैं उनको कैसे भुला सकते हैं। उन्होंने साल 1917 से 1942 तक नियमित रूप से डायरी लिखी थी, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम और गांधी जी के जीवन का सबसे प्रामाणिक ऐतिहासिक दस्तावेज दर्ज है।
1: क्या बात है। और हमारे साथी लिखते हैं कि एक ज़माना था, मुझे भी डायरी लिखने की आदत थी, जो मेरे ससुर जी से प्रेरणा मिली थी। अब तो डायरी लिखना छोड़ दिया है, भले ही अब डायरी लिखना छूट गया है, लेकिन वो शौक आज भी दिल के किसी कोने में एक मीठी सी याद बनकर जिंदा है। डायरी लिखना छोड़ देने से शायद हम अपनी रोज़ की बातें दर्ज करना भूल गए हों, लेकिन ये वो आदत हमें अपने विचारों को गहराई से समझना सिखा गई है।
0: मंजरी जी, एक हमारे श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि डायरी लिखने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरे पतिदेव डायरी लिखते थे जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने उन्हें बहुत पसंद था डायरी लिखना। आज जयपुर में वो नहीं हैं, उनके न रहने पर जब मैं डायरी उठाकर देखती हूँ तो एक एक दिन का हाल दर्ज है। जब हम लोगों की लव स्टोरी चलती थी तब से लेकर जब बच्चे हुए, घर की कोई बात हमेशा उसमें दर्ज है, जो पढ़कर ऐसा लगता है कि पुराने सालों में ज़िंदगी पहुँच गई है। वाकई बहुत अच्छी आदत है डायरी लिखना।
1: बिल्कुल। और हमारे जो और साथी हैं तो हम लोग सोचते

0: कि अगले विषय की ओर हम बढ़ते हैं। हमारा जो हमने शब्द दिया था
1: प्रोत्साहन,
0: प्रोत्साहन,
1: डायरी लिखने के लिए एक तरह का प्रोत्साहन था आज।
0: प्रोत्साहन भी था ये, और हमने प्रोत्साहन लिया है। तो ममता जी, प्रोत्साहन वो शक्ति है जो किसी व्यक्ति को आगे बढ़ने, बेहतर करने और कठिन परिस्थितियों में भी हार ना मानने की प्रेरणा देती है। जीवन में हर व्यक्ति कभी ना कभी निराश, असफलता और कठिनाइयों का सामना करता है, और ऐसे में यदि हम किसी का उत्साह बढ़ाने वाले शब्द, सहयोग या विश्वास मिल जाए, तो वही प्रोत्साहन उसके लिए एक नई ऊर्जा बन जाता है।
1: बिल्कुल। अब प्रोत्साहन हमने डायरी के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन हमारी एक सखी
0: जी
1: है जिन्होंने लिखा है कि मैंने डायरी लिखनी चाहिए पर जब उसको उठाओ पढ़ो तो पुरानी यादें जिंदा हो जाती हैं, तो दुख कुरेद जाता है, तो मैंने छोड़ दिया। आज भी कभी मन होता है तो लिखने बैठ जाती हूँ, बस अपने भाव सहज लेती हूँ। ये तो दोनों
0: दोनों
1: सकारात्मक
0: चीजें
1: नकारात्मक दो
0: जी
1: पहलू होते हैं। तो आपके दुख, अगर दुख को पलटेंगे बार बार तो वो तो आपके मन में भी वो घाव ही पैदा करेगा।
0: बिल्कुल सही बात है। तो कुछ अच्छी बातें भी सोच के आप लिखना शुरू कर दीजिए, है ना। तो हम लोग बात कर रहे थे कि प्रोत्साहन, तो हमारे साथी भी लिख रहे हैं देखिए प्रोत्साहन पर, कि प्रोत्साहन वो शक्ति है जो किसी व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास और उत्साह का संचार करती है। जब कोई हमारा हौसला बढ़ाता है तो कठिन से कठिन कार्य भी आसान लगने लगते हैं, और एक छोटा सा प्रशंसा का शब्द या विश्वास भरा साथ किसी के जीवन की दिशा भी बदल सकता है, हमारे साथी लिख रहे हैं। और प्रोत्साहन जो है वो केवल बड़े कार्यों के लिए आवश्यक नहीं होता है ममता जी, बल्कि छोटे छोटे प्रयासों में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक बच्चे को पढ़ाई के लिए, खिलाड़ी को जीत के लिए, और कलाकार को अपनी कला के लिए, और कर्मचारी को बेहतर कार्य करने के लिए प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। और जब किसी व्यक्ति के कार्य की सराहना की जाती है तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वो अधिक मेहनत करने के लिए भी प्रेरित होता है। जैसे कि हम लोग करते हैं प्रोग्राम, तो अगर हमारी प्रशंसा होती है या प्रोत्साहन दिया जाता है कि इसको और अच्छे से करो, उत्साह बढ़ता है, तो लगता है कि नहीं, अगली बार हम और अच्छा करेंगे। तो
1: बिल्कुल,
0: ये चीज़ हर के साथ होती है।
1: प्रोत्साहन बहुत ज़रूरी है। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रोत्साहन सफलता की ओर बढ़ने का महत्वपूर्ण साधन है। ये व्यक्ति के मनोबल को मजबूत करता है और उसे अपने सपनों को साकार करने की प्रेरणा भी देता है। इसीलिए हमें सकारात्मक रहना चाहिए और दूसरों को प्रोत्साहित करना चाहिए। कई बार तो लोग बहुत अच्छे काम में भी कुछ न कुछ मीन मेक निकाल ही देते हैं
0: जी
1: कि अरे इसमें ये कमी रह गई, तो वो सही चीज़ बताने की, सही गलती की ओर इशारा करना अच्छी बात है, आपकी सही निंदा करना अच्छी बात है, लेकिन अनावश्यक रूप से मीन मेक निकालना ठीक नहीं होता है, बल्कि काम को प्रोत्साहित करना चाहिए।
0: बिल्कुल। और हमारे साथी लिखते हैं कि प्रोत्साहन एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा है जो किसी व्यक्ति के सोए हुए आत्मविश्वास को जगाकर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करती है। ये केवल शब्दों का समूह नहीं बल्कि प्रेरणा का वह पुंज है जो कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने का संबल देता है।
1: और हमारे एक श्रोता ने ये बात लिखी है कि बच्चों को प्रोत्साहन देने का सबसे अच्छा तरीका है उनकी छोटी छोटी सफलताओं की भी सराहना की जाए। जब बच्चे कोई अच्छा कार्य करें, मेहनत करें, नई चीज़ सीखने का प्रयास करें तो उनकी प्रशंसा करें, उन्हें ये विश्वास दिलाएं कि गलतियाँ सीखने का एक हिस्सा है और निरंतर प्रयास से सफलता प्राप्त की जा सकती है। माता पिता और शिक्षक बच्चों की बात ध्यान से सुने, उन्हें प्यार और सम्मान दें और उनकी रुचियों को आगे बढ़ाने में सहयोग दें। इसीलिए तो स्कूल कॉलेज में पुरस्कार की
0: जी
1: व्यवस्था की जाती है ना कि
0: बच्चों का
1: आप
0: उत्साह बढ़ जाता है उस तरह
1: जी।
0: से। और हमारे एक साथी लिखते हैं, पौधों को और खेत में पानी देने से प्रोत्साहन मिलता है, वो फूलता फलता है। जी हाँ, प्रोत्साहन यानी एक स्फूर्ति, पुरस्कार या उत्साह भरे शब्दों में शाबाशी देना, जो किसी व्यक्ति या समूह को खास काम करने या व्यवहार में कार्यक्षम और सकारात्मक बनने में प्रेरित करती है। याद रखें, पौधों को उतना ही खाद पानी दे जितना ज़रूरी है, अधिक मात्रा से वो मुरझा जाता है। अत्यधिक प्रोत्साहन से काम बिगड़ने की संभावना रहती है। बहुत गुड़ बात इन्होंने अच्छी बात लिख कर भेजी है। और हमारे एक साथी और लिखते हैं कि प्रोत्साहन सफलता की ओर बढ़ने का एक महत्वपूर्ण साधन है, ये व्यक्ति के मनोबल को मजबूत करता है और उसे सपनों को साकार करने के लिए प्रेरणा देता है। इसलिए हमें सकारात्मक रहना चाहिए, दूसरों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए।
1: और अब देखिए, डायरी लिखने के लिए भी एक टिप्पणी हमारे श्रोता ने लिखी है कि बचपन में दी डायरी, आप सबने पूछा कि कोई ऐसी डायरी भी पढ़ी है, तो लिखा है कि बचपन में दी डायरी ऑफ यंग गर्ल पढ़ी थी, जो एक किशोर वय बच्ची एनी फ्रैंक द्वारा लिखित बहुत मार्मिक अभिव्यक्ति है। वे एक यहूदी थी और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नीदरलैंड पर जर्मनी के कब्जे के समय अपने परिवार के साथ छिप कर रही थी। उन बिताए समय का वृत्तांत उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है। तो डायरी किस तरह से
0: जी
1: महत्वपूर्ण हो जाता है कई बार, और एक लंबा दस्तावेज होता है। अब प्रोग्राम के आखिर में सुनते हैं ये गाना।

0: मॉडर्न गर्ल फिल्म का गाना सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाज़ें थी। और अब बिल्कुल भी वक्त नहीं कि गाना सुनवाएं या कुछ बोलें बतियाएं, तो लेते हैं सभी श्रोताओं से इजाज़त। आप सभी को ममता सिंह
1: और मंजरी वर्मा का
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक,
2: सखी सहेली।

0: दोस्तों, आज हमारे मेहमान हैं फिल्म अभिनेता विजय राज। आपसे बातचीत की है कमल शर्मा ने।
1: विजय भाई, बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के इस कार्यक्रम में आपका। नमस्कार।
2: नमस्कार। मैं बता नहीं सकता मुझे कितना अच्छा लग रहा है, क्योंकि रेडियो एक ऐसी चीज़ रही है बचपन से, कहीं आपके भीतर कुछ पैदा कर देता है। वो लगता है जैसे कि आप ही के भीतर से कोई आवाज़ आ रही है, और मैं यहाँ पे हूँ, मैं पहली बार आया हूँ रेडियो में,
1: अच्छा,
2: तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार।
1: लेकिन
2: उसके लिए
1: रेडियो के साथ में बतौर श्रोता आपका रिश्ता पुराना रहा है।

0: हुआ करता था उस समय, और चूँकि जैसे क्रिकेट का मुझे बड़ा शौक था तो कमेंट्री उस पर आती थी, वो सुनते थे। और टेलीविज़न तो उन दिनों बहुत कम हुआ करता था, किसी के घर में पाया जाता था तो वहाँ इतने सारे लोग जमा हो जाते थे कि भाई चलिए टीवी देखा जाए।
1: आपके यहाँ टीवी कब आया पहली बार?
0: हमारे यहाँ आया 83 में,
1: अच्छा,
0: जब ये एशियाड हुए थे,
1: कलर आए थे, ब्लैक एंड व्हाइट था वो।
0: ब्लैक एंड व्हाइट।
1: अच्छा, चूंकि रेडियो की बात कर रहे हैं हम और रेडियो के स्टूडियो में आए हैं आप, विविध भारती के स्टूडियो में आए हैं, क्यों ना आपकी फरमाइश के गाने से?
0: मुझे एक्चुअली पुराने गाने यार बहुत बहुत अच्छे लगते हैं,
1: और विविध
0: स्पेशली
1: भारती के पास विजय भाई पुराने गीतों का जबरदस्त खजाना है।
0: हाँ, तो मुझे एक मन्ना डे साहब का एक गाना है, ऐ मेरे प्यारे
1: प्यारे वतन,
0: वतन, जो मन्ना डे साहब क्या क्या गाया है,
1: अद्भुत
0: बाप रे। और
1: है। लेकिन जो कुछ भी गाया, कव्वालियां गाई, भजन गाए,
0: बिल्कुल
1: रोमांटिक
0: बिल्कुल
1: सॉन्ग्स
0: बिल्कुल
1: गाए
0: बिल्कुल
1: और शास्त्रीय संगीत पर आधारित गाने जो उन्होंने गाए हैं वो भी अद्भुत हैं। उनका गाना ये काबुली वाला फिल्म का गाना है, प्रेम धवन
0: हाँ
1: साहब का लिखा हुआ है और सलील चौधरी साहब का संगीत है। सुनवा दिया जाए,
0: बिल्कुल
1: ऐ मेरे प्यारे वतन।

0: और इस समय सिर्फ वतन में ही नहीं, वतन के बाहर भी लोग आपको सुन रहे हैं। विजय भाई, ये मैं जानना चाहूंगा कि पहली विजय कब प्राप्त हुई आपको फिल्मों के लिए, कहाँ मिला?
1: मैं दिल्ली में पैदा हुआ, पला बड़ा वहीं पे। और मेरी मतलब जैसे कहते हैं ना कि बचपन में पूछा जाता है कि भाई क्या बनेगा बच्चा बड़ा होके। तो मैं ऐसा कह लें कि मुझसे ये सवाल नहीं किया गया था कभी कि क्या बनेगा। मेरी समझ में हिंदुस्तान में इतने सारे परिवार हैं जिनकी संख्या करोड़ों में है, जहाँ शायद ही कभी बच्चे से ये सवाल किया जाता है। इट्स अ वेरी ग्लैमराइज्ड क्वेश्चन एक्चुअली कि क्या बनेंगे आप। इस सवाल तक तो ध्यान जाता ही नहीं है, बहुत करोड़ों परिवार ऐसे हैं, वहाँ ध्यान कुछ और ही रहता है कि खाना आज मिलेगा कि नहीं।
0: बात सही।
1: तो सवाल मेरे ख्याल से पेट भरने के बाद शुरू होते हैं।
0: और कई परिवारों में तो थोपा भी जाता है कि हम इसको इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, ये बनाएंगे, बच्चे से कोई नहीं
1: वो
0: पूछता।
1: हाँ, और ये अनजाना अनदेखा कर देते हैं हम कि हम ही तय करते हैं कि बच्चा क्या करेगा। जैसा आपने कहा ना कि बच्चे से पूछा नहीं है, और बच्चे से पूछना भी नहीं चाहिए। बच्चा भी उस मेरे ख्याल से उस जगह तक पहुंचा नहीं कि जहां वो इस सवाल को झेल पाए, जो इतना बड़ा सवाल है।
0: जी जी
1: और छोटा सा बच्चा नन्ना वो भी जी रहा है, और ये सवाल उन लोगों का है जो एक्चुअली जी नहीं पाए, मुझे ऐसा लगता है। वरना ये सवाल कभी कोई सेंसिबल आदमी नहीं पूछेगा, क्या बनना चाहते हैं, क्या बनना है। अभी तो जीने का समय है, अभी तो जी ले कम से
0: रास्ते में है अभी तो।
1: कम। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं क्या बनूंगा। मैंने ये सोचा कि यार मेरा होगा क्या। जब धीरे धीरे हम बड़े होने लगे कि यार अब तो बड़े हो गए, पढ़ाई वढ़ाई खत्म होने वाली है, अब तो फ्री की रोटी मिलेगी
0: पढ़ाई
1: नहीं।
0: में थे कैसे आप?
1: मैं यार ठीक ठाक था, मतलब मन मेरा लगता नहीं था पढ़ाई में,
0: मन कहीं और लगता था।
1: मन मेरा खेलने कूदने में। और अकेले बहुत समय बिताया मैंने। मैं घर बहुत बाद में जाता था, कह लें कि सिर्फ सोने के लिए जाता था।
0: इस आवारगी का ताल्लुक किससे था? मतलब अपने आसपास के, कभी मौसम से बात करना, पेड़ों से बात करना, हवाओं से बात करना, कुछ ऐसी बात थी क्या?
1: जहाँ मैं पैदा हुआ पूसा इंस्टीट्यूट,
0: जी
1: वो खेत खलियान वहाँ बहुत हैं। हालांकि है दिल्ली के अंदर, बट आप
0: जी
1: वहाँ अगर गए हों कभी या जाने का मौका
0: गया
1: मिले
0: नहीं
1: आपको,
0: है।
1: तो आपको लगेगा नहीं कि आप दिल्ली में। बड़ी शांति है वहाँ, बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारे मतलब अमरूद, आम, जामुन, और पता नहीं क्या क्या
0: जी
1: मतलब बाग बगीचे वहाँ पे हैं। लोगों की संख्या बहुत कम है। उस माहौल में मेरी पैदाइश हुई, और पूरी जो सराउंडिंग थी वो नेचर से पूरी भरी हुई थी। उसने शायद कह लें आप, या मैं पीछे से कुछ लाया होऊंगा, मुझे एकांत बड़ा पसंद था हमेशा ही।
0: जिस तरह से आप आए हैं और आपकी शख्सियत को देख रहा हूं, मैंने पर्दे पर तो आपको कई फिल्मों में देखा है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे एक मलंगपना जो है वो आपको बड़ा पसंद है। वो
1: हाँ वो है।
0: अक्कड़पन, वही जिंदगी की जो होती है अलमस्त, जो एक स्वभाव सा होता है। और आपने अभी कुछ देर पहले कहा भी कि इस वक्त जो है उसे हम जी लें।
1: बिल्कुल, मतलब इससे बड़ा सच मेरे ख्याल से है नहीं। जैसा कहा भी आता ना कि सच को हम उसका सामना करने में बड़ा कतराते हैं, कि हमेशा आगे कुछ तय हो जाए हम पहले तय कर लेना चाहते हैं, जबकि वो हो नहीं पाता कभी। ये अजीब सा भ्रम है जो हमेशा बना रहता है हमारे हमको कि हो जाएगा तय, जबकि होता नहीं। तो मैं खुद वैसी प्रवृत्ति का आदमी हूँ, वैसी प्रकृति है मेरी। मुझे अच्छा लगता है, जब भी समय होता है मैं निकल जाता हूँ गाड़ी वाड़ी लेके, हाईवे पे कहीं गाड़ी रोक के फिर खेत वेत में थोड़ा घूम लिए, वहाँ चेयर डाल के बैठ गए, मुझे बड़ा मज़ा आता है।
0: ऐसा लगता है कहीं ना कहीं अभी भी आपको अपनी वो जो जड़ें हैं उनसे जुड़े रहना बहुत पसंद है। आपने अभी कहा कि ये पल जो है वो जी लें, और इस पल में मैं समझता हूँ कि जब हम पल की बात करते हैं तो संगीत हमारे बहुत सारे पलों को सुरीला बनाता है, उसके साथ जीना भी बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हम उसके उसकी नदी में बस बहते चले जाएं। तो आपने कहा कि पुराने गानों का बड़ा शौक है
1: हाँ, चूंकि बात अब
0: आपको।
1: चल रही है पलों की, तो एक गाना तो बन गया,
0: कौन सा
1: पल
0: है?
1: पल दिल के पास तुम रहती
0: क्या बात,
1: हो।
0: बहुत खूबसूरत गाना है और धर्मेंद्र जी पर फिल्माया गया है ना, ब्लैकमेल फिल्माया गया है।
1: फिल्मों के बगैर मुझे
0: हाँ
1: नाम नहीं मालूम है, बट गाना वाकई बड़ा खूबसूरत है।
0: आइए सुनते हैं।

0: हम अपने श्रोताओं से कहेंगे कि पल पल विविध भारती के साथ बने रहिए। इस समय हमारे साथ हैं फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता विजयराज जी। विजय भाई, परिवार की आपने बात की और अपनी तबीयत के बारे में भी बताया, लेकिन एक्टिंग जो होती है वो सबकी तबीयत में नहीं होती, और उसके लिए वो भी एक साधना है, बहुत बड़ी कला है। मैं समझता हूँ कि तरह तरह के चरित्र जो आपके आसपास रहते हैं जिंदगी में, उनको पर्दे पर जीना, इतना विश्वसनीय बना देना कि लोग डूब जाएं उसमें, वो सच में एक बहुत बड़ी चुनौती वाली बात है। तो एक्टिंग जो थी, इसका आपके बचपन से कहीं कोई रिश्ता है, या बड़े जब आप हुए तब आपके भीतर कहीं ना कहीं उसका अंकुरण हुआ?
1: मैं बड़ा शर्मीला किस्म का व्यक्ति रहा हूँ बचपन से, अब शायद नहीं हूँ, थोड़ा बेशरम हो गया तो मैंने कभी नहीं सोचा था एक्चुअली कि मैं अभिनेता बनूं। ऐसा मैंने पहले कहा कि मैंने तो खैर कुछ भी नहीं सोचा था कि मैं क्या बनूंगा।
0: घर में भी कोई नहीं था इस फील्ड में?
1: नहीं, घर में पिताजी सरकारी नौकरी में थे, मम्मी हमारी हाउसवाइफ। पिताजी से बड़े जो हमारे दादा थे, उनका संग मुझे बहुत ज़्यादा मिला नहीं। इनफैक्ट मुझे बुज़ुर्गों का संग मिला ही नहीं बहुत ज़्यादा। मैं शायद 8-10 साल का रहा हूँगा जब दादाजी हमारे चले गए, और चूंकि वो गांव में रहते थे तो उनसे मुलाकात तभी हो पाती थी जब हम गांव समर वेकेशन में जाते थे। तो उन 10 सालों में भी बहुत ज़्यादा संग रहा नहीं। सुना है मैंने बस कि वो थोड़े मलंग टाइप थे, तो हो सकता है वहाँ से मुझे ये मलंगपना मिल गया हो, मेरी तबीयत में वहाँ से आ गया हो। कॉलेज में जब मैं पढ़ रहा था तब ये घटना अचानक घट गई मेरे साथ कि वहाँ पे थिएटर करते थे लोग, और मैंने उनसे पूछ लिया यूं ही कि हमको भी यार कोई रोल वोल दे दो यार, क्या है। तो उन्होंने मुझे कुछ पढ़ने के लिए दिया, वो मैंने पढ़ दिया। अच्छा ठीक है, तो ये जो लाइनें हैं ना, ये इंस्पेक्टर जहाँ यहाँ लिखा है, ये सारी याद करके लाना। जब उन्होंने ये बात कही कि याद करके लाना, वहाँ से मुझे थोड़ा दिल एकदम टूट गया। मेरे यार ये मैंने गलत पंगा ले लिया, ये अगर मैं ये याद करूँ तो यार मैं पढ़ पढ़ा के थोड़ा कुछ थोड़े ठीक ठाक नंबर ले आऊँ, 40-42 नंबर आते हैं 100 में से तो थोड़े बेहतर हो जाएं, पिताजी खुश हो जाएं। लेकिन जवान थे आप, 18-19 साल की उम्र में, तो उस समय होता है ना कि आपकी ज़ुबान से जो बात निकल गई अब तो पत्थर की लकीर हो गई। लेकिन घर आके वापस मैं आया और मैं सोचता रहा खाना खाने में, यार अब तक की बहुत बड़ी गलती की है लाइफ में, ये मुझे प्रॉमिस नहीं करना चाहिए था, इतनी जल्दबाजी मुझे नहीं करनी चाहिए थी, कैसे मना करूं मैं अब। और अगले दिन शाम को हम लोग गए, तो मैं अब ढूंढ रहा हूं जगह कि कहां मैं कोई बहाना ऐसा मिले कि मैं मना कर दूं।
0: कोई नर्वसनेस नहीं थी?
1: नर्वसनेस बिल्कुल नहीं थी, मुझे सिर्फ ये था यार मैं क्यों
0: कहां फंस गया,
1: ये बात इतनी लंबी चली जाएगी मुझे नहीं मालूम था। वो बस ऐसी मजाक था कि यार हमें रोल दे दो और बात वहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, बट हुई नहीं। ये मेरे लिए अभी समस्या का कारण हो गई। खैर वो रिहर्सल होने लगी एक दिन दो दिन, और मैं फिर ये सवाल भूल गया पूछना या उनको कहना कि यार मैं नहीं करूँगा। मुझे अचानक एक रस पैदा हो गया और मुझे मजा आने लगा। और फिर 1-1.5 महीने के बाद शो हुआ उसका, और कैसा हुआ होगा, हमने कैसा किया होगा, वो तो खैर हम समझ सकते हैं क्योंकि बड़ी पुरानी बात है, बिल्कुल पहला नाटक। लेकिन जब वापस आए तो कॉलेज में मतलब कि अरे विजय यार क्या बात है यार मैंने कहा यार कुछ तो हुआ है तो वहाँ से वो कब पैदा हो गया, उस रस की वजह से
0: कुछ कुछ होने लगा,
1: कुछ होने, मैंने यार नहीं इसमें मुझे बहुत मजा आ रहा है। एक तो खेलने में मुझे बहुत मजा आता था कि कोई मुझे न रो, मुझे रात को भी बॉल दिखाई देती थी मतलब सब लोग चले जाते थे, यार अभी कहाँ जा रहे हो यार, खेलते ना, मैं थकता नहीं था, मुझे इतना मजा आता था खेलने में। या फिर मैं अकेला रहता था, अकेला घूमता था, हमको एक छोटी ज़मीन मिली हुई थी जहाँ पे हम सब्जियाँ उगाया करते थे, मैंने बहुत सारी सब्जियाँ, हर तरह की सब्जियाँ उगाई हैं बचपन में, वहीं पर कुआँ था, वहाँ से पानी निकाल के उसमें देते थे, या वो काम करता था। इतना कहें स्वाद मुझे किसी भी चीज़ में मेरे इतिहास में आया नहीं था, और सिर्फ इसी बात ने, और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये बात मुझे एक दिन बॉम्बे ले आएगी, यहाँ तक जा सकते हैं इस बात से, मुझे ये बिल्कुल पता नहीं था और मुझे इस बात से कुछ लेना देना नहीं था।
0: तो बॉम्बे हम आएंगे थोड़ी देर के बाद में, लेकिन उसके पहले एक गाने को छेड़ा जाए, आपकी पसंद के गाने को।
1: गाना मुझे अभी कुछ भी याद नहीं है, आप भी सुना दीजिए अपनी पसंद का।
2: जिंदगी कैसी है पहेली हाय,

0: बिजु भाई, अब कैसे आना हुआ आपका मुंबई?
1: वो भी बड़ा एक अजीब सा किस्सा है। मैं एनएसटी रिपेट्री में था और किसी बात को लेकर तनातनी हो गई, आपस में हो जाती है। बिना तनातनी के कुछ मज़ा भी नहीं रह जाता कई बार, ऐसा लगता है। अच्छे पैसे मिलते थे, थिएटर करने को मिल रहा था, बड़ा मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा काम मिल रहा था मुझे। रिपेट्री ने बहुत काम दिया मुझे करने के लिए, मैं बड़ा आभारी हूँ उसके लिए, एनएसटी रिपेट्री का। जब वो बात वाक्या हो गया तो वो उसके बाद फिर एक ही चारा था कि आप बम्बई चले आएँ। तो 98 में मैं बॉम्बे आया। पिछले सितंबर की 13 तारीख को मुझे पूरे 11 साल हो गए। जब नए नए आया तो एकदम समझ में नहीं आया यार यहाँ पे करें क्या मतलब करें क्या, कैसे जाएं और काम मांगें, और जाएं कहाँ, सड़क पे तो कोई घूमता नहीं है। तो पड़े रहे मतलब घर में, और सिर्फ यही सवाल कि यार कैसे, मतलब करें कैसे, क्या करें। तो कुछ पुराने दोस्त थे यहाँ पे, उनसे पूछा गया भाई कैसे होता है, कि होता कुछ नहीं, फ़ोटो खिंचाओ, फ़ोटो खिंचा के बांटो। मैंने यार ये तो अच्छा तरीका है यार तो फोटो वोटो खिंचवाई गई, शक्ल आपकी चाहे जैसी भी हो फोटो चाहिए, फ़ोटो वोटो खिंचवाई, और जो है उसके बाद फ़ोन करके लोगों से एड्रेस मांगे, और एड्रेस जाके वहाँ फ़ोटो वोटो बांट दी गई, हो गया जैसा होना था। मेरी समझ में, मैं ऐसा मानता हूँ कि किस्मत बड़ी चीज़ है, कहाँ पे आपका क्या होगा। आप अपनी तरफ से चीज़ें करते ज़रूर हैं क्योंकि वो करनी होती हैं, बट तमाम चीज़ें मेरे ख्याल में हर चीज़ किस्मत एक वर्ड है, एक नाम दे दिया, एक ऐसी शक्ति को नाम कह लें, उसके बिना कुछ होता नहीं।
0: डेस्टिनी को आप मानते हैं?
1: बिल्कुल मानता हूँ। और टैलेंट एक बड़ी अजीब सी चीज़ है, ये एक अजीब सी बहस का मुद्दा भी हो सकता है अगर हम बात करें तो। अगर आप टैलेंट

0: के हिसाब से बात करते
1: जी
0: हैं। और मैं अपनी ही बात को काटूंगा कि हमको वो बहस नहीं छेड़नी चाहिए, क्योंकि जब हम बिना अपने जाने पैदा हो जाते हैं तो बिना वो जो टैलेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं, बिना वो हुए भी हम बहुत बड़े कलाकार कहे जा सकते हैं, क्योंकि हम ही तय कर रहे हैं कि आप बड़े हैं आप छोटे हैं, और हम तय कर रहे हैं जो हम ही हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसे किस्मत की बात कह लीजिए कि चीज़ें बन गई, वरना ऐसा आपने कहा कि जाने माने कलाकार हैं वो सब, यार मुझे नहीं लगता कि वो उस बहस में हमको पढ़ना चाहिए। किस्मत थी मेरी, मुझे काम मिल गया, और किस्मत ही कह लें उसे कि लोगों को वो अच्छा लगता है।
2: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आज के मेहमान, और आज हमारे मेहमान हैं फिल्म अभिनेता विजय राज। आपसे बातचीत की है कमल शर्मा ने।
1: विजय भाई, बहुत सारी फिल्मों में आपने काम किया है, एक अलग पहचान भी है आपकी, लोग देखते हैं और बड़े प्रसन्न होते हैं आपका काम देख करके, बड़े प्रभावित होते हैं। रेपर्टरी का आपने जिक्र किया, मैं ये बात पीछे छूट गई थी, थोड़ा सा फिर से हम फ्लैशबैक में जाते हैं जरा, वहाँ कैसे, किसने, किसी ने प्रेरित किया आपको या कहीं से आपको जानकारी मिली?
0: कॉलेज में जब शुरू हो गया सब कुछ, तो उसके बाद हम लोग मंडी हाउस आ गए। मंडी हाउस एक ऐसी जगह है जहाँ पे स्कूल भी है और थिएटर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं वहाँ। तो साक्षी कला मंच एक अमेच्योर थिएटर ग्रुप वहाँ पे है, और वहाँ पे मैं कॉलेज से, आप वहाँ एक थोड़े से प्रोफेशनल तरह के लोगों के बीच में एंट्री हो गई, तो उनकी
1: जी
0: बातें समझ में ना आए, कह रहे बात क्या कर रहे हैं यार, पता नहीं क्या क्या नाम ले रहे हैं वो, विदेशी नाम, जो हमारी समझ से और हमारी जानकारी के हिसाब से बड़े दूर के कोई हैं, और इसका ये एक्चुअली आदमी का नाम ले रहे हैं या किसी चीज़ का नाम ले रहे हैं, उतना तक समझ में नहीं आता था। एक्चुअली जब मैं थिएटर मैंने ज्वाइन किया, तो थिएटर का मुझे आज भी मतलब नहीं मालूम, एक्चुअली पहले भी नहीं मालूम था, मुझे तो बस मज़ा आता था यार, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ मुझे मज़ा आ रहा है, इतना ही मेरे लिए था। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब, क्या होता है ये, क्या करना है, और हम कौन हैं, ऐसा कुछ मेरे ये सब, मुझे इससे कोई लेना देना था नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है, बस बात खत्म हो गई। छोटा छोटा रोल मिलने लगा, फिर एक प्ले हुआ रोमियो एंड जेनेट, एक बाहर का प्ले है, जिसमें मुझे अचानक एक बड़ा रोल मिल गया। अचानक यूं कि पहले कोई और कर रहा था जो बड़ा एक्टर था, पुराना एक्टर था, तो उन्होंने दे दिया, तो मैंने कहा यार चलो, तो हम करने लगे, और वो मेन रोल था मतलब उस नाटक में। बाकी जितने भी लोग थे वो सब सीनियर लोग थे, तो मैं ही एक था जो सबसे छोट भैया इसको कह लें, तो इतने सीनियर लोगों के साथ काम करने का मौका मिला पहली बार, और प्ले बड़ा बढ़िया हो गया और मुझसे बड़ा बढ़िया हो गया काम, मतलब ऐसा कहा लोगों ने। जे एन कौशल एक व्यक्ति रहे हैं जिनका, जो रेपेट्री चीफ हुआ करते थे उन दोनों, बड़े ही प्यारे इंसान, उन्होंने वो प्ले देखा था, दो तीन बार देखा था, और उनको बड़ा पसंद आया, तो मुझे उन बुलाया रेपेट्री में कि सुनो तुम रेपेट्री ज्वाइन करना चाहोगे, 3,000 रुपये मिलेंगे, और तो 3,000 सुन के मैं बाकी सुनना ही बंद कर दिया मैंने मेरे कानों ने शटर डाउन कर लिया कि 3,000 के बाद मैं 3,000 के हिसाब लगाने लगे, 6 महीने के लिए बुलाया है तो 6 18 18,000 में इतना इतना इतना ना, मैं वो आंकड़े में चला गया बाकी वो क्या बोल रहे मुझे कुछ नहीं मालूम फिर ये था कि यार ये क्यों पूछ रहे हो, करोगे क्या? हाँ मैं करूंगा। ऐसे वहां मेरी एंट्री हो गई, तो मुझे गेस्ट आर्टिस्ट उन्होंने ले लिया। उसके बाद उन्होंने ही मुझसे कहा कि आप परमानेंट होने के लिए यहाँ पे अप्लाई करें, क्योंकि मेरे लिए तो उतना काफी हो गया था कि 6 महीने उन्होंने मुझे रख लिया, बड़ी मेहरबानी, 18,000 रुपये मिल गए, बस 1 1.5 साल लाइफ का और कट जाएगा, बाकी अपना घूमते रहेंगे। क्योंकि मैंने कभी माना ही नहीं अपने आप को कि मैं, जो टैलेंट की आप अभी जिक्र कर रहे थे, कि वो मुझे समझ में कभी आया नहीं क्या अच्छा हो गया है, पता नहीं कैसे हो गया है, मुझे पता नहीं, अगर इसी को कहते होंगे टैलेंट तो ठीक है। तो कौशल साहब ने, आखिरी समय था, आखिरी दिन था कि आप भर दें, तो मैंने अप्लाई कर दिया और मुझे बुला लिया गया इंटरव्यू के लिए। मुझे कुछ आता नहीं था, जो थिएटर मैंने पढ़ा नहीं था, क्या क्या इतिहास में किसने किया मुझे कुछ नहीं मालूम था, जो आज भी नहीं मालूम है, और जो मुझे समझ में आता था वैसा मैंने एक इंटरव्यू दे दिया, और मुझे सेलेक्ट कर लिया उन लोगों ने यार, पता नहीं कैसे। तो पहले वो लोग 1 साल के लिए होते हैं, 1 साल के बाद 2 साल का रिन्यूअल होता है, फिर 2 साल के बाद 3 साल का, तो मैक्सिमम आप 6 साल तक रह सकते हैं वहां पे। तो 1 साल के लिए जैसे ही उन्होंने लिया, तो मैंने फट से, फिर तनख्वाह हो गई 4,000, तो 12 चौक 48 मैंने 48,000 का हिसाब लगा लिया मैंने यार आगे रखे नहीं रखे निकाल देंगे, और ऐसा हुआ नहीं। फिर 2 साल के लिए मिल गया, और फिर मुझे कुछ कुछ छोटा छोटा काम उन्होंने दिया, जो इत्तेफाक से वापस ठीक हो गया। फिर उन्होंने बड़े रोल देना मुझे शुरू किया और उसके बाद एक समय ऐसा था कि काफ़ी इम्पोर्टेंट काम रेपेटरी ने मुझे दिया और इत्तेफाक से वो सभी अच्छा हो गया और लोग पसंद करने लगे।
1: किन किन कलाकारों के साथ में, निर्देशकों के साथ में, खासतौर से थिएटर की जो पर्सनैलिटी की हम बात करें, आपको काम करने का मौका मिला?
0: एम के रैना साहब, रंजीत कपूर साहब, डी आर अंकुर साहब, बजाज साहब, बी एम शाह, मोहन उप्रेती साहब, बापी बोस, कई सारे नाम हैं जिनका सानिध्य मिल पाया मुझे। काबिलियत थी नहीं, लेकिन होता है कई बार चलता है कि आप नहीं हैं काबिल, लेकिन होता ना कि गेहूं में घुन भी पिस जाता है और टेस्ट गेहूं का ही आता है। तो
1: विजय भाई, अभी मौका है एक और गाना अपने सुनने वालों के लिए पेश करने का, आपकी तरफ से आपकी पसंद का गाना, वो सुनवाएंगे और उसके बाद में फिर कस्सों पे फिर चलेंगे। जी,
0: अभी किशोर साहब का गाना है, शराबी फिल्म का, हालांकि फिल्म बहुत ज़्यादा पुरानी, बट बहुत अच्छा गाना है वो।

0: किशोर दा भी कुछ ऐसे ही जिंदगी में मलंग जैसे, उनका भी बड़ा स्वभाव वैसे ही रहा। उन्होंने खास उससे सिंगिंग के करियर को तो बहुत बाद में सीरियसली लिया, शुरू में थे वो एक्टिंग पे ही जोर देते थे। उनकी फिल्में आपने देखी?
1: मैंने एक्चुअली फिल्में बहुत कम देखी हैं, मतलब ओवरऑल एक आध दो, जैसे जिसमें ये गाना है, एक लड़की भीगी भागी सी
0: चलती का नाम,
1: हाँ वो फिल्म देखी है मैंने, लेकिन वो सब बचपन की बातें हैं। बचपन में मैं काफ़ी फिल्में देखा करता था, जब टीवी किसी किसी घर में पाया जाता था तो आप लटक के खिड़कियों से लटक के बड़ा मज़ा आता था। रात रात तक घर से बाहर रहने की परमिशन है भाई, 10-11 बजे रामलीला ख़त्म होगी, थोड़ा जो आवारगी थी उसको थोड़ा और वक्त मिलेगा, तो उस वजह से ज़्यादा वो समय बड़ा अच्छा लगता था जो अब चल रहा है दिवाली के आसपास का समय।
0: विजय भाई आपने कहा, हालांकि बहुत ही हल्के ढंग से आपने उसको मजाक में कह दिया, लेकिन मुझे लगा कि उसके पीछे कहीं ना कहीं कोई गंभीर बात भी है। पैसे की आपने कहा कि बात, जब से पहली बार बताया कि 3,000 रुपये महीने के मिलेंगे, मैंने हिसाब लगाया, फिर पता चला कि 4,000। मतलब कैसी थी जिंदगी, हालात कैसे थे?
1: जब थिएटर कर रहा था मैं तब वाकई हालात बड़े गड़बड़ थे, क्योंकि मैं जब कॉलेज में पढ़ रहा था, इवनिंग कॉलेज में पढ़ता था, मैं दिन में एक नौकरी किया करता था, अकाउंट्स की पार्ट टाइम।
0: ये जरूरत थी एक?
1: हाँ जरूरत थी, क्योंकि मैं एक मतलब बहुत पैसे वाले परिवार से बिलोंग करता नहीं, पिताजी सरकारी नौकर थे और एक मॉडेस्ट सी तनख्वाह की, जिसमें एक 2-3 बच्चों का परिवार सिर्फ पल सकता है और एक्टिविटीज़ नहीं हो सकते हैं। ख्वाहिश नहीं थी मेरी कभी भी कि ऐसा ऐसा हो, पैसों से पूरे हों ऐसे सपने मैंने कभी देखे नहीं।
0: अभी भी?
1: अब भी वैसा ही है ऑलमोस्ट, हालांकि कुछ ज़रूरतें जो होती हैं बेसिक वो सारी हैं आसपास, ये कर दूंगा मैं जो पैसे के बल पे जो चीज़ें होती वो ख्याल नहीं आते हैं कि यार इतना मिल गया काफ़ी है, तो कई बार देने में बड़ा मज़ा आता है मुझे, तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब थोड़ा एक्स्ट्रा जब आता है तो मुझे लगता है यार ये अगर यहाँ चला जाए तो ज़्यादा मज़ा आएगा।
0: विजय भाई वापस मुंबई हम लौटते हैं,
1: कुछ कुछ काम मुझे मिला, कैरियर में मोड़ आया कहें कि ज़्यादा चर्चा जिस बात की हुई वो मॉनसून वेडिंग पिक्चर का बहुत बड़ा हाथ है, और वो फिल्म नसीर साहब, मुझे कहा था कि आप मीरा जी से जाके मिल लें, और नसीर साहब से हमारी मुलाकात रेपिट्री के दौरान हुई। एक प्ले वो देखने आए थे, अग्नि और बरखा एक प्ले था जो प्रसन्ना जी ने डायरेक्ट किया था
0: जी,
1: वो उनको बड़ा पसंद आया और वो हमसे मिले भी, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि नसीर साहब मतलब आपका इंतज़ार कर रहे हैं मिलने के लिए, और वो हमारी पहली मुलाकात वहाँ पे हुई, और वहीं से पता नहीं क्यों हमको लगा कि यार हम इस व्यक्ति को जानते हैं, दूरी नहीं थी कोई, मुझे लगा कि मैं इस व्यक्ति के पास बैठा रहूँ, जो मैंने शेयर की पिछले समय में एक फिल्म में दोबारा हमको मौका मिला काम करने का 12 आना, तो मैंने नसीर साहब को बताया। मॉनसून वेडिंग और 12 आने के बीच में 8-9 साल का अंतर है, इस दौरान हमारी कोई बातचीत नहीं हुई, ना फ़ोन पे ना मुलाकात हुई, और मैंने ये बात शेयर की उनसे कि सर 8 साल हो गए लेकिन मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं
0: आपसे दूर हूँ,
1: आपसे मिला नहीं, और उन्होंने कहा एकदम जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही मैं भी कह सकता हूँ। तो मीरा जी को उन्होंने कहा था कि हालांकि कास्टिंग वो कर चुकी थी पहले उस रोल में किसी को, जो बात उन्होंने मुझे बताई कि भाई मैं कास्ट ऑलरेडी कर चुकी हूँ और बट वहाँ से मुझे जवाब आना है, लेकिन आप जब आएँ तो ऑडिशन दे दीजिए। मैंने कहा ठीक है।
0: कहाँ दिया था आपने? बॉम्बे में?
1: बॉम्बे में।
0: तो मुझे बड़ी इसकी इच्छा है जानने की कि वो कैसी रही वो मुलाकात, उन्होंने बुलाया आपसे फिर वो?
1: मैं गुवाहाटी में था उस समय जब मुझे फ़ोन आया था, मेरे फादर इन लॉ की डेथ हो गई थी उसके लिए मैं वहाँ पे था, और जब मैं लौट के आया तो मुझे जिस पर्टिकुलर डेट में आना था मैं उस समय नहीं आ पाया, तो नेक्स्ट डे मैं आया, तो मैंने उस दिन फ़ोन किया कि मैं अभी यहाँ हूँ और ऐसे ऐसे हो गया है तो मैं तो आ नहीं पाऊँगा आज, मैं तो कल है मुझे आना है। कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, शाम का टाइम था तो वो ऑलमोस्ट सबसे मिल चुकी थी या मैं ही आखिरी था जिससे मिलना था, और होटल में मुलाकात होनी थी, तो मैं नीचे बैठा रहा काफ़ी देर तक कि मैं कैसे पूछूं मतलब किससे यार कि क्या। तो मैंने कहा मीरा नायर जी ओ आया तो ऐसे उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा शायद इनको पता हो गई मैं आने वाला हूँ, तो मैं बैठ गया कि भाई यही बुलाएंगे अब मिलने के लिए, बुलाया नहीं किसी ने, तो काफ़ी समय बीत गया मतलब 1.5-2 घंटा, मैंने यार इतना तो देर नहीं लगना चाहिए। तो मीरा जी ने ही नीचे फ़ोन किया कि कोई आया है क्या, तो उन्होंने कहा हाँ, तो उन्होंने फिर मुझे भेजा, तो मुझे कहा यार तुम इतना वेट करवा दिया तुमने, मैं मतलब वेट कर रही हूँ 45 मिनट हो गए कि नहीं नहीं, मैंने कहा मुझे तो पता ही नहीं, मुझे लगा कि बुलाया जाएगा समथिंग कि एनीवे, तो थक गई थी काफ़ी, तो मैंने बताया ऐसे ऐसे मैं था, ऐसा ऐसा किस्सा हो गया कि ओह सॉरी। चाय पियेंगे? मैंने हाँ हाँ बिल्कुल। हम करीबन 1-1.5 घंटे रहे साथ में। उस दौरान मतलब कैमरे में इंटरव्यू भी ले लिया उन्होंने, मतलब जो इंटरव्यू कर रहा हूँ मतलब ऑडिशन। और
0: आपसे कौन सा, वही जो जिस करेक्टर को आपने
1: हाँ,
0: किया,
1: हाँ,
0: वही करवाया उसी के डायलॉग
1: उनके पास थी और मैंने कर दिया। बैठे रहे, बात बात होती रही, तो 1-1.5 घंटा उनके साथ रहना हुआ।
0: कुछ ब्रीफ किया था उन्होंने कि इस तरह का करेक्टर है और ये,
1: हाँ ये सब बताया, तो मैंने कर दिया जैसा जितना मैं समझ पाता हूँ जैसा हुआ। और ये सारी बातें भी बताएं कि भाई ऐसा ऐसा है, हो चुकी है, एक आदमी से बात चल रही है और ऑलमोस्ट फाइनल है, तो लेकिन ठीक है। जब मैं कमरे से निकला बाहर तो पता नहीं क्यों मुझे लगा यार ये रोल तो मेरे अलावा बड़ा कठिन है किसी और के लिए। ऐसे ही होता है ना, आप मन में कई चीज़ें उठती हैं, कई बार आपको मन में उठता है मैं उड़ जाऊँ, कई बार आप प्लेन में सफर कर रहे हो तो मुझे कई बार लगता है यार मैं प्लेन के ऊपर लेट जाऊं। तो वैसे ही एक ये ख्याल था कि यार ये तो मुश्किल है यार मेरे अलावा। खैर मैं आ गया।
0: कभी कभी ये भी होता है ना कि कहीं कोई ऐसा लगता है कि कोई सवाल हमें उसका हल मिल जाता है, तो ऐसा लगता है कि शायद वो कैरेक्टर आपके अंदर पढ़ते ही समा गया।
1: हाँ, जिसको हम इंस्टिंक्ट जो एक वर्ड ईजाद किया है मेरे ख्याल से वो वही है कि तमाम चीज़ें आपके कंट्रोल में होती नहीं, हमको हमको लगता रहता है ऐसा कि कंट्रोल में है, वहीं से वो आपके भीतर टपकती हैं चीज़ें और वो एक ख्याल पैदा करती हैं, वो पकड़ना कई बार बड़ा कठिन हो जाता है। इसीलिए कहते हैं ना यार आपने मेरे बारे में सोचा उस समय, टेलीपैथी इसको बोलते हैं। तो खैर वो समय चला गया, जितना समय उन्होंने दिया यार उन्होंने मुझसे समय मांगा है 7 दिन का, उसके बाद वो बताएंगे मुझे, अगर वो नहीं होते हैं तो हम बात करेंगे। मैंने कहा हाँ ठीक है। उसके बाद वो समय पीरियड चला गया, मैं भूल भी गया बात। उसके बाद एक दोस्त था मेरा उस पिक्चर में, जो मेरे साथ 3 लोग जो काम करते हैं उनमें से एक, वो आया रिहर्सल के लिए बम्बई, तो मेरे घर पे ठहरा। उसने कहा यार ऐसे मीरा जी की फिल्म कर रहा हूँ। मैंने अरे वो वाली फिल्म? हाँ। तो मैंने वो रोल कौन कर रहा है? कि वो परेश रावल साहब कर रहे हैं। मैंने अरे यार तो कमाल हो जाएगा यार, बड़ा मज़ा आ जाएगा वो तो। मैं ये सोच रहा हूँ, रिहर्सल हो गई, वो लोग वापस चले गए। मुझे एक फ़ोन आता है कुछ समय के बाद, मतलब कुछ दिनों के बाद मोबाइल पे, और नंबर पहले कोड 011। मैंने यार ये तो दिल्ली का फ़ोन है और ये मीरा जी का फ़ोन है, लैंडलाइन से नंबर है। जबकि मैं फ़ोन उठाता हूँ और एक लड़की कहती है कि मीरा जी आपसे बात करना चाहते हैं। और मीरा जी फ़ोन पे आते हैं और कहते हैं विजय हाय कैसे हो ये सब और करके, कि मैं चाहती हूँ कि आप वो रोल करें। मैंने नहीं मैडम, परेश जी बहुत अच्छी कास्टिंग है।
0: क्योंकि उन्होंने तो बताया नहीं था आपको
1: कि नहीं नहीं नहीं दैट आई नो बट या मैं चाहती हूँ आप करें। मैंने कहा ठीक है कर लेंगे। रोल हो गया, हम दिल्ली चले गए।
0: शूटिंग कहाँ हुई इसकी?
1: दिल्ली में। और
0: उसी में आपने पहली बार कैमरा फिल्म कैमरा फेस किया?
1: नहीं, उससे पहले मैं फिल्म कर चुका था, उससे पहले मैं जंगल फिल्म कर चुका था, अक्स भी कर चुका था। भोपाल एक्सप्रेस मेरी पहली फिल्म थी,
0: भोपाल एक्सप्रेस,
1: ये मेरी चौथी फिल्म थी। फिर शूटिंग शुरू हो गई और कब शूटिंग खत्म हो गई, कब क्या हो गया पता ही नहीं चला। और
0: लेकिन वो रोल आपका बड़ा चर्चित हो गया दुबे जी वाला।
1: हाँ वो अच्छी बन पड़ी और फिल्म जब अच्छी बन जाती तो उसमें

0: छोटी चीज़ें भी काउंट हो जाती हैं
1: जी।
0: और वाकई बड़ी खूबसूरत फिल्म, मेरे ख्याल में इंडियन सिनेमा को वेस्ट में जो पहचान बननी शुरू हुई है, जो अब दिख रही है आपको
1: जी,
0: उसमें दो फिल्मों को बहुत बड़ा हाथ है, मॉनसून वेडिंग और बैंडिट लाइक बेकम, ये ऑलमोस्ट एक साथ की फिल्म है, कि वेस्ट में इंडियन सिनेमा को एक जगह दी गई, एक प्लेटफॉर्म दिया गया। उसमें काफ़ी घुमा हूँ, जो फेस्टिवल सर्किट होता है उसमें मेरी, जैसे मॉनसून वेडिंग, रघु रोमियो मेरी एक फिल्म है जो फेस्टिवल्स में काफ़ी गई, हरिओम एक फिल्म है जो भाग्य या कह लें दुर्भाग्य कह लें वो रिलीज़ नहीं हुई है, एक बहुत अच्छी फिल्म भरत बाला ने बनाई थी, वो काफ़ी रही है फेस्टिवल्स में।
1: उसमें आप ऑटो वाले बनते हैं?
0: हाँ, तो मैंने वो सब देखा है। तो अभी वो एक स्पेस जो मिला है इंडियन सिनेमा को, उसमें इन दो फिल्मों का बहुत हाथ है। मैं बड़ा आभारी हूँ मीरा जी का और नसीर साहब का कि मुझे ऐसा मौका दिया उन लोगों ने, गुजारा हो रहा है।
1: लेकिन हमारा गुजारा नहीं होगा अगर हम संगीत नहीं सुनवाएं। तो गाना सुनाना बड़ा जरूरी है। आपकी पसंद का गाना है?
0: गुलजार साहब मुझे बहुत पसंद है, गुलजार साहब ने कमाल लिखा है, मतलब उनके लिए मैं अगर तारीफ करूं मेरे ऐसा व्यक्ति, तो वो बड़ी अजीब सी बात होगी।
1: गुलजार साहब की एक फिल्म है खामोशी, बहुत पहले आई थी, उसमें हेमंत कुमार साहब ने संगीत दिया है और लता जी ने उसमें एक बढ़िया गाना गाया है, हमने देखी है उन आंखों की महक।
0: क्या बात,
1: कही तो बढ़िया।

0: मॉनसून वेडिंग के बाद क्या चेंज आया, उससे क्या फर्क पड़ा?
1: फर्क अभिनेता के तौर पर, चूंकि फिल्म चल पड़ी, लोग जाने लगे, थोड़ा काम देने लगे, और एक मेरे ख्याल से जिस फील्ड में आप हैं वहाँ ये आपके लिए काफ़ी अहम होता है कि आपको काम मिले, तभी आप चीज़ें आगे कर पाएंगे। और चूंकि आपकी रोजी रोटी भी यही है, आप का प्रोफेशन भी यही है, तो वो आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है जीने के लिए भी। उस पिक्चर ने बड़ा, मतलब वो सिनेरियो थोड़ा सा बदला, थोड़ा काम मुझे मिलने लगा और मैं थोड़ा ज़्यादा काम करने लगा।
0: लेकिन जो आपने अरसा बताया, उस अरसे में आपकी बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन ये सारी जितनी फिल्में मैं देख रहा हूँ, इनमें जितने भी नाम मैं देख रहा हूँ, उनके टाइटल जो है पढ़ना बड़ा ऑफ बीट सी हैं सब।
1: हाँ, कमर्शियल जो फिल्में आती हैं वो फिल्में कम हैं, उनकी तादाद कम है। पर्सनली मुझे अच्छा लगता है जब कुछ ऐसा करने के लिए मिलता है जहाँ पे मैं कुछ कह सकूँ।
0: ये तो आप मानिएगा कि ये सिनेमा की जब हम बात करते हैं, सारी के सारे धारा से हटकर के बनी फिल्में हैं, और जाहिर है कि इसमें बहुत सारी फिल्में, बहुत अच्छी फिल्में हैं, क्योंकि सिनेमा में इस बीच हम देखते हैं एक बहुत बदलाव सा आया है। मुख्य धारा का सिनेमा तो है, उस मुख्य धारा की सिनेमा में भी रहते हुए लोगों ने बहुत अच्छा सिनेमा बनाया है, और अब नए नए डायरेक्टर्स आ रहे हैं, कहानी को नए आयाम दे रहे हैं, एक्टर्स बहुत अच्छे आए हैं, कहानी कहने की कला जो है खासतौर से सिनेमा की वो बदल रही है। पहले जैसे एक कन्वेंशनल तरीका था, कुछ चीज़ें तय थी कि ये रहेगा, ये सारी चीज़ें फिक्स थी, अब नई तरह की कहानियाँ जो है उनको भी कहने का खतरा मोल ले रहे हैं लोग, बेशक कि भाई फिल्में चले ना चले, लेकिन अच्छा सिनेमा इस बहाने कम से कम आ तो रहा है हमारे
1: बिल्कुल
0: सामने।
1: बिल्कुल।
0: इन दिनों आप क्या कर रहे हैं?
1: अभी एक फिल्म है जो ईस्ट इज ईस्ट, एक फिल्म आई थी
0: जी जी
1: उसकी,
0: जी
1: उसका सीक्वल बन रहा है वेस्ट इज वेस्ट, जो अगले महीने मैं उसके लिए जा रहा हूँ।
0: कहाँ
1: इंग्लिश
0: पर?
1: फिल्म है, चंडीगढ़।
0: अच्छा, इसको कौन निर्देशित कर रहा है?
1: एंडी
0: अच्छा,
1: डायरेक्टर का नाम है, चूंकि फिल्म जिन्होंने पहले प्रोड्यूस की थी वही प्रोड्यूस कर रहे हैं फिल्म को दोबारा। फैमिली ड्रामा है, रिलेशनशिप की कहानी है, तो एक बार दोबारा मौका मिलेगा बाहर के लोगों के काम करने के तरीके के साथ, दोबारा काम करने का मौका, मज़ा आएगा।
0: क्या फर्क कुछ महसूस किया? इतनी सारी फिल्में की हैं और बाहर के लोगों के साथ में भी काम किया
1: फ़र्क तो है, फ़र्क ये है काम करने का तरीका अलग है, उनकी जो स्क्रिप्ट पे जो वो लोग काम करते हैं उस पे
0: जी।
1: काफ़ी समय वो लोग लगाते हैं, तमाम चीज़ें। वो ऐसा तो नहीं कह सकते कि 100% आप पहले से तय कर लेते हैं सब कुछ, ऐसा नहीं है, बट 90% चीज़ें तय होती हैं, स्क्रिप्ट तैयार होती है उनकी, उस पर काफ़ी काम वो लोग कर चुके होते हैं, बट कुछ चीज़ें इम्प्रोवाइज़ हो जाती हैं सेट पे, ऐसा नहीं कि नहीं होती हैं। हमारे यहाँ उस तरह के सिनेमा की संख्या अब होने लगी है, अब बढ़ने लगा है वैसा, कि अब स्क्रिप्ट पे काम करने लगे हैं लोग, वरना सेट पे ही लिखा जाता है सब कुछ। कई बार एक आइडिया होता है किसी दिमाग में, चूंकि कमर्शियल सिनेमा की जो बात करें वहाँ पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कहानी से, कि आपके पास 50 करोड़ रुपए हैं तो 50 करोड़ रुपए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि कहानी इंपॉर्टेंट। पब्लिक जिन लोगों को देखने जाती है वो लोग बड़े इंपॉर्टेंट हैं ना कि कहानी इंपॉर्टेंट है। कपड़े वो क्या पहनेंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि वो कपड़े क्या कहते हैं या क्यों पहने गए हैं, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप उस सिनेमा से क्या कहना चाहते हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वो एक इट्स अ बिजनेस, व्यवसाय है, और वहाँ कि कैसे बेचना है, बेचना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अब बदल रहा है।
0: विजय भाई, आपके लिए भी तो ये एक रोजी रोटी का जरिया है, लेकिन थिएटर भी आपको संयोग से मिला, सिनेमा में भी काम संयोग से ही आया,
1: बिल्कुल।
0: लेकिन इस सिनेमा की जब हम बात करते हैं, सिनेमा आपके लिए क्या है, कितनी गंभीरता से आप उसे लेते?
1: मैं ऐसा मानता हूं कि बड़ा स्ट्रांग मीडियम है, असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है ये बड़ा मुश्किल है इसके बारे में बता पाना। कुछ मुद्दों को लेके इतना कॉन्ट्राडिक्टरी है कि ये नहीं दिखा सकते हैं, ये नहीं दिखा सकते, बट वो बेचा जा सकता है। उसको बेचना ही क्यों बंद नहीं किया है, उसको बनाना ही बंद क्यों नहीं किया जाता है? अगर आप इतनी सीरियसली लेते हैं इस बात को, समाज के लिए आप एक विचार हैं, आप एक सोच, आप हैं जो सोचते हैं समाज के लिए, तो ये क्यों नहीं सोचते हैं आप? वो क्या चीज़ है जो रोकती है आप?
0: आपने असर की बात की, अगर असर नहीं होता तो लोग, सिनेमा हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा आकर्षण है, आज भी शायद
1: हाँ
0: वो आकर्षण ही उसे सिनेमा हॉल तक खींच करके लाता है। सिनेमा का जादू, उसका तिलिस्म तो मैं समझता हूँ कि लगातार बढ़ता चला गया है, टिकटें महंगी हुई हैं बावजूद इसके
1: नहीं, लोगों ने जैसे कहा ना
0: लोग।
1: कि जैसा मैं कह रहा था कि जो बुरी चीज़ें हैं वो सिनेमा ने सिखाई हैं समाज को, ऐसा मानते हैं लोग, बट आप फिल्में उठाएं, बुराई को कभी जीतते हुए दिखाया नहीं, अंत में सच की ही जीत होती है। हर सारे मुद्दे उठाए, वो चाहे राजनीति का हो, चाहे वो भूख का हो, प्यास का हो, रिलेशंस का हो, वहां से तो सोसाइटी ने कुछ नहीं सीखा।
0: विजय भाई, कुछ और आने वाले प्रोजेक्ट्स के नाम जानना चाहेंगे?
1: एक फिल्म है डोंट वरी।

0: जस्ट बी हैप्पी जो बन रही है अभी आएगी, रिलीज होगी। एक है फिल्म अता पता, अब तो इसकी शूटिंग चल रही है, वेस्ट इज़ वेस्ट जो शूटिंग करूँगा मैं। और रिलीज़ होने वाली दो तीन फिल्में हैं, द फ्लैग एक फिल्म है जो अगले साल जनवरी में रिलीज़ होगी, बड़ी प्यारी सी कहानी है, प्री इंडिपेंडेंट की कहानी है। फितरत चूंकि मलंग है मेरी, इसलिए मैं
1: जी
0: भूल जाता हूँ करने के बाद चीज़ें, बहुत ज़्यादा मैं याद रखता नहीं हूँ, और उनको चूंकि बहुत बोझा हो जाता है यार।
1: शुभकामनाएं देते हैं कि लोग हमेशा याद रखें। और आपका तो नाम ही ऐसा है, मैं तो यही कहूंगा कि विजय भाई आपको जीवन में हर समय विजय मिले और पर्दे पर राज करें। आप हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए, अपना बहुमूल्य समय दिया है, इसके लिए मैं अपनी ओर से और तमाम सुनने वालों की ओर से, विविध भारती की ओर से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ।
0: शुक्रिया बहुत बहुत आपका।
1: शुक्रिया।
2: आज के मेहमान कार्यक्रम के अंतर्गत ये थी फिल्म अभिनेता विजय राज से कमल शर्मा की बातचीत। इस कार्यक्रम में सहयोग पी के ए नायर ने दिया, संयोजन शकुंतला पंडित ने किया, कार्यक्रम के लिए विशेष सहयोग विजय दीपक छिब्बर ने दिया, और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने। अब आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। नमस्कार।
3: आज के मैं

0: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प।
2: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 5 बजे हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण कार्य सत्र में विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती देने संबंधी तंत्रों के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं की जरूरत पर बल दिया। सभी के लिए संतुलित, समावेशी और सतत आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने पर केंद्रित इस सत्र में उन्होंने अफ्रीका, लातिन अमरीका और प्रशांत द्वीप देशों को जोड़ने वाली संपर्क परियोजनाओं का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने संपर्क और व्यापार के लिए अंतर्राष्ट्रीय आवागमन भागीदारी तैयार करने का भी सुझाव दिया। इसके अंतर्गत G7 भारतीय प्रतिभाओं और विकासशील तथा अल्प विकसित देशों को एक साथ लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ठोस वृद्धि से समावेशन और लोगों के कल्याण को मजबूती मिलती है। उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ भारत की विकास गाथा के बारे में भी बताया। इसमें G7 सदस्य देश, सहभागी देश, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ आज शाम होने वाली द्विपक्षीय बैठक पर सभी की नजरें हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श हो सकता है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह द्विपक्षीय बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उम्मीद है कि इस बैठक में पश्चिम एशिया संकट पर प्रमुखता से बात होगी। यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका और ईरान ने युद्ध खत्म करने और हॉर्मुज जलडब्ल्यू मध्य को फिर से खोलने के लिए एक समझौता तय किया है। अब तक हुए काम को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है। भारत इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा के अहम मुद्दे पर भी बात कर सकता है। इन महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ दोनों नेताओं के बीच व्यापार से जुड़े सभी पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो, फ्रांस।
0: इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। भारतीय समुदाय के लोग प्रधानमंत्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। भारत और फ्रांस ने पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन पर नवाचार,

0: सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि ये पिछले वित्त वर्ष के 1,54,000 करोड़ रुपए के उत्पादन की तुलना में 15% से अधिक प्रभावशाली वृद्धि है। उन्होंने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2013-14 के 4,746 करोड़ रुपए की तुलना में 4 गुना बढ़ा है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेल मंत्रालय ने कहा कि ये परियोजना सिग्नलिंग अवसंरचना के आधुनिकीकरण और रेलवे सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर नीट पुनर्परीक्षा से पहले विद्यार्थियों के मन में तनाव पैदा करने और उनकी एकाग्रता भंग करने का आरोप लगाया।
1: मात्र 3 दिन के बाद नीट की परीक्षा दोबारा संपन्न होने जा रही है। इस विषय को लेकर जहां एक तरफ सारे छात्र पूर्ण मनोयोग से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जहां एक तरफ सरकार संवेदनशीलता से काम करती हुई दिखाई पड़ रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी और नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संवेदनशीलता के स्थान पर कुटिलता का प्रयोग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
0: पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सरकार इस परीक्षा को पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने जा रही है। लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेलते हुए ताजा समाचार मिलने तक 46 ओवर में 6 विकेट पर 380 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल और ईशान किशन ने शतकीय पारी खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा और उनका प्रसारण समय।

शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा के तुरंत बाद आप सुनेंगे पहाड़ी बोली में भजन संध्या कार्यक्रम। यू मंच कार्यक्रम होगा 5:30 पर आकाशवाणी शिमला से। प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे शाम 6:00। 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सफ़र सुहाने, गाने नए पुराने। और खेतीबाड़ी कार्यक्रम होगा 6:30 पर। 7:00 आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार रिले किए जाएंगे।

7:05 पर आज आप सुनेंगे आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 भारत बनाम नीदरलैंड्स के बीच खेले जाने मैच का आंखों देखा हाल, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ले करेंगे। इस दौरान 7:45 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार और 8:00 पुणे मैच का आंखों देखा हाल आप सुन सकेंगे। समाचार संध्या का अंक रात्रि 8:45 पर आप सुनेंगे। 9:00 News@9 और 9:15 पर पुणे आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 भारत बनाम नीदरलैंड्स के बीच खेले जाने वाले मैच का आंखों देखा हाल आप सुनेंगे। चांदनी रात कार्यक्रम होगा रात्रि 10:30 पर। हिंदी समाचार रात्रि 11:00, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ले करेंगे। ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा और उनका प्रसारण समय।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए पहाड़ी बोली में कार्यक्रम भजन संध्या। भजन संध्या कार्यक्रम सुनने वाले सारे श्रोतियां जो

0: ਪਹਾੜੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਬੰਸਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਧੀਰੇ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭਜਨ ਸੁਣਿਆ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਾਲ।
1: ਅਰੇ ਬੇਟਾ ਜੀਵਨ ਕਿਆ ਬਤਾ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੇ ਲਿਏ ਕਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੱਖੋਂ ਰੁਪਏ ਕਾ ਇਲਾਜ ਹਮ ਕਹਾਂ ਸੇ ਕਰਵਾਏ।
2: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेर चौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही है। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही है। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य स्थानों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही है।
3: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
4: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार, स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: अंतराल के बाद और सुन दिन कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति।

0: 10 लाख की लॉटरी
1: मुझे।
2: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
3: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: तो इसी सौगी अदा कार्यक्रम इतु संपन्न हुआ।

ये आकाशवाणी का हमीरपुर केंद्र है, एफएम बैंड 101.8 MHz पर। शाम के 5:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम यू मंच।

यो दोस्तों, आपको संजय शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। आप पेश है आपका ये कार्यक्रम यो मंच। जी हाँ दोस्तों, तो आज है 17 जून, और 17 जून को हम मनाते हैं विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। तो आइए इस पर बातचीत करते हैं। यह सभी को इस बात की याद दिलाने का एक अनूठा क्षण है कि भूमि क्षरण, तटस्थता समस्या का समाधान मजबूत सामुदायिक भागीदारी और सभी स्तरों पर सहयोग के माध्यम से किया जा सकता है। एक साथ सूखे से निपटना या मानवता और ग्रहीय परिस्थितिक तंत्र के विनाशकारी परिणामों से बचने हेतु शीघ्र कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर देता है। आपको बता दें, वर्ष 2000 के आसपास और इससे पहले 1992 के रियो पृथ्वी सम्मेलन के दौरान जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता के नुकसान के साथ मरुस्थलीकरण को सतत विकास के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों के रूप में पहचाना गया था। 2 साल बाद वर्ष 1994 में महासभा ने संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन की स्थापना की, जो पर्यावरण और विकास को स्थायी भूमि प्रबंधन से जोड़ने वाला एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। तथा 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस इसको घोषित किया गया। बाद में 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2010-20 को मरुस्थलीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक और सचिवालय के नेतृत्व में भूमि क्षरण से लड़ने हेतु वैश्विक सहयोग जुटाने को मरुस्थलीकरण के खिलाफ लड़ाई घोषणा कर दी। शुष्क, अर्धशुष्क और शुष्क उप आर्द्र क्षेत्रों में भूमि का क्षरण होता है। यह मुख्य रूप से मानव गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन के कारण होता है। यह मौजूदा रेगिस्तानों के विस्तार का उल्लेख नहीं करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि शुष्क भूमि पारिस्थितिक तंत्र, जो दुनिया के एक तिहाई से अधिक भूमि क्षेत्र को कवर करते हैं, अतिदोहन और अनुचित भूमि उपयोग के कारण बेहद संवेदनशील है। इसके अतिरिक्त गरीबी, राजनीतिक अस्थिरता, वनों की कटाई, अत्यधिक चराई और खराब सिंचाई प्रथाएं आदि जो हैं, सभी भूमि की उत्पादकता को कम कर सकती हैं। सूखे को दीर्घ अवधि में वर्षा में कमी के रूप में माना जाता है। आमतौर पर एक मौसम या उससे अधिक, जिसके परिणाम स्वरूप जल की कमी होती है, वनस्पति, जानवरों या लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वनग्नि के कारण भी सूखा पड़ सकता है, जिससे मिट्टी खेती के लिए अनुपयुक्त हो जाती है और मृदा में जल की कमी हो जाती है। जलवायु परिवर्तन के अलावा भूमि क्षरण के परिणाम स्वरूप सूखे में वृद्धि होती है। मरुस्थलीकरण और सूखे की स्थिति पिछले 2 दशकों की बात करें तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन की तुलना में वर्ष 2021 से हम तुलना करें तो 2000 से सूखे की घटनाओं की अवधि 29% की इसमें वृद्धि हुई है। 55 मिलियन आबादी हर साल सूखे कारण प्रभावित होती है और वर्ष 2050 तक 3/4 आबादी को प्रभावित होने की आशंका की गई है। तो इसके उपाय क्या हैं? त्वरित नवीनीकरण की संभावनाओं को तेज करना, जैसे कि त्वरित वनीकरण और वृक्षारोपण की आवश्यकता, जल प्रबंधन, उपचारी जल की बचन, पुनः उपयोग, वर्षा जल संचयन, बिल्वीकरण और लवणीय पौधों के लिए समुद्री जल का प्रत्यक्ष उपयोग, रेत की बाढ़, हवा के झोंकों आदि से होने वाले मृदा क्षरण को रोकना। इसके अलावा मिट्टी के समृद्ध और अति उर्वरकरणी के कारण इसको और उपयोगी बनाने की आवश्यकता है। फॉर्मर मैने नेचुरल रीजनरेशन टहनियों की चयनात्मक छंटाई के माध्यम से अंकुरित वृक्षों को वृद्धि में सक्षम बनाता है। पेड़ों की छंटाई से उपलब्ध अवशेषों का उपयोग खेतों को मल्चिंग प्रदान करने के लिए किया जा सकता है, जिससे मिट्टी पानी की अवधारणा क्षमता बढ़ जाती है और बाष्पीकरण कम हो जाता है। तो चलिए, अब आपको ले चलते हैं संगीत की ओर, सुनते हैं कार्यक्रम में एक गीत।

0: अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी नाम, आवाज़ें थी अलका याग्निक और उदित नारायण की। मिलते हैं आपसे दोस्तों अंतराल के बाद।
1: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है? भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है, उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है। नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है, ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
2: भाभी, चुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में छठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल तीसरे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
3: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: सहायता टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: अंतराल के बाद इस कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। चलिए आप बात करते हैं महाराणा प्रताप जी के बारे में। मेवाड़ के महान राजपूत शासक और स्वतंत्रता सेनानी महाराणा प्रताप के शौर्य, साहस और बलिदान को याद करने के लिए हम हमेशा उन्हें याद करते हैं। उनके स्वाभिमान और मातृभूमि के प्रति उनके अमर प्रेम का प्रतीक है। आमतौर पर उनकी जयंती हम 17 जून को मनाते हैं। हिंदी पंचांग के अनुसार महाराणा प्रताप का जन्म ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हुआ था। इस तिथि के अनुसार देश भर में यह जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। उनके माता पिता के बारे में बात करते हैं। पिता महाराणा उदय सिंह द्वितीय और माता महारानी जयवंता बाई 1572 में मेवाड़ के 13वें शासक बने। इतिहास और महत्व अकबर के साथ संघर्ष। महाराणा प्रताप एकमात्र ऐसे राजपूत शासक थे जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की और आजीवन अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। हल्दीघाटी का युद्ध 1576 की बात करें तो इतिहास का यह प्रसिद्ध युद्ध महाराणा प्रताप और मुगल सेना के, जिसका नेतृत्व राजा मानसिंह कर रहे थे, उनके बीच लड़ा गया था। साधन कम होने के बावजूद भी उन्होंने अदम्य साहस का परिचय दिया। प्रिय घोड़ा चेतक, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था जो अपनी वफादारी और बहादुरी के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। हल्दीघाटी के युद्ध में चेतक ने गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद महाराणा प्रताप की जान बचाई थी। महाराणा प्रताप के प्रेरणादायक विचार, जो व्यक्ति विपत्ति में भी धैर्य नहीं खोता और साहस के साथ उसका सामना करता है वही सच्चा वीर है। अपने आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देना सबसे बड़ा धर्म है। इस कार्यक्रम में अब लेते हैं एक अंतराल।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
5: अरे राहुल, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आते।
6: ताऊ जी, मैं दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ।
5: अच्छा, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि पैसों की तंगी के कारण 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दोगे, फिर पढ़ाई कैसे जारी रखी?
6: ताऊ जी, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना का कमाल है। मुझे मात्र 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपए का शिक्षा ऋण मिला है। अब आर्थिक तंगी मेरे सपनों की राह में रुकावट नहीं बन सकती।
5: वाह बेटा, ये तो प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है।
6: जी ताऊ जी, इस योजना के तहत विद्यार्थी देश और विदेश में प्रोफेशनल तथा तकनीकी शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
7: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना वंचित वर्गों के बच्चों के उच्च शिक्षा के सपनों को कर रही है साकार। योजना के तहत 12 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के 28 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थी ITI, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, लॉ, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए शिक्षा विभाग की वेबसाइट education.hp.gov.in पर लॉग ऑन करें। डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना, सपनों को मिले नई उड़ान, शिक्षा बने सफलता की पहचान, शिक्षा के पथ पर अग्रसर, विकास की नई बुलंदियों को छू रहा हिमाचल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: युवा साथियों, अंतराल के बाद आइए सुनते हैं कार्यक्रम एक और गीत।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

अंतराल के बाद आपका कार्यक्रम में दोस्तों फिर से स्वागत है। अब बात करते हैं उत्कल मणि गोपा बंधु दास की। उत्कल मणि उड़ीसा के रत्न के रूप में जाने जाते हैं। विख्यात गोपबंधु दास एक स्वतंत्रता सेनानी मात्र नहीं थे, वे एक कवि, पत्रकार, समाज सुधारक और उड़ीसा के पहचान निर्माता थे।

वे स्वतंत्र सेनानी, एक कवि थे, पत्रकार थे, समाज सुधारक थे और उड़ीसा के निर्माता थे।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम यू मंच। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 MHz पर।

हम आपको याद दिला दें, आपसे कुछ देर बाद 6 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार। 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सफर सुहाने गाने नए पुराने। 6:30 पर कार्यक्रम होगा खेतीबाड़ी। और 7:05 पर आज आप सुनेंगे ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 भारत बनाम नीदरलैंड्स के बीच खेले जाने वाले मैच का आंखों देखा हाल। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ले करेंगे।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मानवता सर्वोपरि है और जिसके अंदर मानवता कूट कूट कर भरी है वो व्यक्ति महान है।

गर्मियों का मौसम है और हम कुछ सावधानियां रखें। हम खूब पानी पिएं, दिन भर में 3-4 लीटर पानी ज़रूर पिएं। घर से बाहर जाते समय पानी की बोतल हम साथ रखें। इसके अलावा ORS, नींबू पानी और छाछ भी ले सकते हैं। हल्के और सूती कपड़े पहनने चाहिए, जैसा कि आपको पता ही है, और दोपहर की तेज़ धूप से हमें बचना है। टिप्स का सबको पता ही होता है, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि इस चीज़ की याद दिलाना बहुत अच्छा रहता है। ठंडी तासीर वाले हम फल खाएं, जैसे कि तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, संतरा आदि का हम सेवन ज़रूर करें। इसके अलावा हीट स्ट्रोक के लक्षण पहचानें, चक्कर आना, तेज़ सिरदर्द, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, उल्टी या बेहोशी जैसे लक्षण दिखें तो तुरंत छाम में जाएं और डॉक्टर से संपर्क करें। आजकल ज़्यादातर हमें चाय नहीं पीनी चाहिए, कॉफ़ी और नशीले पदार्थों का भी उपयोग नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा मसालेदार और तला भोजन भी नहीं करना चाहिए।

हम आपको पुनः याद दिला देते हैं, 7:05 से आप सुनेंगे ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 बनाम भारत बनाम नीदरलैंड्स के बीच खेले जाने वाले मैच का आंखों देखा हाल, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से ले करेंगे।

0: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6 बजने वाले हैं, बस थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: यार कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
2: PLI है ना?
3: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा, और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉगिन करें indiapost.gov.in पर।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज महाराणा प्रताप जयंती है। इस मौके पर प्रदेश के अनेक स्थानों पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज कांगड़ा जिले के पठियार में राजपूत कल्याण सभा व राजपूत कल्याण ट्रस्ट द्वारा आयोजित महाराणा प्रताप जयंती महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप का जीवन भारतीय इतिहास में स्वाभिमान, अदम्य साहस, अटूट धैर्य, त्याग और मातृभूमि के प्रति समर्पण का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराणा प्रताप ने विपरीत परिस्थितियों, संघर्षों और कठिनाइयों के बीच भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश की जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है और इस दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने आज कसौली विधानसभा क्षेत्र के कुमारहट्टी में एक आभार सभा को संबोधित किया। उन्होंने नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए आशा व्यक्त की कि वे सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने में अपना सक्रिय योगदान देंगे। मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि कसौली विधानसभा क्षेत्र में लगभग 225 करोड़ रुपए की सिंचाई व पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि 135 करोड़ रुपए की गिरी पेयजल आपूर्ति योजना का लगभग 90% कार्य पूरा हो चुका है और इसके बनने से क्षेत्र के 55,000 से अधिक लोगों को लाभ मिलेगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी इस मौके मौजूद रहे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने राज्य सरकार पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को हाईजैक करने का आरोप लगाया है। उन्होंने आज नाहन में कहा कि राज्य सरकार द्वारा जिला परिषद व पंचायत समिति अध्यक्षों व उपाध्यक्षों के चुनाव टाले जा रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव टालने के लिए कांग्रेस सरकार उच्चतम न्यायालय में करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। बिंदल ने राज्य सरकार को जनमत का सम्मान करने की सलाह देते हुए कहा कि प्रदेश की जनता ने चुनावों में कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह नकार दिया है।
1: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों का काम चल रहा है। CRF के माध्यम से जो पुलों के पैसे दिए हैं उनका काम चल रहा है। बिजली के वही काम चल रहे हैं जो केंद्र की सरकार के प्रोजेक्ट के माध्यम से काम आए। एक भी पैसा प्रदेश के बोर्ड का, प्रदेश की सरकार का बिजली के काम पर नहीं लग रहा। सुप्रीम कोर्ट में करोड़ों रुपया सरकार का खर्च करा रहे हैं केवल लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई संस्थाओं को हाईजैक करने के लिए।

0: और हमारी पूरी कोशिश है कि समाज के विभिन्न हिस्सों को जोड़ते हुए नशे के दुष्परिणाम जो समाज में हम देख रहे हैं उसको कैसे दूर किया जाए और नशा निवारण अभियान में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए। हमारे साथ वरिष्ठ नागरिक और युवा भी जुड़े हुए हैं। स्कूलों कॉलेजों में भी कार्यक्रम किए जाएंगे, नुक्कड़ नाटक भी किया जाएगा, योग दिवस के दिन में योगा को भी आयोजित किया जाएगा, मैराथन का भी हमारा कार्यक्रम है।
1: पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग ठाकुर को रेलवे उपसमिति और वित्त उपसमिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष केसी वेणुगोपाल ने समिति की विभिन्न उपसमितियों का पुनर्गठन किया है। देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संसदीय निगरानी को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में ये पुनर्गठन महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रेलवे उपसमिति भारतीय रेलवे में संबंधित व्यय, वित्तीय जवाबदेही और संसाधनों के प्रभावी उपयोग की समीक्षा करेगी। लाहौल स्पीति के विधायक अनुराधा राणा ने आज केलंग सीवरेज योजना का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि वर्षों से लंबित जल शक्ति विभाग की इस सीवरेज योजना का कार्य अब शुरू हो गया है और इससे केलंग व बिलिंग क्षेत्र को सीधा लाभ मिलेगा। अनुराधा राणा ने बताया कि काजा सीवरेज योजना और काजा स्टेडियम परियोजना का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केलंग में युवाओं को बेहतर खेल सुविधाएं प्रदान करने के लिए पुलिस ग्राउंड को खेल मैदान के रूप में विकसित किया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 MHz पर। शाम के 6:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम सफर सुहाने, गाने नए पुराने, लेकिन इससे पहले एक अंतराल।
3: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
3: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहाँ है
5: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
3: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
5: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
3: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: और सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत। कार्यक्रम सुनने वालों को संजय शर्मा का प्यार भरा नमस्कार।

0: दिल की राहें, अभी आपने इस फिल्म का गीत सुना। आवाज़ थी लता मंगेशकर की। मिलते हैं आपसे अंतराल के बाद।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
0: अंतराल के बाद कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जिंदगी में कई तरह के पड़ाव आते हैं, कभी हमें शारीरिक कष्ट होते हैं, कभी मानसिक तनाव आते हैं, लेकिन कहते हैं उम्मीद हमेशा हमें बनाए रखनी चाहिए और उम्मीद ही हमें आशावादी बनाए रखने में हेल्प करती है। आशावादी लोगों की रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता अधिक मजबूत होती है और हम हमेशा स्वस्थ रहते हैं। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: अमानत फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी की। कार्यक्रम सफ़र सुहाने गाने नए पुराने ये सुन रहे हैं आप आकाशवाणी हमीरपुर से। मिलते हैं आपसे एक अंतराल के बाद।
1: अरे राहुल, क्या बात है, आजकल नजर ही नहीं आते।
2: ताऊ जी, मैं दिल्ली में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ।
1: अच्छा, लेकिन तुम तो कह रहे थे कि पैसों की तंगी के कारण 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दोगे, फिर पढ़ाई कैसे जारी रखी?
2: ताऊ जी, ये मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना का कमाल है। मुझे मात्र 1% ब्याज दर पर 20 लाख रुपए का शिक्षा ऋण मिला है। अब आर्थिक तंगी मेरे सपनों की राह में रुकावट नहीं बन सकती।
1: वाह बेटा, ये तो प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है।
2: जी ताऊ जी, इस योजना के तहत विद्यार्थी देश और विदेश में प्रोफेशनल तथा तकनीकी शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त कर सकते हैं।
3: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना वंचित वर्गों के बच्चों के उच्च शिक्षा के सपनों को कर रही है साकार। योजना के तहत 12 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों के 28 वर्ष तक की आयु के विद्यार्थी ITI, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, लॉ, पोस्ट ग्रेजुएशन और PhD सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए शिक्षा विभाग की वेबसाइट education.hp.gov.in पर लॉग ऑन करें। डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना, सपनों को मिले नई उड़ान, शिक्षा बने सफलता की पहचान, शिक्षा के पथ पर अग्रसर, विकास की नई बुलंदियों को छू रहा हिमाचल। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: अंतराल के बाद कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हम आपसे कहना चाहेंगे कि सकारात्मक रवैया हमें खुशनुमा बनाता है, हमारे माहौल को खुशनुमा बनाता है। और ज़्यादातर कई बार हम पूर्वाग्रहों से ग्रसित सोच वाले लोगों से मिलते हैं तो हमेशा उनकी बॉडी लैंग्वेज अलग सी होती है, उनका बोलचाल का ढंग कुछ और होता है और करनी कुछ और सी होती है। तो ऐसे लोगों से हमें कई बार डील करना पड़ता है। तो कैसे करेंगे, हमें अपने आप को सकारात्मक बनाना होगा और खुशनुमा बनाना होगा और उनकी जो छोटी छोटी बातें हैं उन पर मंद मंद मुस्कुराते हुए उन्हें आगे एहसास करवाना होगा। तो चलिए, ज़िंदगी से महत्वपूर्ण जुड़ी बातें होती हैं और काम की बातें होती हैं जो हम चर्चा में ज़रूर लानी चाहिए।

आखिर क्यों इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज थी लता मंगेशकर की। कार्यक्रम सबर सुहाने, गाने नए पुराने आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम सफर सुहाने गाने नए पुराने यहीं संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सफर सुहाने गाने नए पुराने। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 6:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम खेती बाड़ी।

0: राधा रानी ओ राधा रानी
1: ओ मंगला राम राम आई जा मुई बॉडी जोई।
0: राम राम राधा रानी ओ रही तो खरी ना।
1: ओ ठीक ठाक है पतरोड़ुआ लग रही है वो पाने। आजकल जे ऐसे पत्थर होंदे नहीं है पर ये घर पीछे खलाए रहे मैं चार पांच बूटे
0: अच्छा
1: तीन दे पत्थर जे ऐसे बड़े बांग के हो रहे मैं कने आए तो छोटे छोटे आए ना ये तीन चार ही पे पर मैं बोलिया पे इसे जे बेमौसमी चीजा का मजा अजकल जे दिल करे ना इन तो बोलिया सीजनली तो अपना ही मजा होंगे पर अजकल तीन दिखी नहीं रही नहीं वो माते।
0: हाँ बेमौसमी जो चीज खाने तो तीखा अलग ही स्वाद आंदा गया।
1: हाँ फिर बच्चे भी बोलिया रहे कदकने लगे रहे पूरी तो आंदी है तेना जो पानी देने मैं
0: अच्छा
1: बोले पांच चार बूट दबी तो रहे ता एड़ा पे ओई गिरे आए छोटे छोटे ही आए पर दिख पे छा लग रहे हैं देखने में छोटे छोटे
0: उम्मीद छोटे छोटे पत्ते जो होंगे ना इन्हों के तो ज्यादा स्वाद बन दे
1: प्यागा गए
0: दिखना।
1: रही ना खेतरा हा
0: हाँ
1: मैं ले आज नहीं जाना संजकड़ी टाइम मां कने आज जी ऐसे में पतरोड़ू बनाई लेने
0: खरा कित्या मैं दिखना कने गर्मी भी केड़ी हुई दी भी बरखा का छिड़का होया था है ना पर पीरी तापमान जैसे बदना लगी पी आ
1: आज के दिन तक अधिकतम तापमान भी 35 डिग्री सेल्सियस कने न्यूनतम तापमान रहा 24 डिग्री सेल्सियस।
0: हाँ कने खरा मी सवेला सवेला काम हो गया ना तो फिर चुल्ली की नहीं होंगे बैठी।
1: पर देख मंगला पे जे बरखा का छिड़काव हुई है ना इससे
0: हाँ
1: बड़ा बच जे से पे गिरा थोड़े जे दिन तक पिछले हफ्ते तक दे गर्मी हो मी सा नहीं आ।
0: तो दिख रहा था रानी मैं तीजो बल तो आई ही ना फसल तो बाई थी सारे ही तै भी
1: अच्छा
0: बाई थी मैं भी बाई थी पर मेरे जे है दो तरह खेतर छुटी है
1: तो किच नहीं हो ये जो लोग बाने लग रहे जो टाइम आ
0: छड़े भी ता तीत पिछले साल फसल नहीं हुई ही खरी
1: अच्छा पुआजा
0: कन
1: नहीं होया
0: आ
1: करा
0: कन दूजी गाल ए वे थे भी दूरा दे ना तो ट्रैक्टर जा ही नहीं पाया भी आ मैं बोलिया खर होया लेट बांगी भी ता गाल देड़ी भी आन मैं क्या करूं भी फसल तो बाणी पर तिससे पहले क्या करना चाहिए मिंजो भी केड़ी केड़ी खाद जिसे पाना चाहिए तिससे मेरी ऊन फसल खरी हुई है भी।
1: सारे ते पहले ता अगर कुसी भी खेतरा दा पौजा घट हो रहो ना तो मिट्टी की जांच करवाई लेनी करे से तेरे खेतर ता इन्हें भी पिछली बार भी देखे रही हूं पहले
0: हाँ
1: ता से छलियां जम्मी नहीं थी ना खेतरा
0: नीरी नीरी मैं
1: कने
0: पीछे
1: से
0: से गए।
1: जम्मी ता से इतने इतने टंडू हो रत रती कने फिर ता से छलियां च लगियां तो तिना दे दाने भी तेरे जैसे तो
0: हाँ
1: एड़ा कर तू सारे ते पहले जे आ ती ता खेतरा दी मिट्टी ला खेतरा दे गब्बे गब्बे ते पंजा सत्ता जगह ते कंडे
0: अच्छा
1: कंडारे ते नहीं लैने गए तिथी जैसे डाला का चुआस है ना
0: अच्छा अच्छा
1: कने चूड़े ते में नहीं लैनी गब्बे
0: अच्छा
1: गब्बे ते उपरली मिट्टी जी ऐसे टाई देनी
0: कजो राधा रानी
1: से तिस दी जांच करानी फिर से जे
0: अच्छा
1: मिट्टी लैनी तो से थोड़ा खड्डा खूनी लैना पंजा सत्ता जगह
0: अच्छा गासा ते नहीं लैनी
1: हाँ
0: भाई।
1: उपरी नहीं लैनी उपरी तो पता भी नहीं लगना क्या
0: अच्छा
1: पोषक तत्व आए कि नहीं उपर तो रेतली आई सही भी जमीन
0: हाँ
1: फिर से जे मिट्टी लैनी से सारी इकट्ठी करनी फिर से तीन जे बार बार मिलाते रहे कने प्लस का साइन करते रहे अहें चार हिस्से बनी जाने तीह मिट्टी अरे
0: अच्छा
1: फिर एक
0: अच्छा
1: एक हिस्से जो टांदे रहे कंडे अहें
0: अच्छा वे दो दो ही लैने
1: हाँ फिर से पी मिलाई ले तीन कर ले कने ताली जे आधा कर किलो मिट्टी रहनी को बोर
0: अच्छा
1: थोड़ी नैना मुझे जांच कराने जो था जो
0: अच्छा तम ये काम कार में काली तो कर दी रहना भैया
1: वो तो बड़ी देर थोड़ी लगती
0: ए
1: तसला कर लिया ना करा जो
0: अच्छा
1: चौं पंजा जगह ते को बड़ा भारी बोरू थोड़ ली आना उत्था ते
0: ठीक है ठीक है
1: मतलब चौं पंजा जगह जे से खड्डे करने उपरली मिट्टी टाई देनी कि थल्ले थल्ले ते लैनी मतलब मीटर गहराई है ते
0: अच्छा
1: फिर ही से करा ली आना तसला भारी ने फिर से तसले जो किड्डा टाइम लगना कने फिर से तीन जे से मिलाई मिलाई करने जी प्लस्तर बनाते जाना तीना च ना
0: हाँ अभी
1: कने
0: मिला
1: एक
0: दे
1: एक
0: जान
1: ढेर तीदा कंडे करदा चलना
0: ठीक
1: कने
0: ठीक
1: फिर जाली जे अद्धा कर किलो मिट्टी रहनी से फिर से मिट्टी जी ऐसे जांच करने जो देनी पर क्या करना है नहीं करना पे सारे खेतरा रा एक ही तसला दिया अलग अलग खेतरा दी अलग अलग मिट्टी लियानी
0: अच्छा फिर से कुदी देनी जान चाहता है
1: से जे ऐसे उथी विभाग बल देनी जिथी जे से मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाई रहते हैं
0: मृदा स्वास्थ्य कार्ड हाँ भी बनी रहता है
1: ते जे अगर मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनी रहा तो इस दे तहत जे ऐसे अहें झट जे ऐसे मिट्टिया की जांच जे ऐसे करवाई सका है फिर जे ऐसे कार्ड उथी अहां देना ना कन्ने मिट्टिया दी उथी जांच करने जो देने फिर क्या करना कि खेतरे रा खसरा नंबर लाई देना कन्ने सिताई थी जो पता लगना इस खेतरा दी मिट्टिया च एड़ी जी से कमी पाई गई यह चीजा दी मात्रा ज्यादा है इया क्या पता लगना
0: अच्छा भी पूरा ब्योरा भी लिख देना भी कुती तक खेतर आए।
1: हाँ ता फिर से मिट्टी जांच करने जो देनी
0: अच्छा अच्छा फिर मतलब इसके परिणाम जैसे हम जो पूरे मिली आने दिख त्याड़ी बुना दे जे है ना ता मैं भी बुनाया हा कने मैं लंदी दा भी आ ले ए ले दिख वाले इसो
1: वो बड़े फायदे होंगे ये जे मृदा
0: हाँ
1: स्वास्थ्य कार्ड है ना इसो बनाने का उद्देश्य भी यही है भारत सरकार द्वारा जैसे 2015 च जे एस ए योजना चलाई री।
0: कने में इसका उद्देश्य भी ए या कि वे किसान दे जड़ खेतरा दी मिट्टी ना तिहारी गुणवत्ता विच सुधार करना, कन जड़ जे पोषक तत्वों दी कमी ना वे सह पूरी करना भी।
1: पता सारिया गल्ला दा पर बनाई कने रखी तरह अंदर।
0: ओ नहीं मिए पता तो है मिंजो, पर ए नहीं है मिंजो पता भी अणगा काम कार किए करना, मिट्टी किए दिगे नीनी, ता आऊं तुझे पूछना आई ही।
1: सारी गल बात जे एस ए में तीजो दसी थी। कने ए जे मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाना ना इसके फायदे भी बड़े भरी हुए।
0: हाँ भाई मैं भी सुनी था।
1: जल्दी जे बोलिया मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनी जाता ना बड़े ज्यादा फायदे इस दे मिलते, जिया जे ऐसे बोलिया जांच दे 12 मापदंड। इस दे तहत जे ऐसे किते जांदे मुख्य पोषक तत्वों का पता लगता, सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगता, इस सौगी जे ऐसे भौतिक ने रसायनिक गुणों का जे ऐसे सारा पता लगता।
0: सौगी सौगी जी जे जेड़ जे उर्वरक हूँ देती इन्हें संतुलित उपयोग का भी पता लगी आंदा भी आ, फिर इससे किसानों जो जो होंगे खरा लाभ मिलता भी आ। क्योंकि जेड़ जे रिपोर्ट आती ना तिहा विच दसी दिंदा, कंते ने सिफारिश भी की दी कि कुछ चीज़ों की कमी कने आना है केड़े दे पोषक तत्व जैसे अपनी मिट्टी विच पाने भी है। कने इस ते क्या होंदा भी किसानों की लागत भी घट लगती, कंते ना जो पैदावार भी खरी मिलती भी।
1: मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाने दे तई जे असें है ऑनलाइन आवेदन भी करी सकते हैं, ऑफलाइन आवेदन भी करी सकते हैं। इसकी आधिकारिक वैबसाइट पर जे असें जाई सकते हैं, उत्थे जाए कने अगर कुनिए भी किसाने जे असें अजे जी असें अखा बखा दसी लेना ना भी मृदा स्वास्थ्य कार्ड नहीं बनाए रहो, ता इस दी बोलिया आधिकारिक वैबसाइट पर जाए करने जी ऐसे मिट्टी दी रिपोर्ट कने अपना कार्ड जी ऐसे डाउनलोड करने दे तई भारत सरकार दे हर खेत स्वस्थ खेत पोर्टल पर जी ऐसे जाए सकता है। कने फिर जी ऐसे अहें उत्थी जी ऐसे कार्ड जाली बनी आना ताली फिर मिट्टी दी जांच चट जी ऐसे हो जानी, कने तिस्ते जी ऐसे सारी जानकारी जी ऐसे अहां जो फेरी मंगला मिली जानी।
0: सच राध रानी है इस दी जी रिपोर्ट इस ऑनलाइन भी आई जांदी।
1: हां ऑनलाइन भी इस दी रिपोर्ट जी ऐसे आई जानी करा जो। कने ऑनलाइन बनाई भी सकते हैं इसो, ऑफलाइन भी बनाई सकते, तू है तो तैयारी गया ही ना। पर उन जैसे दिख जमाना बदलने लगी रहा तो करे बैठी का नहीं ऑनलाइन जैसे इस पर आवेदन करी सकते हैं जी। यहाँ आधार कार्ड लगना, फिर मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, इन सारिया चीजा ते जैसे फिर यहाँ अपना मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाई सकते हैं। कने इसके बाद जैसे मिट्टी की जांच करवाई कने खेतरा ते अच्छा फायदा जैसे ले सकते हैं। पर हूं तू इथी आ रही ना तेन पतरोड़ूआ रख दई और इन्होंने जो कने फायदा ले लें इस लोग की तरह तो तुआ जे ऐसे हाँ गल्ला बातें करनी कि लोग गीत सुनने तुआ ना भी बनी जाना।
0: हाँ सच गलाया भी।

0: ना बेटी है पाली लै की पालने
1: अजे तो पालने दे तेई बोलिया रही।
0: अच्छा
1: अहारे गाँव अभी तो देख चौ पंजे टोले जे से पहले जे से रखी रहे कि बड़ा फायदा कमाया तेने भी।
0: तमी ये पता क्या दिखी सुनी ना ना एक दूजे की रीस करता ना आदमी ना तभी इस कम जो ज्यादा प्रोत्साहन मिलता भी।
1: कने रेशम कीट पालन ते जैसे किसाना जो अगर फायदे दी गल करियो ना तो दिख सारे ते पहले तो थोड़े टाइम च फसल जैसे तैयार हो जाती। ये जे रेशम दे कीड़े होंगे ये पचियां ते तीन दिन च
0: यानी कि महीने
1: जैसे हाँ तैयार हो जाते। किसाना जो जैसे साल च जैसे 5-6 बारी जैसे रखी सका कने फायदा जैसे ले सका।
0: ता तमी बड़ी खरी गल ली ना राधा राणिए। दूजी गल ए बई इस कम्मा कारा करी ने जैसा एक किसाना जो एक अलग कम कार मिल जाता कने औनने भी आई जाती भी इसते
1: महिलाओं जो रोजगार दे जैसे अवसर मिले हैं। युवा पीढ़ी अगर कोई जुड़ना चाहो तो से भी जुड़ी सका है घरे बैठी कने जैसे सदस्य जैसे जुड़ी सका है। कने घरे तक कई महिलाएं ना खेती बाड़ी का काम कार भी करे रही घर गृहस्थी जो भी संभाले रही सौगी जैसे रेशम पालन का काम करी करने जैसे खुद ग्रामीण महिलाओं जो कई जगह था जी हाँ जे महिला मंडल है या फिर और जैसे समूह बने रहे ना तिना के जरिए भी दिए नहीं पे एक ही परिवार कठिया हुई करने जैसे 4-5 महिलाएं जैसे रखे रही कने ग्रामीण महिलाओं जो सशक्तिकरण था एक ओदा महिलाओं का सौगी जैसे रोजगार दे जरिए मिले रहे कने तिस्ते जैसे ज्यादा काम नहीं पौधा करने।
0: तमी इस तरह दिख क्या क्या काम करना पौंदा वैसे भी पता होना चाहिए भी है क्योंकि अगर जो कम की जानकारी होगी ना तिसते बाद ता लगना फिर पता भी अहां जो कितना फायदा जैसे होया भी आ।
1: सारे तो पहले तो क्या होने चाहिए एक कमरा होने चाहिए।
0: अच्छा
1: से साफ सुथरा होने चाहिए इस दे तेई जैसे छोटे कने सीमांत किसान कई तो घरे रखी लेंदे घर दे कुछ छोटे कमरे च जैसे सो शुरू करी सका है तुहें।
0: अच्छा
1: कने इस दे तेई ए खांदे जैसे सहतूत।
0: अच्छा
1: सहतूता दे खेती होने चाहिए फिर डाल होने चाहिए पाई सहतूता दे खरे गड्डिया दी गड्डिया घा दिखाई जाते।
0: अच्छा अच्छा तो यानी कि मेहनत भी है इस चीज।
1: हाँ मेहनत तो आई कने दे नहीं करना पे जी हाँ हूं घा की गड्डी लंदी रेहड़ी ने सहतूता दी कने ले कने कौथिया पर पाई तो कने कौथे मरी गए से कुकून क्या करना। ये जे रेशम दे कीट होंगे जी हाँ ये घा तो बड़ा भारी खाते पर इन्हें जो पाने पौंदा जी पतियां पतियां पहले तो लियानी फिर
0: रेहड़ी ने
1: हाँ रेहड़ी ने जी अस डाला तो लियानी फिर घरें भी तिना दी पतियां छुड़वा अच्छा फायदा जैसे घरे बैठी कने मिली सका सौगी आहां दी जैसे भारत जैसे रेशम उत्पादन जो बढ़ावा देने दे तेई केंद्र कने राज्य सरकारें फायदा दे रही कने कीट पालन जैसे घर बनाने दे तेई इन्हां दे उपकरणां दे तेई सबसिडी भी काफी हद तक आज ऐसे किसान जो मिला ही
0: कने मैं राधा रानी है ना मुझे तो यह गल बड़ी खरी लगी कि 21 महीने भी चीज का काम जैसे खत्म हो जाता कने जो खरा फायदा मिलता भी है मेहनत तो ना पर फायदा भी है।
1: जाली जे बाजारा जाते ना बोलते फिर इस मां दी साड़ी लैनी कितनी महंगी जैसे दुकानदार दस दे जैसे तैयार होनी अगर कच्चा माल जैसे मिलगा कने जे कच्चे रेशम की जैसे मांग की गल करिए बड़ी ज्यादा जैसे इसकी मांग ही फायदा भी खरा हों जैसे केड़ा कीट हों कि अपू जो खत्म करी करने जैसे और जो जैसे फायदा दे इना कीटा जो अगर पालन पोषण की अहम गल करिए तो सजे कमरा इन्हों के तेई तैयार करना से साफ सुथरा होने चाहिए हवादार होने चाहिए कने तापमान कने नमी जो जैसे नियंत्रण करने वाले होने चाहिए दे नहीं पे बड़ी भारी गर्मी हो बड़ी भारी ठंडी हो यानी कि तापमान जैसे उत्थी नियंत्रित होने चाहिए।
0: बिल्कुल कने मैं सार ते पहली गल तो यह ना अपने किसी भी नजदीकी रेशम विभाग से जैसे अह जो रेशम के अंडे लेने जैसे ये कीड़े ले लेना चाहिए भी है।
1: हाँ।
0: फिर जिंदा तुम तापमान दसिया भी इन्होंने अनुसार जैसे जो तापमान जैसे मेंटेन करना चाहिए भी है।
1: पहले तो यह ना जी अगर किलो के हिसाब च मिलते हाँ। एक किलो लियाने दो किलो लियाने पहले तो तू छाबड़िया च रखी सकता है ट्रेया च
0: हाँ
1: औले औले तीन बद दे जाना फिर तीन जैसे पत्तियां खाने का भी एक बदता जाना कहीं पहले तो थोड़े दिन तो थोड़ी जगह च आई जाना।
0: बिल्कुल कने इस उपरंत जिंया जे अगर इन्हें भोजन कने सफाई की गल करिए ना तो ये जड़े कीड़े इन्हें जो दिन च 3-4 बारी ताजी कने कटी दी शहतूत की पत्तियां जैसे अहां जो खिलाना चाहिए कने कमरे में साफ सफाई भी रखना चाहिए कने मी बोले सुर सुर च तो पत्तियां भी घट खाते ना जिंया जे 10-15 दिन के हो जाते ना तिसके बाद औले औले इन्हों भोजन की मात्रा जैसे बढ़ती भी
1: कने पचियां ते तीन दिन के जाली होने ताली जैसे कीड़े खाना खाना भी बंद करी दें।
0: हाँ
1: तिसके बाद अपने चौं पासियां जी ऐसे लार ते इक आवरण जी ऐसे मतलब बनाई लेना कने फिर जी ऐसे खाना खाना भी बंद कर दे कने ककून बनने ते बाद जी ऐसे रेशम दा धागा जी ऐसे निकलने ते पहले ही ककून जो तुप्पा या गर्म भाप च जी ऐसे सुखाया जा ताकि अंदर दा कीड़ा जी ऐसे मरी आओ कने फिर धागा जी ऐसे सुरक्षित निकली जाओ। पर अहा क्या करना हो ए जे करा ते बिकी जंदे।
0: अच्छा करे आ जंदे लेना।
1: हां
0: ता तमे खरी गल ही ना कने बोलदे ताली जो कोकून बनी जांदा ना कोकून बनने ते 5-6 दिन दे अंदर अंदर ना अहा जो इना जो इकट्ठा कर लेना चाहिंदा
1: किसान जैसे सीधे सरकारी केंद्र या मंडियां च भी बेची सका है।
0: कने मिया राधा रानी जी तो हो दसे बे इस ताए जैसे सरकारी सहायता जैसे अहा जो मिलदी भी ता जो तिहा दा फायदा जैसे जरूर लेना चाहिंदा कने इना तागे जो चरखे कने मशीना द्वारा जैसे लपेटी ना कच्चा रेशम जैसे तैयार कित्या जांदा भी आ।
1: पर मिंजो लगदा हुन जे ऐसे जे गल बात सुनी ना तीजो देखी कने मिंजो लगी ना पे तू भी हुन जे ऐसे रेशम पालन दा काम करने जो तैयार है।
0: सच गलाया मैं दिखना मेहनत तई ना चाहे 21 महीने दी ना कौड़ा कुट्टू करने जैसे करी लैनी भी ना कने 21 महीने बाद तमे खरा फायदा मिली आना।
1: सही आया कने एक बार जे ऐसे हां जो पता लगेगा कि किस तरीके ने जे ऐसे रेशम दे कीट दा पालन पोषण करना कितना इना ते फायदा लगना कितनी मेहनत लगी नहीं फिर जे ऐसे अग्गे ते अग्गे जे ऐसे हां अपना एक समूह भी बनाई सके तीस जे ऐसे और गांवा दियां ग्रामीण महिलाओं जो जोड़ी करने जे ऐसे फायदा ले सके दे यानी बे एक कल्ला परिवार ही है जिया तेरा से जे परला जे कमरा गोडा दे बखा
0: बिल्कुल
1: से ता खाली रहे हां बिल्कुल कने तीस दी जे ऐसे हल्की लिपाई करीने साफ सुथरा तीसो करने ओथी भी जी ऐसे काम शुरू कर सकता है तो
0: इस ते क्या होता है महिला सशक्तिकरण भी बढ़दा कने से आत्मनिर्भर भी बन दिया भी
1: दे ही आया कि पहले जैसे कोई भी काम शुरू करना पर थोड़े ते जैसे शुरू करना बड़े पैमाने पर नहीं करना।
0: सच गलाया कने अगर एक बार काम कर गए ना तो फिर अंदाजा हो जाता भी है बाद से हां इस काम कार जो बधाई सकते भी है
1: जी कने रेशम पालन ते ही बड़ा ज्यादा फायदा जैसे करे बैठी कने मंगला ले सका है
0: कट्टा टाइम अभी जी तैयार होने वाली चीज ही है।
1: पर हुण जे ऐसे लोक गीत लगे ना मेरे रेडियो च ए भी सुनी लेना
0: ओ ता नेकी कने पुछी पुछी ने छोड़ कर मिए।

हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 MHz पर। 7 बजने वाले हैं, अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण कार्य सत्र में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। सत्र का विषय था सभी के लिए संतुलित समावेशी और सतत आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना। उन्होंने अफ्रीका, लैटिन अमरीका और प्रशांत द्वीप देशों को जोड़ने वाली संपर्क परियोजना का भी प्रस्ताव रखा। श्री मोदी ने संपर्क और व्यापार में तेजी लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आवागमन भागीदारी तैयार करने का भी सुझाव दिया। इसके अंतर्गत G7 देशों की पूंजी, भारतीय प्रतिभाओं और ग्लोबल साउथ के देशों को एक साथ लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ठोस वृद्धि से समावेशन और लोगों के कल्याण को मजबूती मिलती है। श्री मोदी ने सुरक्षित, त्वरित और प्रभावी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुनिश्चित करने पर केंद्रित कार्य सत्र में भी भाग लिया। इसमें G7 सदस्य देशों, सहभागी देशों और प्रमुख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने डिजिटल नवाचार के भविष्य के बारे में चर्चा की। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्स के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। इसी बीच श्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ आज शाम होने वाली द्विपक्षीय बैठक पर भी सभी की नजरें हैं। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर सहयोग को मजबूत करने तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श हो सकता है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह द्विपक्षीय बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उम्मीद है कि इस बैठक में पश्चिम एशिया संकट पर प्रमुखता से बात होगी। यह बातचीत ऐसे समय में हो रही है जब अमेरिका और ईरान ने युद्ध खत्म करने और हॉर्मुज जल डब्ल्यू मध्य को फिर से खोलने के लिए एक समझौता तय किया है। अब तक हुए काम को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है। भारत इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा के अहम मुद्दे पर भी बात कर सकता है। इन महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ दोनों नेताओं के बीच व्यापार से जुड़े सभी पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा होने की उम्मीद है। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज शाम फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचेंगे। भारतीय समुदाय के लोग श्री मोदी के आगमन की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कल सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। भारत और फ्रांस ने पेरिस में वीवा टेक 2026 में भारत मंडपम के उद्घाटन पर नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल कार्य मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच

0: हो गए। आज तड़के बांसवाड़ा से सूरत जा रही बस एक खड़े ट्रक से टकरा गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। लीड्स में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में नीदरलैंड्स ने भारत के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। भारत ने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। इधर लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मुकाबले में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 16वें ओवर में 2 विकेट पर 84 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं।
2: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
2: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
4: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
2: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
4: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
2: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। 7:05 हुए हैं। बस थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 भारत बनाम नीदरलैंड्स के बीच खेले जाने वाले मैच का आंखों देखा हाल। हम आपको बता दें कि न्यूज़ ऑन AR ऐप पर आप विविध भारती के प्रसारण सुन सकते हैं।
2: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह है ये डटे हुए, देश के लिए जिए, देश पर मिटे।

0: స్వయం ఇది కట్టుబడి భారతీయ సేనా.
1: फौजी भाइयों को अब हम सुनवा रहे हैं बंधन फिल्म का गीत कुमार शानू की आवाज में. बोल लिखे हैं देव कोहली ने, संगीत आनंद राज आनंद का.

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अब सुनिए अलका याग्निक और उदित नारायण को फिल्म गुलाम में। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने, संगीत जतिन ललित का।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अब हम आपको सुनवा रहे हैं अनुराधा पौडवाल का गाया सड़क फिल्म का गीत, तर्ज नदीम श्रवण की बोल सुरेंद्र साथी के।

जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है।

0: जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: जयमाला कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

जयमाला कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में लीजिए अब सुनिए दीवाना फिल्म का गीत, बोल समीर के आवाजें कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों की।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: समाचार आप एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज के साथ साथ डीटीएच तथा मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन सकते हैं।
1: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले,
2: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण,
1: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
2: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
1: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
4: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले।
3: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, मुख्यमंत्री ने युवाओं से अनुशासन व राष्ट्र सेवा के मूल्यों को अपनाने का किया आह्वान, महाराणा प्रताप को बताया त्याग व स्वाभिमान का प्रतीक। राज्य सरकार ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निशुल्क बिजली रॉयल्टी में वृद्धि का केंद्र से किया आग्रह। प्रदेश के सबसे बड़े जिले कांगड़ा में पंचायत प्रधानों व उप प्रधानों को मुख्यमंत्री कल दिलाएंगे शपथ। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने राज्य सरकार पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को हाईजैक करने का लगाया आरोप। और एचआरटीसी चालक परिचालक यूनियन ने लंबित देनदारियां ना मिलने पर तेज किया आंदोलन, हड़ताल की दी चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने युवाओं से अपने जीवन में अनुशासन व राष्ट्र सेवा के मूल्यों को अपनाने का आह्वान किया है। महाराणा प्रताप की जयंती पर आज कांगड़ा जिले के पठियार में एक समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप अपने साहस, स्वाभिमान व राष्ट्रभक्ति के लिए जाने जाते हैं और उनका जीवन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। मुख्यमंत्री ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को त्याग व स्वाभिमान का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप ने विपरीत परिस्थितियों, संघर्षों और कठिनाइयों के बीच भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने महाराणा प्रताप इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल पठियार में इंडोर स्टेडियम के निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की। बाद में मुख्यमंत्री ने धर्मशाला में लगभग 12 करोड़ रुपए से निर्मित 2 मंजिला ई बस चार्जिंग डिपो व अनुश्रवण केंद्र का लोकार्पण किया। उन्होंने धर्मशाला स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा 70 लाख रुपए से पुनर्विकसित फवारा चौक का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर धर्मशाला में सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ करने के लिए 3 नए इंट्रासिटी ई बस मार्गों को भी मंजूरी प्रदान की। इस बीच मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निशुल्क बिजली रॉयल्टी में वृद्धि का आग्रह किया है। उन्होंने नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा और आवास व शहरी मामले मंत्री मनोहर लाल खट्टर से भेंट कर प्रदेश हित से जुड़े अनेक मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में प्रारंभिक 12 वर्षों की अवधि पूरी कर चुकी परियोजनाओं में सामान्य 12% मुफ्त बिजली रॉयल्टी के अतिरिक्त निशुल्क बिजली रॉयल्टी की हिस्सेदारी बढ़ाई जानी चाहिए। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि प्रदेश की जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है और इस दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने आज कसौली विधानसभा क्षेत्र के कुमारहट्टी में एक आभार सभा को संबोधित किया। उन्होंने नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए आशा व्यक्त की कि वे सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने में अपना सक्रिय योगदान देंगे। मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि कसौली विधानसभा क्षेत्र में लगभग 225 करोड़ रुपए की सिंचाई व पेयजल योजनाओं पर कार्य प्रगति पर है। प्रदेश के सबसे बड़े जिले कांगड़ा में नवनिर्वाचित पंचायत प्रधानों व उप प्रधानों को कल शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह धर्मशाला के दाड़ी मैदान में होगा, जहां मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू 1692 पंचायत प्रधानों व उप प्रधानों को शपथ दिलाएंगे। उपायुक्त हेमराज बैरवा ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह के लिए सभी जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है और समारोह के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
6: जिला कांगड़ा में प्रधान और उप प्रधान की शपथ होनी है, तो सरकार ने 18 जून का इसमें समय तय किया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय सभी प्रधान और उप प्रधानों को नियमानुसार उसमें शपथ दिलाएंगे और सभी प्रधान और उप प्रधानों को पंचायत राज विभाग की तरफ से आई कार्ड इशू किए जा रहे हैं और उनको सबको इन्विटेशन भेजा गया है। 846 हमारे प्रधान और 846 उप प्रधान, सो दोनों मिला के हमारे 1692।
5: प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने राज्य सरकार पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को हाईजैक करने का आरोप लगाया है। उन्होंने आज नाहन में कहा कि राज्य सरकार द्वारा जिला परिषद व पंचायत समिति अध्यक्षों व उपाध्यक्षों के चुनाव टाले जा रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव टालने के लिए कांग्रेस सरकार उच्चतम न्यायालय में करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। बिंदल ने राज्य सरकार को जनमत का सम्मान करने की सलाह देते हुए कहा कि प्रदेश की जनता ने चुनावों में कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह नकार दिया है।
7: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कों का काम चल रहा है, CRF के माध्यम से जो पुलों के पैसे दिए हैं उनका काम चल रहा है, बिजली के वही काम चल रहे हैं जो केंद्र की सरकार के प्रोजेक्ट के माध्यम से काम आए, एक भी पैसा प्रदेश के बोर्ड का प्रदेश की सरकार का बिजली के काम पर नहीं लग रहा। सुप्रीम कोर्ट में करोड़ों रुपया सरकार का खर्च करा रहे हैं केवल लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई संस्थाओं को हाईजैक करने के लिए। अरे जनता ने जो संदेश दिया है उसको स्वीकार करिए।
5: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य पथ परिवहन निगम की चालक परिचालक यूनियन ने लंबित देनदारियां ना मिलने को लेकर अपना आंदोलन तेज कर दिया है। यूनियन द्वारा अपनी मांगों को लेकर प्रतिदिन गेट मीटिंग की जा रही है। यूनियन के कार्यकर्ताओं ने आज अपनी मांगों को लेकर शिमला के पुराने बस अड्डे में प्रदर्शन किया। यूनियन के राज्य कार्यकारिणी सह कोषाध्यक्ष लेजराम ने कहा कि उनका आंदोलन 24 जून तक जारी रहेगा और मांगें पूरी ना होने पर 25 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी।
8: आज 9वां दिन हमारा गेट मीटिंग का हो गया है और मैं सरकार से मांग करता हूं कि हमें हमारी डिमांड उनको माना जाए, अन्यथा हम हड़ताल करके रहेंगे। 25 तारीख से हमारी हड़ताल होके रहेगी। 6 महीने का नाइट ओवर टाइम है और मेडिकल रिवर्समेंट है, 50,000 की किस्त सभी कर्मचारियों को मिल गई, हमारे को अभी तक नहीं। हमारी मांगे नहीं मानी गई तो 12 बजे के बाद हमारी जितनी भी गाड़ियां हैं हम हड़ताल के लिए चले जाएंगे।
5: केंद्र सरकार के नशा मुक्त भारत अभियान के तहत लोगों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत करवाया जा रहा है। सोलन जिले में आज से नशा मुक्त भारत अभियान शुरू हुआ जो 26 जून तक चलेगा। प्रदेश अनुसूचित

0: जाति व जनजाति विकास निगम के प्रबंध निदेशक अजय कुमार यादव ने अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि नुक्कड़ नाटकों, पोस्टर मेकिंग और स्लोगन के माध्यम से युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत करवाया जा रहा है।
1: नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई है और ये जो अभियान है 10 दिनों तक चलेगा, 17 जून से 26 जून, और इन 10 दिनों में अलग अलग कार्यक्रम, अलग अलग गतिविधियां आयोजित की जाएंगी और हमारी पूरी कोशिश है कि समाज के विभिन्न हिस्सों को जोड़ते हुए नशे के दुष्परिणाम जो समाज पे हम देख रहे हैं उसको कैसे दूर किया जाए और नशा निवारण अभियान में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए। हमारे साथ वरिष्ठ नागरिक और युवा भी जुड़े हुए हैं, स्कूलों कॉलेजों में भी कार्यक्रम किए जाएंगे, नुक्कड़ नाटक भी किया जाएगा, योग दिवस के दिन में योगा को भी आयोजित किया जाएगा, मैराथन का भी हमारा कार्यक्रम।
0: सिरमौर जिले के आंज भोज इलाके में शांत महायज्ञ का आज समापन हो गया। इसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। आंज भोज क्षेत्र के धनवा गांव में शिरगुल देवता और बिजट महाराज के नए मंदिर का निर्माण किया गया है। इसी उपलक्ष्य में इलाके में शांत महायज्ञ का आयोजन किया गया। श्रद्धालुओं ने बताया कि इस दौरान पारंपरिक वाद्य यंत्रों के बीच देव परंपरा की अनूठी झलक देखने को मिली।
2: ये जो धनवा की धरती है जो कि अब तीर्थ स्थल बन चुका है, ये केवल मात्र एक ऐसा स्थल है जहाँ पर कि बिजट महाराज और शिरगुल महाराज दोनों देवता एक साथ यहाँ विराजमान है। तो बेसिकली ये बिजट महाराज की धरती है जहाँ पर शिरगुल महाराज का बहुत प्राचीन मंदिर था, निर्माण काम चला हुआ था, आज यहाँ पर एक कुरड़ भी स्थापित हुआ है और ये शांत महापर्व का भी आज यहाँ समापन होने जा रहा है। चारों तरफ यहाँ पब्लिक ही पब्लिक है, श्रद्धालु ही श्रद्धालु है, पूरा जो माहौल है वो पूरा देवमय माहौल हुआ है।
3: बिजट महाराज और शिरगुल महाराज दोनों यहाँ एक ऐसा स्थान है जहाँ दोनों एक ही जगह विस्थापित है।
0: प्रदेश के अनेक जिलों में 19 जून तक तेज हवाओं के साथ वर्षा और ओलावृष्टि की संभावना है। शिमला स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक संदीप शर्मा ने बताया कि अगले 24 घंटों में चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिले के अनेक स्थानों पर ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
4: तो 17 जून से लेके 19 जून तक जो प्रदेश के जो मैदानी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे एक दो स्थानों में हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है, अर्थात जो मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट हैं और जो हाई रिचेज हैं वहाँ पे कुछ एक क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश होगी। और मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट है चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला है, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, यहाँ पे 17 तारीख से लेके 19 तारीख तक थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग हो सकती है। साथ में स्पेशली जो डिस्ट्रिक्ट हैं कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, यहाँ पे जो पॉकेट्स हैं, हमारे पीछे पॉकेट्स हैं, वहाँ पे ओलावृष्टि भी हो सकती है। 18 जून को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने युवाओं से अनुशासन व राष्ट्र सेवा के मूल्यों को अपनाने का किया आह्वान। महाराणा प्रताप को बताया त्याग व स्वाभिमान का प्रतीक। राज्य सरकार ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निःशुल्क बिजली रॉयल्टी में वृद्धि का केंद्र से किया आग्रह। प्रदेश के सबसे बड़े जिले कांगड़ा में पंचायत प्रधानों व उप प्रधानों को मुख्यमंत्री कल दिलाएंगे शपथ। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने राज्य सरकार पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को हाईजैक करने का लगाया आरोप। और एचआरटीसी चालक परिचालक यूनियन ने लंबित देनदारियां न मिलने पर तेज किया आंदोलन, हड़ताल की दी चेतावनी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
5: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं।
6: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
7: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
6: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
8: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
6: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
8: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
6: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
9: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो? अरे भाई, खुशी तो होगी,
10: अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गांव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
11: गाँव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
12: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
7: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
13: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
8: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
13: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
8: एफिलिएटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
13: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
12: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
7: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
13: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
8: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
13: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
8: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
13: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
5: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, 8 बजे हैं। अब आप सुनेंगे ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 भारत बनाम नीदरलैंड के बीच खेला जा रहा क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल। और हम आपको याद दिला दें, न्यूज़ ऑन AR ऐप पर आप सुनेंगे विविध भारती के राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
14: मनोहर जोशी, निर्देशक मुख्तार अहमद।
15: शायद आपने सुना होगा कि एक सज्जन ने दावा किया था, दुनिया एक बंद सीप के समान है और वो एक दिन अपनी तलवार से उस बंद सीप का मुंह खोल देगा। उसके इस दावे से लोग स्तब्ध रह गए थे, लेकिन ये काम इतना मुश्किल नहीं है। तलवार की मदद से सीप का मुंह खोला जा सकता है, लेकिन क्या कभी आपने एक ऐसी लड़की की कल्पना की है जो एक टाइपराइटर की मदद से इस सीप रूपी दुनिया का मुंह खोल दे? जी हाँ, टाइपराइटर की मदद से शायद नहीं सोचा। तो आज सोचिए, एक शहर के एक छोटे से ढाबे नुमा होटल में खाना खाने बैठी एक लड़की, नाम है सारा।
16: ओहो, ये मीनू कार्ड है या किसी डॉक्टर द्वारा लिखा गया दवा का पर्चा? ये भी पता नहीं चलता कि भाषा अंग्रेजी है या जर्मन।
17: आप पहली बार यहाँ खाने आई हैं, इसीलिए ऐसा कह रही हैं। अजी मैडम, यहाँ तो अक्सर ये होता है कि खाना स्वीडिश से शुरू होकर सूप पर जाकर ख़त्म होता है। पता ही नहीं चलता कि किस जगह सूप लिखा है और कहाँ पुडिंग।
16: तो क्या सभी मेज़ के मीनू कार्ड इसी तरह के हैं?
17: जी हाँ, सभी इसी तरह के हैं। और तो और, मैनेजर के काउंटर पर जो मीनू रखा है वो भी इसी भाषा में लिखा गया है।
16: दूसरा कोई होटल इतने पास है नहीं और रोज़ कहीं दूर जाकर खाना मुमकिन नहीं है, लेकिन ऐसे क्या खाया जा सकता है?
17: देखिए, मेरी सलाह लीजिए, ये जिम्मेदारी आप बैरे पर डाल दीजिए और जो कुछ वह ले आए उसे आंख मीच कर चुपचाप खा लीजिए। मैं तो ऐसा ही करती हूँ।
16: यही करना पड़ेगा, दूसरा रास्ता भी क्या है?
17: ओके मैडम, मैं चलती हूँ। उम्मीद है शाम को फिर खाने पर मुलाकात होगी। बाय बाय।
16: बाय बाय बैरा।
18: यस मैडम, कमिंग। क्या खाइएगा?
16: मैं क्या बताऊँ, अपनी मर्जी से ले आओ।
18: ओके मैडम।
16: बड़ा बुद्धू लगता है इस होटल का मालिक। अगर इसी मीनू कार्ड को साफ साफ लिख कर रख दे तो कम से कम खाने वाले को यह तो पता चल जाए कि वो आज क्या क्या खाने वाला है। यही ठीक रहेगा, शायद उसकी समझ में बात आ जाए।
18: हेलो
16: प्लेट चावल, दो स्लाइस सूप सलाद।
19: हेलो सर।
20: यस मैडम।
16: शायद आप ही यहाँ के मालिक हैं।
20: कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ?
16: देखिए, ये आपके यहाँ का मीनू है, मैं इसे दोपहर अपने साथ ले गई थी और साफ साफ टाइप करके ले आई हूँ। अगर इस तरह आप अपने मीनू कार्ड मेज पर रखें तो ग्राहकों को ऑर्डर देने में आसानी रहेगी, साथ ही आपके होटल की साख भी बढ़ेगी।
20: ओह, थैंक यू मैडम।

0: ओह वंडरफुल वंडरफुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। वेल मैडम, इस मेहनत के बदले हम आपसे खाने के पैसे नहीं लेंगे,
1: ये तो आपने बड़ी मेहरबानी की, लेकिन इसके साथ ही अगर एक और बात मान ले तो बड़ी आभारी रहूंगी।
0: यस।
1: खाना मेरे कमरे में ही भिजवा दिया करें, बस इसी होटल से लगा मेरा कमरा है, रूम नंबर 87।
0: ओह मुझे इसमें कोई एतराज नहीं, मैं जरूर आपका खाना पहुंचाने का इंतजाम करवा दूंगा।
1: थैंक यू वेरी मच। आपको तो ऐसा करिएगा कि जब आप शाम का खाना भिजवाएं तो दूसरे दिन का मीनू भिजवा दिया करिए, और जब सुबह चाय लेकर बैरा आएगा तो उसके हाथ में टाइप किया मीनू भिजवा दूंगी, और शाम के मीनू के बारे में भी पूछताछ कर लूंगी।
0: ठीक है ठीक है।
1: अच्छा, कुल कितनी मेज है यहाँ?
0: मेज 12।
1: तो 12 यह है, एक आपके लिए और दो फालतू, कुल 15 मीनू कार्ड, ठीक है ना?
0: हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
1: एक बहुत बड़ी समस्या कितनी आसानी से सुलझ गई। आज ही वॉल्टर को पत्र लिखूंगी तो वो बहुत खुश होगा। मगर जब से मैं इस कमरे में आई हूँ उसके पत्र ही आने बंद हो गए। पता नहीं वह किस तरह से इतनी मेहनत कर रहा है। कभी कभी कितनी अजीब घटना घट जाती है। क्या पता था मुझे कि वॉल्टर से प्रेम हो जाएगा, लेकिन वॉल्टर कितनी मेहनत करता है उस फॉर्म में, रात दिन उसी में जुटा रहता है। काश काश उसके अनाज के गोदाम में उस दिन आग नहीं लगती, तो फिर मुझे इस तरह शहर थोड़े ही आना पड़ता। क्या भयंकर आग थी उस दिन। वॉल्टर,
2: सारा अब क्या होगा, मैं तो बर्बाद हो गया, लुट गया मैं तो सारा, सब कुछ चलकर खाक हो गया।
1: अब इस तरह रोने से क्या होगा वॉल्टर, हिम्मत न थारो, मेहनत करो और फिर से इस फॉर्म को अनाज से भर दो।
2: क्या सोचा था, क्या हो गया सारा, भविष्य के सारे सपने मिट्टी में मिल गए।
1: सपने तो बनते बिगड़ते रहते हैं वॉल्टर, उनसे क्या घबराना, हम नए सपने दोबारा बुन लेंगे, तुम मेहनत करो।
2: मगर अब हम कैसे सब कर पाएंगे, सारी पूंजी सारा अनाज आग ने जलाकर खाक कर दिया है, और सारा एक महीने से तुम्हारी नौकरी भी तो नहीं।
1: देखो वॉल्टर, वक्त का हाथ कौन पकड़ सका है, गोडाउन जल गया है तो इस तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से कोई फायदा नहीं। उठो, पहले हाथ मुंह धो लो, उसके बाद कुछ सोचेंगे। मुझे एक बात सूझिए, सिर्फ तुम्हारी मदद चाहिए।
2: कहो।
1: देखो वॉल्टर, अगर हम इसी तरह गांव में बैठे रहे तो कुछ नहीं होगा। ऐसा करते हैं कि तुम तो यहीं रहो, वापस उस फॉर्म को खड़ा करो और मैं शहर चली जाती हूँ, वहाँ कुछ काम करके पैसा इकट्ठा करूँगी, बस जनवरी तक हमारे दिन फिर जाएंगे और बसंत की बहारों के दिन हम एक दूसरे से दोबारा मिलेंगे।
2: लेकिन बसंत का मौसम आने में तो अभी 10 माह बाकी हैं, और 10 महीने तक तुमसे अलग नहीं सारा, ये नहीं हो सकता।
1: वॉल्टर, मैं लड़की होकर हर मुसीबत से जूझने को तैयार हूँ, और तुम मर्द होकर इतने परेशान हो रहे हो, सिर्फ 10 महीने की तो बात है।
2: हा?
1: और मैं टाइपराइटर ले जाऊंगी, जिसे और कुछ काम न मिले तो कम से कम टाइपिंग करके ही कुछ न कुछ कमा लूंगी।
2: 10 महीने सारा, सोचकर ही मन कांपने लगता है।
1: लेकिन 10 महीने बाद की तो कल्पना करो वॉल्टर। और एक बात और भी है वॉल्टर, कुछ दिन अलग रहकर हम अपने प्यार की सही कीमत आंक सकेंगे।
2: सारा।
1: वॉल्टर। आठ महीने बीत चुके हैं, सिर्फ 2 महीने बाकी हैं, और वॉल्टर ने लिखा था कि वह उस दिन स्वयं मुझे लेने आएगा। ओह कितना सुहाना दिन होगा वो।

0: आपने बुलवाया था मुझे?
1: यस मैडम, प्लीज हैव योर सीट।
0: थैंक यू।
1: देखिए, अब बसंत का मौसम शुरू हो रहा है, इसलिए हमारे मेनू कार्ड भी पूरी तरह बदल जाएंगे, क्योंकि इस मौसम में कुछ नई चीजें ग्राहकों को दी जाएगी।
0: जी हाँ, कल मौसम का पहला दिन है। ओह वाल्टर
1: जी, क्या कहा आपने?
0: कुछ नहीं जी, कुछ नहीं। आप क्या नई डिशेस बनाते हैं?
1: बस जरा हरी सब्जियों पर ज्यादा जोर रहता है। हमारी खास डिश है हुए अंडों के साथ सरसों की सब्जी।
0: उसे भी यह सब्जी बहुत ज्यादा पसंद है।
1: जी किसे?
0: ओ माफ कीजिएगा, मैं कुछ और ही सोचने लगी थी। हाँ, तो ये सब्जी आप रोज बनाएंगे?
1: जी हाँ, करीब करीब रोज ही, कल से ही हम इसे बनवाना शुरू कर देंगे। आप भी देखिएगा, ये सब्जी हमारे यहाँ एक खास ढंग से बनती है।
0: तो ऐसा करते हैं कि इसे बड़े टाइप में काफी स्पेस देकर टाइप कर देती हूँ।
1: वंडरफुल वंडरफुल।

0: गाजर की सब्जी सूखी, मूली का रायता, आलू पनीर। ओह वॉल्टर, तुम कहाँ हो? कल से बसंत का मौसम शुरू हो रहा है। ये देखो, तुम्हारी मनपसंद सब्जी नहीं, उबले हुए अंडों के साथ सरसों की सब्जी। वॉल्टर, कल ज़रूर आ जाना। वॉल्टर, तुम्हारे पत्र भी बहुत दिनों से नहीं मिल रहे हैं। वॉल्टर, कल ज़रूर आना, ज़रूर आना,
1: मेम साहब, आपका खाना।
0: ज़रूर आना। रख दो यहाँ। हाँ, आज तो नई सब्जी लाए होगे।
1: जी हाँ, और हमारे यहाँ की सबसे मशहूर सब्जी भी है। ये देखिए, उबले हुए अंडों के साथ सरसों की सब्जी।
0: तुम ये सब्जी ले जाओ, वापस ले जाओ।
1: बट मैडम, ये तो हमारे यहाँ की खास डिश है, आप चक्कर तो देखिए।
0: नहीं, तुम नहीं जानते, मैं अभी इसे नहीं खा सकूंगी, नहीं खा सकूंगी।
1: ओके, जैसा आप कहोगे।
0: ओह वॉल्टर, बसंत का पहला दिन तुम्हें मुबारक हो। लेकिन तुम कहाँ हो वॉल्टर? तुमने वादा किया था कि तुम इस दिन मुझसे मिलने ज़रूर आओगे। काश तुम आज यहाँ होते तो हम दोनों साथ साथ तुम्हारी मनपसंद सब्जी खाते। वॉल्टर, कौन है?
2: सारा।
0: वॉल्टर, ओह वॉल्टर, तुम सच ही वॉल्टर हो ना? बेरा, बेरा।
3: यस मैडम।
0: उबले हुए अंडों के साथ सरसों की सब्जी वापस लाओ।
3: ओके मैडम।
4: सारा।
0: वॉल्टर, तुमने मुझे पत्र क्यों नहीं डाला कि तुम आ रहे हो?
4: वाह, ये बहुत ही खूबसूरत शहर है। पिछले हफ्ते ही मैं यहाँ आ गया था, लेकिन जब तुम्हारे कमरे में गया तो पता चला कि तुमने बहुत पहले ही वो जगह छोड़ दी है। बस तभी से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ।
0: लेकिन मैंने तो तुम्हें पहले ही खत डाल दिया था और उसमें नया पता भी लिख दिया था।
4: नहीं, ऐसा कोई खत मुझे तो नहीं मिला।
0: अच्छा, लेकिन तुमने मुझे ढूंढा कैसे?
4: असल में मैं अभी तुम्हारे वाले होटल में खाना खाने गया। वहाँ जब मैं मेनू देख रहा था तो आलू पनीर के बाद वाली सब्जी देखकर चौंक उठा। बस फौरन मैनेजर से तुम्हारे बारे में पूछताछ की, उसने तुम्हारा पता दिया और मैं यहाँ।
0: हाँ, मुझे याद है कि उसके बाद तुम्हारी मनपसंद सब्जी का नाम था।
4: साथ ही मुझे ये भी मालूम था कि तुम्हारे टाइपराइटर का व अक्षर कुछ आड़ा टाइप होता है।
0: लेकिन उबले हुए अंडों के साथ सरसों की सब्जी में व अक्षर कहाँ से आया?
4: लेकिन सारा डियर, तुमने जो सब्जी टाइप की है उसे जरा पढ़ो तो।
0: क्यों, क्या टाइप किया है? देखूं, उबले हुए अंडों के साथ प्रिय वॉल्टर। असल में मैं उस वक्त तुम्हारे बारे में सोच रही थी।
5: मेनू कार्ड। हवा महल में आज आप सुन रहे थे ओ हेनरी की कहानी स्प्रिंग टाइम एलाकार्ड का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण। नाट्य रूपांतरकार थे मुरली मनोहर जोशी, निर्देशक मुख्तार अहमद। इसी के साथ आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं श्रेया घोषाल और टोची रैना की आवाजों से। फिल्म का नाम है शॉर्ट इन द सिटी, संगीत सचिन जिगर का, बोल समीर के।

अब सुनिए रूप कुमार राठौर के आवाज में अग्निपथ फिल्म का गीत। अजय अतुल का संगीत है, बोल अमिताभ भट्टाचार्य के।

रंग दे बसंती। अब सुनिए इस फिल्म का गीत मधुश्री और नरेश अय्यर की आवाज में। धुन बनाई है ए आर रहमान ने, बोल लिखे हैं प्रसून जोशी ने।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा,
2: रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: चित्रलोक कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सिंग इज किंग, अब सुनिए इस फिल्म का गीत राहत फतेह अली खां और श्रेया घोषाल की आवाजों में। गीतकार मयूरपुरी, संगीतकार प्रीतम।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: चित्रलोक कार्यक्रम की अंतिम पेशकश डेली सिक्स फिल्म से, जिसे आवाज दे रहे हैं मोहित चौहान। प्रसून जोशी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है ए आर रहमान ने।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की और लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं।
0: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। श्री मोदी ने जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के एक महत्वपूर्ण कार्यसत्र में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं को ऐसे तंत्र विकसित करने चाहिए जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान करें। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस के एवियो शहर की दो दिन की यात्रा काफी महत्वपूर्ण रही। इस दौरान प्रधानमंत्री ने G7 के विभिन्न आउटरीच सत्रों में हिस्सा लिया, जहां भारत को एक साझेदार देश के रूप में आमंत्रित किया गया था। यह G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की लगातार सातवीं भागीदारी थी। इस महत्वपूर्ण वैश्विक मंच पर भारत की निरंतर उपस्थिति यह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि देश एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जटिल वैश्विक चुनौतियों के समाधान के लिए अब नई दिल्ली की ओर देख रहा है। आउटरीच सत्रों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस महत्वपूर्ण मंच के ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से उठाया। कल के एक सत्र में उन्होंने तेजी से जुड़ती हुई इस दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने के लिए भरोसे के महत्व को रेखांकित किया और इस बात पर जोर दिया कि भारत ने हमेशा मानवता को सर्वोपरि रखने के दृष्टिकोण का पालन किया है। आज के एक सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को ऐसे तंत्र विकसित करने की जरूरत है जो विकासशील देशों को आर्थिक मजबूती प्रदान कर सके। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एनेली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री कल सम्मेलन में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी है। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कॉर्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दे दी है। इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण के अंतर्गत पात्र शहरी गरीब परिवारों के लिए 2,13,000 से अधिक अतिरिक्त आवास को स्वीकृति दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की सातवीं बैठक में यह निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत कुल स्वीकृत आवासों की संख्या अब 16,13,000 से अधिक हो गई है। योजना में महिलाओं को मालिकाना हक दिए जाने तथा वंचित वर्गों को आवास देने को प्राथमिकता दी जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने पिछले 12 वर्षों में राष्ट्रीय सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को अपने विकास पथ का केंद्र बनाया है। श्री नड्डा ने कहा कि बढ़ी हुई सैन्य तैयारियों और स्वदेशी विनिर्माण पर विशेष ध्यान देने के कारण देश के रक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय बदलाव आया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत इस तिमाही के अंत तक 300 गीगावाट की गैर जीवाश्म ईंधन स्थापित क्षमता हासिल कर लेगा। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में भारत ऊर्जा परिवर्तन क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के विषय पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा देश की विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में।
2: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अपनी सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित यह मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में एक श्रद्धालु पंकज जड़िया ने अपनी हाल ही में की अयोध्या यात्रा के अनुभव साझा किए।
3: अभी थोड़े दिनों पहले मैं अयोध्या गया था, वहाँ हमने प्रभु राम के दर्शन किए। वहाँ व्यवस्था बहुत ही बढ़िया है, भीड़ को मैनेज के लिए सरकार ने बढ़िया प्रबंध कर रखा है। मंदिर का प्रांगण बहुत ही भव्य है, सभी लोग लाइन में लगकर प्रभु का दर्शन करते हैं।
2: मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस परियोजना की कुल लागत लगभग 850 करोड़ रुपए है। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। आधुनिक तकनीक और AI आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थ यात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। यह परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। वर्ष 2014 से मार्च 2025 तक काशी में 48,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 580 विकास परियोजनाओं पर काम शुरू किया गया। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में वाराणसी के निवासी प्रियांशु सिंह ने कहा,
4: काशी में मोदी जी ने बहुत काम किया है। पहले मंदिर तक जाने वाला रास्ता काफी संकरा हुआ करता था, जिससे बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती थी, पर अब कॉरिडोर बनने से भीड़ भी व्यवस्थित रहती है और लोगों को भी दर्शन करने में काफी आसानी होती है।
2: ये परिवर्तनकारी पहलें भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं, जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAD 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcad.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों को इसे सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिए। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक बैठक में अधिकारियों को रिपोर्टिंग में आसानी के लिए AI और बहुभाषी सहायता का उपयोग करने का भी निर्देश दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्दोष निवेशकों को ठगने वाले साइबर अपराधियों को परजीवी बताते हुए उनके साथ सख्ती से निपटने को कहा है। न्यायालय की पीठ ने विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकियों की एक साथ सुनवाई करने की याचिका पर यह टिप्पणी की। न्यायालय ने कहा कि साइबर अपराध के शिकार लोग देश भर में हैं और ऐसे अपराधियों को जेल में बंद रखना समाज के हित में है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में पंजाब में लगभग 32,000 महिलाओं को उनके प्रवासी भारतीय नागरिकों NRI पतियों ने छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि ये राज्य में NRI विवाह धोखाधड़ी की बढ़ती चुनौती है। गुजरात में वडोदरा में तड़के एक ट्रक और निजी बस की टक्कर में 9 वर्ष के एक बच्चे सहित 6 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। इधर उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में दोपहर सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार की 6 महिलाओं की मौत हो गई और 3 महिलाएं घायल हो गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों दुर्घटनाओं पर गहरा शोक व्यक्त किया है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने देश के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में कल मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल बिहार, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकाल में भी तेज वर्षा की संभावना है। अगले 4 से 5 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन गई हैं। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आंधी चलने की संभावना है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सुबोध मिश्र।
6: सेंसेक्स 347 अंक बढ़कर 77,156 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 97 अंक ऊपर 24,086 पर पहुंच गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 के मुकाबले 3 पैसे बढ़कर 94.53 पर बंद हुआ।
1: और अब बात खेलों की। लखनऊ में दूसरे एकदिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 403 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में अफगानिस्तान ने ताजा समाचार ओवर में 7 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारियां खेली। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। लीड्स में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 210 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक नीदरलैंड्स ने पहले ओवर में बिना किसी नुकसान के 7 रन बना लिए हैं। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। भारत ने विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में पाकिस्तान को 64 रन से हराया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने आज से 10 दिन के नशा मुक्त भारत सप्ताह का उद्घाटन किया। डॉक्टर कुमार ने मादक पदार्थों के दुरुपयोग से निपटने में सामुदायिक भागीदारी, युवा सहभागिता और अंतर मंत्रालयी समन्वय के महत्व पर बल दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। नाविकों की सुरक्षा और होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने के मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। पेरिस में विवाटेक 2026 में भारत मंडप के उद्घाटन अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी सहयोग पर प्रतिबद्धता दोहराई। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1,200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी। और मौसम विभाग ने कल देश के पूर्वोत्तर क्षेत्रों में और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। सबसे पहले सुनिए ये सुदास की आवाज में सुनैना फिल्म का गीत गीत संगीत रविंद्र जैन का।

0: मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: अगली पेशकश अनुरोध फिल्म से आवाज किशोर कुमार की, बोल आनंद बख्शी के संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

मुकद्दर का सिकंदर। अब सुनिए इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। अनजान के लिखे इस गीत की धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अब सुनिए मोहम्मद रफी और साथियों को। आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने। फिल्म का नाम है हम किसी से कम नहीं।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आज का सफर आपने तय किया प्रीति मिश्रा के साथ। दीजिए इजाजत।

0: ये है विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों की बात।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: दोस्तों नमस्कार, यूनुस खान की ओर से।
1: ये कौन है? कबाब में हड्डी।
0: आज के फनकार कार्यक्रम में आज जिक्र उस अभिनेता का जिसने सन 1955 में बनी बिमल रॉय की फिल्म देवदास में चुन्नी लाल की यादगार भूमिका निभाई थी।
2: हाय हाय, तुम क्यों रुक गई? तुम रुकी क्या, दिल हमारा रुक गया, गम के मारे आसमां भी झुक गया।
3: ए देवदास, तुम कहां चले? घबराने की क्या बात है? बैठो बैठो बैठो। हाँ तो शुरू हो जाओ उसका।

0: क्या और भला सच है क्या, जिंदगी ख्वाब है।
1: मोतीलाल को हिंदी फिल्मों के बेहद सौम्य और शिष्ट अभिनेताओं में गिना जाता है। सन 1910 में शिमला में उनका जन्म हुआ था। उनका पूरा नाम था मोतीलाल राजवंश। सन 1934 में आई फिल्म शहर का जादू से मोतीलाल की अभिनय यात्रा की शुरुआत हुई थी। सागर मूवी टोन के बैनर तले बनी इस फिल्म के निर्देशक थे केपी घोष। 30 के दशक में नायिका सविता देवी के साथ फिल्मों में उनकी जोड़ी बड़ी मशहूर रही। इस जोड़ी की कुछ खास फिल्में थीं डॉक्टर मधुरिका, जिसके लेखक थे जाने माने साहित्यकार कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी। रंजीत मूवी टोन की फिल्म अछूत, जयंत देसाई की फिल्में दीवाली और शादी, जिनमें मोतीलाल और सविता देवी नायक नायिका थे। बाद में चतुर्भुज जोशी की सन 1941 में आई फिल्म परदेसी और ससुराल में वे अभिनेत्री माधुरी के साथ दिखाई दिए। भारतीय सिनेमा की यात्रा पर शुरुआती दौर में पारसी रंगमंच और नौटंकियों के बेहद कलाबाजी भरे अभिनय की गहरी छाप पड़ी थी। अभिनय में अति नाटकीयता का समावेश होता था, लेकिन कहा जाता है कि मोतीलाल ने हिंदी सिनेमा में स्वाभाविक और सहज अभिनय की शुरुआत की, जिसमें संवादों की अदायगी उतनी नाटकीय न होकर बिल्कुल आम जिंदगी की बोलचाल जैसी होती थी।
2: देखते हो रंगीन जिंदगी, ये वो लोग हैं जिन्हें सड़कों पर बटुए मिले और उन्होंने लौटाए नहीं।
3: इसे मुझे जानने की जरूरत नहीं, मुझे इजाजत दीजिए।
2: क्या काम करते हो?
3: बेकार।
2: नौकरी चाहते हो?
3: मुझे नौकरी मिलेगी।
2: इस पते पे कल चले जाना और मैनेजर साहब से मिलना।
1: जाने माने फिल्मकार महबूब खान की शुरुआती फिल्मों में मोतीलाल नायक रहे थे, जैसे सन 1943 में आई तकदीर, सन 1937 में आई जागीरदार और सन 1938 में आई फिल्म हम तुम और वो। केदार शर्मा की फिल्म अरमान और कलिया में भी मोतीलाल ने काम किया था। सन 1945 में आई थी फिल्म पहली नजर, जिसमें वीणा मोतीलाल की नायिका थी। हम आपको याद दिला दें कि इसी फिल्म से पार्श्व गायक मुकेश की गीत यात्रा शुरू हुई थी। मोतीलाल मुकेश के चचेरे भाई थे और वे ही मुकेश को फिल्म संसार में लाए थे। फिल्म पहली नजर में संगीतकार अनिल विश्वास के निर्देशन में मुकेश ने गाया था अपना पहला नगमा।

सन 1948 में आई फिल्म गजरे, जिसमें सुरैया मोतीलाल की नायिका थीं। इस फिल्म के संगीतकार थे अनिल विश्वास और गीतकार गोपाल सिंह नेपाली। ये है सुरैया का गाया नगमा।

सन 1949 में आई रूप शौरी की फिल्म एक थी लड़की, इसमें मोतीलाल की नायिका थी मीना शौरी। आपका ये दोस्त इस फिल्म का एक दुर्लभ गीत ढूंढ कर लाया है खास तौर पर आपके लिए।

0: मोतीलाल की सबसे उल्लेखनीय फिल्म मानी जाती है सन 1952 में आई जेमिनी प्रोडक्शंस की मिस्टर संपत। आर के नारायण के प्रसिद्ध उपन्यास पर बनी इस फिल्म में मोतीलाल ने एक शरीफ बदमाश का किरदार निभाया था।
1: इतना ही नहीं जनाब, मैं कहता हूँ कि आज आधी से ज्यादा दुनिया 420 है। जिधर निगाह उठा के देखिए, चोर बदमाश डाकू नजर आते हैं, और मजा यह है कि देखने में आपसे और हमसे ज्यादा शरीफ मालूम होते हैं। कौन जाने यहाँ हम लोगों में कौन शरीफ है और कौन 420। ना जाने क्या होने वाला है दुनिया का। 8 आने के 12 केले, लूट मची हुई है चारों तरफ। जिसको देखो ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है। आपने वो केले वाले को मुझे ना बताया, सीधा पुलिस की हिरासत में भेज देता उसको।
2: अच्छा
1: जी हाँ, आप लोग नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ और क्यों हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि मैं थर्ड क्लास पैसेंजर हूँ। जी नहीं, मैं चाहूँ तो फर्स्ट क्लास में सफर कर सकता हूँ, सैलून में भी सफर कर सकता हूँ, लेकिन चाहता नहीं। पूछिए क्यों। मैं ये जानना चाहता हूँ कि थर्ड क्लास के पैसेंजरों को क्या क्या तकलीफें हैं, उनको किन किन सहूलियतों की जरूरत है। मैं आप लोगों का हूँ, जनता का हूँ। बाय द वे, जनता एक्सप्रेस के बारे में तो आपने सुना होगा, वो मेरा ही आइडिया था।
2: आपका आइडिया?
1: ऑफ कोर्स।
2: टिकट प्लीज, टिकट, टिकट प्लीज।
1: पास।
2: क्या मैं देख सकता हूँ?
1: ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। मैंने तुम्हें कहीं देखा है, शर्मा जी के घर।
2: कौन शर्मा?
1: अरे भाई, वो तुम्हारे DTS।
2: आपका मतलब वर्मा जी से है?
1: वर्मा जी, वर्मा शर्मा में क्या फर्क है, दोनों मेरे जिगरी दोस्त हैं। क्या तनख्वाह मिलती है तुम्हें?
2: 125 रुपए।
1: 125 रुपए और डियरनेस अलाउंस और भत्ता?
2: 50 रुपए।
1: 50 और 125, 175 रुपए मिलते हैं, और दिन रात बैल की तरह से काम करते हैं। जुल्म है ये, सरासर जुल्म है। मैं तुम्हारे लिए वर्मा जी से बात करूंगा। क्या नाम है तुम्हारा?
2: रामप्रसाद।
1: रामप्रसाद, मैं वर्मा जी से तुम्हारे लिए बात करूंगा और तरक्की कराने का इंतजाम करूंगा। अब तुम जा सकते हो।
2: थैंक यू सर, थैंक यू।
0: सन 1954 में HS रवेल की फिल्म मस्ताना में मोतीलाल ने एक यादगार भूमिका निभाई। इस फिल्म में उनकी नायिका थी निगार सुल्ताना।

0: सन 1955 में आई मोतीलाल के फिल्म जीवन की सबसे यादगार फिल्म देवदास।
1: अरे देवदास,
2: अरे चुनिंदा हो तुम,
1: ये क्या सूरत बना रखी है, पहचाने भी नहीं जाते, क्या खबर है?
2: खबर बस यही है कि जिंदा है। तुम यहाँ कैसे?
1: भाई कलकत्ता हमें रास नहीं आया, दिल्ली में एक नौकरी कर रखी है, उस सिलसिले में दौरे पर जा रहे हैं, आज यहाँ कल वहाँ। तुम कहाँ जा रहे हो?
2: ये अभी कुछ तय नहीं किया।
1: मकसद?
2: जिंदगी में अब कोई मकसद ही नहीं रहा चुनी बाबू।
1: तुम रहे वही देवदास। अच्छा ठहरो, इतने दिनों के बाद मिले हैं, मुलाकात को रंगीन किया जाए, क्या ख्याल है? अब तो हम सोडा मिलाने के भी कायल नहीं रहे, क्यों फजूल सोडे पे पैसे जाया किया जाए, लेकिन तुम्हें तकलीफ होगी, थोड़ा पानी मिला दो।
2: मैंने पीना छोड़ दिया है चुनी बाबू।
1: किसी ने अपने सर की कसम तो नहीं दिला दी?
2: ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस नहीं पीऊंगा।
1: अरे अरे, मगर ये गिलास कहाँ ले जाते हो? तुम नहीं पियोगे तो मैं पी लूंगा। अच्छा, ये वो पुराना मर्ज है या कोई नया रोग लगा लिया? अरे कुछ कहते क्यों नहीं?
2: क्या कहूँ चुनी बाबू, मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, अब तो बस यही अच्छा लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं लगे।
1: तुम्हें क्या दुख है? मैं अच्छी तरह समझता हूँ देवदास, लेकिन ये ना समझो कि सिर्फ तुम ही इस दुख के शिकार। जब इस दुख की आग सीने में भड़कती है तो इसी का सहारा लेना पड़ता है, इसी आग से उस आग को बुझाया जा सकता है, और कोई चारा नहीं।
0: सन 1956 में फिल्म जागते रहो, जिसमें मोतीलाल के अभिनय की मिसाल आज भी दी जाती है।
3: जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या,

0: सन 1959 में ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनाड़ी में मोतीलाल एक कड़क बिजनेसमैन के किरदार में नजर आए थे।
1: आज ही इस घर में हो क्या रहा है? तुम बैठो, मैं भी आता हूँ।
2: ये क्या गाना पूछी हो रही तुम लोग?
3: कुछ नहीं चाचा जी, यूं ही बात कर रहे थे। वो राजकुमार नीचे आए हैं ना।
1: तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि उसका नाम राजकुमार है?
3: जी मुझे आशा ने बताया।
1: आशा को कैसे मालूम हुआ कि वो कौन है, क्या है, कहाँ काम करता है?
3: जी मैं जी आरती। घबराओ नहीं आशा, चाचा जी तुम्हें काट थोड़ी खाएंगे, बताओ ना।
1: हाँ, डरने की क्या बात है, राजकुमार को तो मैं खुद पसंद करता हूँ, मेरे यहाँ तो काम करता है वो।
3: सॉरी।
1: हाँ मैं क्या कह रहा था, राजकुमार बड़ा काबिल लड़का है, बड़ा होनहार है, बड़ा ईमानदार है।
3: हाँ और बड़े अच्छे चित्रकार भी हैं और गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं।
1: अच्छा,
3: मुझे आशा ने बताया।
0: सन 1959 में दिलीप कुमार और मोतीलाल एक साथ नजर आए फिल्म

0: सन 1960 बिमल रॉय की फिल्म परख, मोतीलाल का यादगार अभिनय।
1: ये क्या पागलपन फिर से शुरू कर दिया है तूने? कहाँ था डेढ़ महीने से?
2: तुम्हारे ही काम के लिए गया था मैं।
1: मेरा काम?
2: हाँ, तुम्हें याद नहीं, पिताजी की वसीयत के मुताबिक वो 5 लाख रुपए का चेक जो राधा नगर मैंने भेजा था, उस वक्त तुम्हें कहा था कि ये रुपया किसी गलत आदमी के हाथ में न पड़ जाए, इसलिए मैं वहाँ गया। वहाँ जाके पोस्ट ऑफिस में एक डाकिया की नौकरी कर ली और वहाँ से छुट्टी लेके अब अपनी माँ के दर्शन करने के लिए आया हूँ।
1: लेकिन तुझे इस पोशाक में देख कर मुझे बड़ा डर लगने लगता है।
2: डर लगने लगता है क्यों माँ?
1: कुछ ऐसी ही पोशाक में तेरे पिताजी को वो गाँव छोड़ना पड़ा था, इसलिए अब तुझे उस जिंदगी के नजदीक जाके देख मेरा रोम रोम कांपता है।
2: माँ तुम बहुत ही भोली हो, मैं को असली डाकिया थोड़ी बन गया हूँ, ये तो एक स्वांग है, देखो तुसी तमाशा क्या क्या होता है।
0: सन 1965 में मोतीलाल ने एक फिल्म का निर्माण और निर्देशन किया था। ये फिल्म थी छोटी छोटी बातें, जिसमें नादिरा उनकी नायिका थी।

0: रहता है।
1: ये फिल्म नाकाम रही थी और मोतीलाल को इससे गहरा सदमा पहुंचा था। इसी साल यानी सन 1965 में मोतीलाल का देहावसान हो गया था।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

प्रस्तुत है छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, प्यार की पहली मुलाकात और उसका पहला एहसास जिंदगी के सबसे खूबसूरत और जादुई अनुभवों में से एक होता है। वो पहली नजर, किसी को चुपके से देखने की वो आदत, नजरें चुराकर बार बार देखने का वो मीठा सा एहसास, न जाने कैसा जादू होता है उस पहली नजर में, है ना?

पहले प्यार की यादें और इसका खुमार जिंदगी भर जहन में ताजा रहता है। पहला प्यार सिर्फ किसी को पसंद करने का नाम नहीं, बल्कि महबूब की मौजूदगी में सुकून और गैर मौजूदगी में एक मीठा सा खालीपन महसूस करने जैसा होता है। पहला प्यार प्रेम की गहराई और मासूमियत का वो जादुई दौर है जो हमें भीतर तक बदल दिया।

ये प्यार, पहली नजर में प्यार का वो जादुई एहसास, क्या कहने। प्यार में एक अलग ही दुनिया जीने लगता है मन। खुद से बातें करना, बार बार खुद को आईने में देखना, सजना संवरना, हर बात पे दिल की धड़कन का बढ़ जाना, सुर्ख चेहरा और एक अनजानी सी घबराहट लिए मन इधर उधर भटकता है। बस महबूब के ख्यालों में खोया रहता है ये मन।

इस अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एक भावनात्मक सफर है प्यार, खुमारी, बेचैनी, उम्मीद और रोमांस का अद्भुत मिश्रण। मन बेताबी से अपने प्यार को थामे रखना चाहता है, प्रेम को पकड़ना चाहता है, छूना चाहता है, उसे महसूस करना चाहता है और यही प्यार धीरे धीरे मन के भीतर एक पूरा ब्रह्मांड रच लेता है।

प्रेम के सावन में पहली बार भीगा हुआ मन का कोना जीवन में कभी नहीं सूखता। किसी के होने से भीतर एक ऐसा स्पंदन होता है जो खामोशियों में भी शब्द ढूंढ लेता है। कितना तेज, कितना सुंदर, कितना गहरा होता है ये प्यार। और जब दो टूटे बिखरे उजड़े हुए लोग आ मिलते हों अपने खोए हुए टुकड़ों को, बिखरे हुए वजूद को और उजड़े हुए चमन को खोजते खोजते, तो यही प्यार और तीव्र हो जाता है।

शोर और भाग दौड़ भरी दुनिया में अब कोई तुम्हें बाहों का सहारा दे रहा है, अपने दिल में जगह दे रहा है, तो तुम बिना किसी डर के समा जाओ उसकी बाहों में, बैठ जाओ उसके दिल के आंगन में, दुनिया का सारा बोझ उतार दो, खिलखिलाकर हंस पड़ो, निश्चिंत हो जाओ उसके आगोश में। कभी कभी एक गहरा आलिंगन वो कह जाता है जो शायद हजार शब्द नहीं कह पाती।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अभी आपने घर फिल्म का गीत सुना, आवाज़ थी लता मंगेशकर की। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 MHz पर, रात्रि के 11 बजे। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार, कृपया लेके प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि होर्मुज जल डमरू मध्य को खुला रखना वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। एवियों में G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: एक्सेलेंसी, हम जानते हैं कि मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर आज दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी। एक्सेलेंसी, मैं फिर एक बार पश्चिम एशिया में शांति बहाल कराने के आपके भरसक प्रयासों का मैं पूरी पूरी प्रशंसा करता हूं।
0: श्री मोदी ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता के सुचारू रूप से आगे बढ़ने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के साथ बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और रूस यूक्रेन संघर्ष सहित क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों के बारे में चर्चा की। उन्होंने इस वर्ष के शुरू में भारत यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने और भारत जर्मनी महत्वपूर्ण भागीदारी में आई नई गति पर संतोष व्यक्त किया। श्री मोदी ने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन तथा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष अंतोनियो कोस्ता के साथ बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत यूक्रेन सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार को युद्ध पूर्व स्तर पर बहाल करने पर सहमति जताई। G7 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों ने 3 महत्वपूर्ण घोषणा पत्र अपनाए हैं। इनमें संतुलित आर्थिक विकास, बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण और महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। पेरिस में वीवाटेक 2026 में भारत मंडप का आज उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर भारत और फ्रांस ने नवाचार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रौद्योगिकी में सहयोग करने को लेकर प्रतिबद्धता की पुष्टि की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा फ्रांस की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मंत्री एने ली हेनान्फ ने दोनों देशों के बीच बढ़ती रणनीतिक भागीदारी के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में शामिल होंगे। रेलवे ने कनेक्टिविटी और सुरक्षा में सुधार के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेलवे ने पूर्वी रेलवे पर सिग्नलिंग प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए 405 करोड़ रुपए की परियोजना को स्वीकृति दी। इसके अंतर्गत 32 स्टेशनों पर रिले आधारित इंटरलॉकिंग सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदला जाएगा। रेलवे ने गुजरात में 49 किलोमीटर लंबे आदिपुर भुज खंड के दोहरीकरण योजना को भी मंजूरी दी। इस पर 493 करोड़ रुपए की लागत आएगी। रेलवे ने महाराष्ट्र में 172 करोड़ रुपए की लागत से सोमताने चिखली कार्ड लाइन परियोजना को भी स्वीकृति दी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरा है। अब भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक देश है। पुणे में एक अमेरिकी कंपनी की विनिर्माण इकाई के उद्घाटन समारोह में श्री वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित हुआ है।
2: 2 प्लांट का प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है और दे हैव स्टार्टेड इन गुड फुल स्विंग। 3rd प्लांट का इनॉग्रेशन जुलाई में होगा एंड बाय दिसंबर 4th प्लांट ऑफ सेमीकंडक्टर्स विल बी फुल्ली फंक्शनल कॉमर्शियल मैन्युफैक्चरिंग इन आर कंट्री।
0: इस बीच श्री वैष्णव ने लगभग 600 करोड़ रुपए के निवेश के साथ पुणे रेलवे स्टेशन के विस्तार की घोषणा की है। भारत ने लखनऊ में खेले गए दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 402 रन बनाए। शुभमन गिल ने 154 और ईशान किशन ने 125 रन की शानदार पारी खेली। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड को 95 रन से हरा दिया है। लीड्स में खेले गए ग्रुप ए मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 209 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 74 और शेफाली वर्मा ने 55 रन की पारी खेली। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 11:05 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा यही संपन्न होती है। अपनी प्रातःकालीन सभा में सुबह 5:55 पर पुनः आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।